वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सबका 104.9 FM फन एजा रेडियो पर। पता है ये जो फ्राइडे की शाम होती है, घूमते फिरते रेडियो सुन रहे होते हैं, कुछ नॉस्टैल्जिया में जा रहे होते हैं, कुछ खाने की खुशबू आ रही होती है, भूख लग रही है और सोच रहे हैं कहाँ जाए, ऐसा कुछ हाल होता है। घर में तो बिल्कुल बनाने का मन नहीं है और फिर कभी कभी एक रोमांटिक सा मौसम बन जाता है, क्योंकि आज ऐसा है। वेदर इज़ सो ब्यूटिफुल एंड यू आर ड्राइविंग डाउन लिसनिंग टू सम ब्यूटिफुल म्यूजिक और लगता है यार वी आर टुगेदर, वी आर इन लव, वी लव ईच अदर, वाई नॉट डेडिकेट अ सॉन्ग टू यू। एंड दस ऑन अ फ्राइडे नाइट आई गेट सो मेनी कॉल्स फॉर डेडिकेशंस। तो ये वाला जो गाना है इज द फेवरेट सॉन्ग ऑफ शोमा एंड सोहेल साहब रिक्वेस्ट करते हैं अपनी शोमा के लिए ये गाना। इन्जॉय, पूरे डैलस को इन्जॉय करना चाहिए बिकॉज है ही ऐसा खूबसूरत गाना।

4.9 FM फनी जो रेडियो सुनो ना यार, आपको याद है दोस्तों एक शो हुआ करता था जहाँ पर हम नए टैलेंट्स को फनी जो रेडियो पर बहुत सारा वक्त देते थे, उनके बारे में जानते थे, उनके हुनर को पहचानते थे विद देयर म्यूजिक, देयर सॉन्ग्स. एंड दैट वाज एन अमेजिंग शो वेयर वी हैड सो मेनी टैलेंट्स इन टाउन एंड लव्ड गिविंग दोज टैलेंट्स एंड प्लेस इन ऑन फनीशा रेडियो. आज मेरे पास एक बहुत ही खास हमारे ही लोकल टैलेंट 15 साल की ध्वनि घनशानी का एक बहुत ही औसम वीडियो मेरे नज़र में आया है. ओल्ड ब्रिटिश अमेरिकन सिंगर सॉन्ग राइटर फ्रॉम DFW मेट्रो एरिया. शी इज़ अर्नड 2 NSAI Want to Watch Awards for her songwriting. सोचिए 15 साल की हैं हमारे ही डैलस में. She specializes in literary pop, merging literature with catchy hook. Her very first song, Miss Tennessee, is from the perspective of a spotlight, calling for a retired performer. Let's give it a little bit of our ears, applaud her for her accomplishments, and this little 15-year-old deserves a huge applause.

फ्रॉम द मूवी शेफ द सॉन्ग सैफ अली खान इस गाने में अरमान मलिक और ये अरमान मलिक जो भाई हैं दोनों की जोड़ी विद द सॉन्ग सुन रहे हैं 104.9 FM फन एशिया रेडियो। अब बारी आती है इस गेम शो की ओई ओई ओई ओई जमहूरी क्या बोलेगा बोलेगा तो बस हिंदी उर्दू इज अलाउड बट नॉट अलाउड इज अंग्रेजी पता नहीं कहाँ से घुसी चली जा रही है हमारे हिंदी में निकालते हैं हम उसे उन्हें उन शब्दों को चुन चुन के हमारे हिंदी में जो घुसी अंग्रेजी है अंग्रेजी ही बना देते हम भी उन्हें पर आप ज़रूर फ़ोन उठाइए नंबर दबाइए जुड़िए मेरे साथ ऑन गर्ल हिंदी बोल 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर।

0: सब तेरा बागी फिल्म से लिया गया ये गाना। चलिए लेते हैं मैं अपने फर्स्ट फर्स्ट लिसनर को ऑन गल हिंदी हिंदी बोल। गुड इवनिंग, आपका स्वागत है फन एशिया के गल हिंदी हिंदी बोल पर। हाउ आर यू?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: वेरी वेरी नाइस, थैंक यू। आप अपने अपना नाम हमारे डायलिस वासियों को सुना दीजिए, बता दीजिए।
1: मेरा नाम राम है।
0: राम, वेरी नाइस, मतलब ये तो जीत की खुशबू आ रही है मुझे यहाँ से।
1: जी लग तो रहा है मुझे भी।
0: आपको भी लग रहा है, वाह वेरी नाइस, आई लव द कॉन्फिडेंस। चलिए आपका वक्त शुरू किया जाए।
1: जी
0: ऑसम, योर टाइम हैज स्टार्टेड नाउ राम साहब। सो टेल मी व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ?
1: मैं घर जा रहा था।
0: था मतलब है ना?
1: हाँ मैं घर जा रहा हूँ।
0: राइट, तो फिर कहाँ से जा रहे?
1: मैं सब्जी खरीदने गया था।
0: ओहो, क्यों आप ऐसे सैड से बोल रहे हैं? बहुत यू डोंट लाइक दिस
1: जॉब ना? से नहीं, मैं
0: सैड से नहीं,
1: नहीं।
0: अच्छा
1: नहीं, नहीं, नहीं,
0: ये तो ट्रैप तो है ही ना। आप तो फंस गए ट्रैप में, ट्रैप तो डालना ही होगा ना।
1: ओके आई विल ट्राई अगेन नेक्स्ट टाइम।
0: सो सैड, ऑलराइट, बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। बाय बाय। वो तो जीतने वाले ही थे एक्चुअली, बट एनीवे आई लव दैट कॉन्फिडेंस। जिद ये सनम।

0: That was a song from Dadi Ki Shaadi. That's a brand new movie that is about to release, and that is Dadi Ki Shaadi. Usme hamari bahut hi cute si, beautiful si Neetu Kapoor Singh, yes, is there with us. Sun rahe 104.9 FM. Welcome to Gal Hindi Hindi Bol. Hi, how are you?
1: Yeah, I'm good.
0: What is your name? Tina.
1: Tina.
0: All right. What is your name, Tina? जैसे तुम्हारा नाम क्या है बसंती, वैसे बोल दिया मैंने. आपका टाइम, आपका वक्त शुरू किया जाए टीना.
1: जी बिल्कुल.
0: Awesome. Your time starts now. You're driving?
1: नहीं नहीं, मैं तो बैठी हूँ बगल में.
0: बगल में मतलब कोई ड्राइव कर रहा है? आप गाड़ी में
1: है? हाँ जी, मैं अपने पति के साथ जा रही हूँ.
0: ओह लवली, सो योर हस्बैंड इज ड्राइविंग.
1: जी जी बिल्कुल.
0: कहाँ जा रहे हैं आप लोग?
1: बस बाजार गए हुए हैं.
0: बाजार गए हुए हैं? वो गए हुए हो, आप बैठे. व्हाट इज इट, व्हाट इज गोइंग ऑन, टेल मी. समझ नहीं आ रही मुझे.
1: बस कुछ ऐसी समझ लीजिए, ये थोड़ा गए हुए हैं बाजार से कुछ खरीदारी करने. हाँ. मैं इनके इंतजार कर रही हूँ.
0: ओ ऐसा है, आई सी, सो क्यूट. आपने भेज दिया, आप बैठ के गल हिंदी हिंदी टाइम पास. हाँ, वेरी नाइस.
1: जी जी. मैंने कहा चलिए एक बार फिर से खेला जाए आपके साथ.
0: अच्छा फिर से ना, आपने पहले जीता हुआ है, खेला हुआ है.
1: हाँ, आपको याद है क्या?
0: हाँ टीना नाम याद है मुझे, बट आप ही से खेला है. बिल्कुल. सो टीना जी, आप तो बहुत अच्छा हिंदी बोलती, हाउ कम?
1: अरे मैं मध्य प्रदेश से हूँ.
0: हाँ, सो दैट्स व्हाई. सो आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ी नहीं है, हिंदी मीडियम में पढ़ी है?
1: आपको याद है हमारा माध्यम?
0: मतलब मुझे बहुत इतनी याददाश्त होती तो मैं पता नहीं आज PhD कर लेती शायद, काइंड ऑफ.
1: बस हमारा भी कुछ ऐसे ही सोचना है.
0: क्या
1: इतना दिमाग कहीं और लगाए होते तो कहीं आज कुछ और कर रहे होते.
0: सो क्यूट, आई नो. हिंदी में जीत रही हूँ हर समय फनीजा में. सुपर डुपर, व्हाई नॉट. छोटी छोटी कदम से ही हम आगे बढ़ते, करेक्ट?
1: हाँ हाँ, बस ये छोटी छोटी चीजें खुशियाँ देती है, ये समझ लीजिए.
0: हाँ, वेरी वेरी नाइस. सो यू हैव किड्स टीना?
1: जी मेरे दो बच्चे हैं.
0: हाउ ओल्ड आर दे?
1: बेटी मेरी 13 साल की है और बेटा मेरा 9 साल का है.
0: ओह दैट्स सुपर क्यूट एंड यंग, एकदम टीनेजर इश हो रहे हैं एक ही अभी तक, लेकिन दैट्स अ डिफिकल्ट एज एंड अमेजिंग एज ऑफ किड्स.
1: बस कुछ ऐसे ही समझ लीजिए.
0: ऑलराइट, मैं बहुत कुछ समझ गई हूँ. सबसे ज्यादा ये समझ गई हूँ कि अब तो मुझे आपको देना ही पड़ेगा रेड हॉट चिली पेपर का एक गिव अवे. व्हाट डू यू से?
1: बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आप कहें. तैयार हैं?
0: हाँ तैयार है ना लेने के लिए.
1: हम तो अपने मनोरंजन के लिए आपके साथ बात करते हैं, बस समझ लीजिए. जीतना ना जीतना ये तो कुछ नहीं है. हाँ. बस आपसे इस बारे बात हो जाती है हमारी.
0: सो लवली, थैंक यू सो मच. एंड यू स्पीक सच गुड हिंदी विद एक लहजा जो मजा आ जाता है, यू नो. एक लहजा है आपका मध्य प्रदेश वाला.
1: धन्यवाद धन्यवाद.
0: तो आई विल गिव यू. तो आप वेजिटेरियन है कि नहीं है, चिकटेरियन है?
1: मैं दोनों ही हूँ, समझ लीजिए.
0: समझ कैसे लूँ मैं, ये तो बता दीजिए. आपका ये तकिया कलाम में समझ लीजिए. मैं नहीं समझना चाहती हूँ आप क्या हो, आप बताइए आप क्या हो. बट लव इट. सो आई विल गिव यू अ रेड हॉट चिली पेपर का चिकन मक्खन वाला. दे हैव द बेस्ट चिकन मक्खन वाला इन द वर्ल्ड. आप बस उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे तो फिर आप पहुंच जाएगा रेड हॉट चिली पेपर के यहाँ, विच इज फ्रॉम एनी लोकेशन, रिचर्डसन, मकीनी या एलन. फ्रिस्को मत जाएगा, ये तीनों लोकेशन में कहीं भी जा सकती है. ऑलराइट, आई टेक योर डिटेल्स. आई टेक योर डिटेल्स. आप कहीं मत जाइएगा टीना जी. और मैं बस आ रही हूँ इस गाने को अपने लिसनर्स को भेंट देने के बाद.
2: गो.
1: ओके ओके ओके.
3: तुम हार गई?
2: अच्छा.

0: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
1: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
2: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
3: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
2: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
4: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
5: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
4: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
5: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
6: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel. Get ready for the smoky, flavorful goodness of Tandoori Chicken Pizza. Perfectly marinated tandoori chicken, mildly spiced, tender and bursting with aroma. Layered over creamy cheese and a golden crust. It's the perfect balance. Not too spicy, not too mild. Just right for every flavor lover. Taste the magic of the tandoor on your favorite sliced tandoori chicken pizza. Only at Fun Pizza Kitchen. Fun Pizza Kitchen, where every slice tells a story.
7: सब कुछ साफ रख सकते हो,
8: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
9: क्योंकि ये कौन बोला?
8: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पॉलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
4: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 9728772500।
10: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
11: वेलकम बैक दोस्तों, 104.9 FM फनी जा रेडियो सुन रहे हैं। और पता है ना आपको कि आज हमारा जैम सेशन है फन पिज़्ज़ा किचन कॉलोनी में, जो सोल्ड आउट इवेंट है। एंड वी ऑल आर हेडेड टुवर्ड्स दैट। वी आर वेरी एक्साइटेड, दिस इज द फर्स्ट जैम सेशन हियर इन डैलस। एंड ऑल फनी जा आरजेस एंड आप जो लोगों ने टिकट लिया है और वहाँ पहुँचने वाले हैं, हम सब की आज जो शाम रहने वाली है ना, कमाल की रहने वाली है। चलिए आज शाम अगले हाफ एन आवर को बढ़ाते हैं। और मेरे पास एक बहुत ही स्वीट लिसनर है ऑन एयर, लेट मी टेक हर ऑन एयर। गुड इवनिंग, आपका नाम बताइए पहले सबको।
12: मेरा नाम सिल्की है।
11: ये सिल्की जी है ना, बहुत ही स्वीट है, बोलती हैं कितने सालों से मुझे सुन रही हैं गर्ल हिंदी हिंदी में, आज इन्होंने हिम्मत किया है। व्हाई डू यू नीड सो मच हिम्मत फॉर अ गर्ल हिंदी हिंदी सिल्की जी? हेलो,
12: अंदर घुस चुका है ना हमारे कि यूज हो ही जाता है। अब देखिए यूज आया ना
11: किंतु चलिए आपका वक्त शुरू करती हूँ मैं। अब डन?
12: ओके ठीक है।
11: ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कितना हिंदी हिंदी सुन रही है आप, कब से सुन रही है? टमी,
12: पिछले 5-6 साल से, जब से ये शुरू है तब से।
11: वेरी वेरी नाइस। सो यू आर एन आर्डेंट लिसनर ऑफ फनी जा रेडियो, बहुत सालों से डैलस में
12: है? जी, पिछले 7 साल से हम लोग यहीं पे हैं।
11: सुपर, 7 years इज नॉट अ लॉन्ग टाइम डैलस के हिसाब से। यहाँ पर तो वेटरन्स है 20-20, 30-30 सालों से, उससे भी ज्यादा। करेक्ट, यू हियर दैट ना?
12: हाँ, वो तो है।
11: तो सिल्की जी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं?
12: हम लोग जा रहे हैं मेलिसा, मेरी एक सखी है, उसकी बिटिया का जन्मदिन है।
11: वाह वाह, वेरी हैप्पी बर्थडे। हाउ ओल्ड इज शी?
12: वो इस साल 15 साल की हो जाएगी।
11: अच्छा, तो द होल फैमिली इज गोइंग? यू हैव किड्स जो भी जा रहे हैं?
12: हाँ हाँ, मेरी एक बेटी है तो वो भी साथ में जा रही है।
11: वो भी 15 साल की है?
12: नहीं नहीं, वो 9 साल की है।
11: अच्छा, awesome. See, you have been listening to Girl Hindi, Hindi बोला, कितना प्रैक्टिस किया आपने?
12: अभ्यास तो नहीं किया है, कोशिश कर रही बस कोशिश कर रही
11: वेरी वेरी नाइस, यू आर डूइंग, यू सी। एंड तो फिर आपकी पढ़ाई कैसे की आप? व्हाट डिड यू डू?
12: ये तो आपने बहुत ही कठिन सवाल पूछ लिया। मैंने मैं अभियंता हूँ।
11: आप
12: हिंदी में क्या बोलते हैं?
11: अभियंता ही तो हिंदी है, अभियंता ही तो हिंदी है।
12: लेकिन जिस विषय में क्या है वो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं वो मेरे को नहीं याद आ रहा
11: है। बट यू आर सुपर, ये तो आप बहुत अच्छा शब्द खोज के ले आई हैं। सुन सुन के अभियंता की प्रैक्टिस तो मुझे भी हो गई है। आई नेवर न्यू दैट आईटी वाज अभियंता टिल यू ऑल टोल्ड मी अबाउट इट।
12: जी,
11: ऑल राइट, वेरी वेरी नाइस। तो फिर आपको बोल दिया जाए, जीत घोषित कर दी जाए आपकी?
12: अब आपके ऊपर है, अगर आपको लगता है तो ठीक है।
11: ठीक है, सो गुड। चलिए, दिस इज अप्लॉज फॉर यू। माय गॉड, यू वन सिल्की, आई कांट इमेजिन, दिस इज द फर्स्ट टाइम यू हैव प्लेड। और बहुत 5-7 साल के बाद हिम्मत किया आपने। आई वाज लाफिंग एट इट, मतलब अब आप कर ही सकती हैं, अब रेगुलरली आप प्रो हो गई हैं। पहली बार में आपने एकदम चटपट कर दिया सब कुछ। आपको कौन सा गाना मैं भेंट कर सकती हूँ?
12: मेरी बेटी को पसंद है वही अभी धुरंधर का गाना है ना, रंभा हो।
11: राइट, वेरी नाइस। Coming up for you, Silky, for your sweetheart. आपकी बेटी का नाम बताइए।
12: स्वरा,
11: beautiful. स्वरा, this is for Swara here on Fun Asia Radio.

0: अगर आपको शानदार
1: सुपर, ये शानदार का गाना कब आई थी ये फिल्म शानदार, कितने दिन बाद शानदार सुना है शाहिद कपूर आलिया भट्ट की. नॉट अ वेरी यू नो आई शुड नॉट से टोटल फ्लॉप मूवी, इट वाज नॉट अ हिट मूवी, ऐसा बोल के थोड़ा बेटर फील कराया जा सकता है. बट अमित त्रिवेदी, यू नो ही इज ऑलवेज बिन सो गुड विथ हिज म्यूजिक एंड आई हैव ऑलवेज लव. बट इसमें जो गुलाबो ये जो गाना है शाम शानदार, शानदार फिल्म है, दिस वॉज द शाम शानदार द टाइटल सॉन्ग. बट काफ़ी दिन बाद रिविजिटिंग सम लवली सॉन्ग्स, आप सबको कैसा लग रहा है ज़रूर बताएगा. पता है फ़र्क है दोस्ती और मोहब्बत में, बरसों बाद मिलने पर मोहब्बत नज़रें चुरा लेती है और दोस्ती गले लगा लेती है. ब्यूटिफुल, कुछ गुलज़ार साहब के शब्द.

दिल से दिल की बात दिल तक पहुँचे तो लगती है ठाएं, एंड आई जस्ट फील द सॉन्ग ऑलवेज लैंड्स लाइक ठाएं। डज इट फॉर यू? आई जस्ट लव इट, आई लव इट सो मच, एंड थैंक यू दोस्तों ट्यून इन करने के लिए, सुनने के लिए ये गाने। वैसे ऑसम है मौसम, बताती हूँ आपको, 49 है अभी, एंड ये जो टेम्परेचर्स हमारे डैलस के बढ़ते घटते 25, 30, 40 डिग्रीज कभी कभी, इट इज़ मोस्ट अमेजिंग। पार्टली टू मोस्टली क्लाउडी रहा आज, लो 49, विंड्स लाइट एंड वेरिएबल रहे आज, पर कल है शनिवार, सनी सनी, संडे को सनी होना चाहिए लेकिन है सैटरडे को, 76 हाई, 52 लो, हवाएं बहुत नहीं चल रही, बहुत हल्की फुल्की, 7 miles per hour पे हैं, सो इट्स गुड। संडे संडे मोस्टली सनी, 82 हाई, 61 लो, एंड लिटिल बिट ऑफ विंड्स आउट देयर, 14 miles per hour। शुरुआत ऑफ द वीक मंडे, बच के रहना रे बाबा, हवा तेज़ है, 21 miles per hour पे हवाएं होंगी, पार्टली क्लाउडी विद विंड, 83 हाई, 68 लो, सो इट इज पार्टली क्लाउडी डे बट विंडी, सो वॉच आउट फॉर द विंड्स। टेरिफिक ट्यूजडे, 86 हाई, 61 लो, मोस्टली क्लाउडी विद 18 miles per hour पे विंड है, दैट इज विंडी। मझधार ऑफ द वीक वेडनेसडे को थंडर स्टॉम्स है लेकिन एएम में है, पीएम विल बी फाइन, 72 हाई, 53 लो विद 14 miles per hour। थम्स अप थर्सडे, थ्रो बैक थर्सडे, जो भी कहें आप इसे, बट 73 हाई है, 58 लो है, इट्स द कूलर डे ऑल्सो एंड वेरी कोल्ड एट नाइट, पार्टली क्लाउडी, हवाएं बहुत ज़्यादा नहीं है, सो इट्स गुड। फ्राइडे को फिर मैं आ जाऊँगी लेकिन एएम पर शावर्स होने के बाद शांति होगी, और फिर मैं जब आऊँगी देन इट इज 77 हाई, 60 लो, सो व्हेन आई विल बी डूइंग माय शो ऑलमोस्ट 60 टच कर रहा होगा, सो इट विल बी कूल, 11 miles per hour पे हवाएं हैं, सो दैट इज़ हाउ योर डेज लुक फॉर द एंटायर वीक। प्लान अहेड, विंड से बचना है तो ट्यूजडे अवॉइड, मंडे अवॉइड कीजिए, ट्यूजडे ओके, यस यू कैन अवॉइड एज वेल, बट अदरवाइज इट्स अ ग्रेट वीक। डैलस लिव्स ब्रीड्स हैप्पीनेस ड्यूरिंग दिस टाइम बिकॉज बहुत अच्छे टेम्परेचर्स हैं, वी ऑलवेज वॉन्ट टेम्परेचर्स टू बी लाइक दिस, पर थोड़ा ही वक्त है जब गर्मी छाने वाली है, तो उस वक्त को हम अभी क्यों याद करें, अभी लेट्स एन्जॉय वॉट वी हैव।

so beautiful, na? That tu se ye wala gana, and I hope you enjoy that one. But that my show ends for this night. Aane wali hai Swati, aapko entertain karne ke liye 8 se 10, DJ 10 tak unke show par 8 se 10 tak rehne wali hain wo. Pata hai, Jelluram aaj kehte hain angrezi mein. After girl hindi bold, he said, I am just talking English. I don't know Hindi. I said, okay, talk in English, Jelluram. To kehte hain, I finally reach my wonder years, Navneeta. I said, acha? But how? So, but I always wonder where I left my phone. I wonder where I left my glasses. Wonder what day it is. Or, and Mr. Wonder, you are totally Englishtarian. Hindi gal Hindi Hindi to hai nahi. Tell English English. Super, love it. दोस्तों दीजिए मुझे इजाज़त, इसी हस्ती खिलखिलाते मुस्कुराते आप रहिए, क्योंकि हस्ती खिलखिलाती स्वाति आ रही हैं जो आपको एंटरटेन करने वाली हैं, और मुझे दीजिए इजाज़त आज के लिए. मिलूंगी अगले फ्राइडे 5 से 8 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट अपना शो लेके. जाते जाते ख्याल ये है, पता है, इट्स द थॉट्स वी वाटर ईच डे दैट बिकम्स द गार्डन वी लिव इन. तो फिर बी काइंड टू योरसेल्फ. Have the best of thoughts so that the garden you live in is the garden you want to live in. Soch ke dekhiyega, bahut deep hai, but trust me, your mind is everything, your thoughts are everything. That what make your life clutter free, makes you happy, makes your life the way you want to be. All is with you. दीजिए मुझे इजाजत, गुड नाइट, स्लीप टाइट, गेट अप हैप्पी, फ्रेश एंड ब्राइट, विशिंग यू अ फ्लावरफुल मॉर्निंग, अ कलरफुल नून, अ जॉयफुल इवनिंग एंड अ पीसफुल नाइट. एंड आई नो इट्स गोइंग टू बी अ फैबुलस डे फॉर यू टुमारो. स्टार्टेड विद अ कप ऑफ पॉजिटिविटी, फिर देखिए दिन कैसा जाता है, बिल्कुल पॉजिटिव, क्योंकि वही गार्डन की तरह आप अट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिविटी. तो कीजिए, दिए जा रही हूँ वो मैजिक वंड आपको, जो आप घुमाएंगे और जादू हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में. Let's go. Bye-bye. Take care.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Like to dress up for parties and special occasions? Indian Attire in Frisco has a phenomenal collection of lehengas, saris, bridal wear, men's and kids wear.
6: Traditional, ethnic wear as well as fusion. At Indian Attire, you will find designer wear lehengas at 25% off during their festive sale.
5: No need to shop around. Just head to Indian Attire of Preston and Gaylord in Frisco to find your perfect attire. For details, visit IndianAttireFrisco.com.
7: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
8: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
7: कैसे?
8: पेज 3 ईटरी?
7: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
8: डूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्ट एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
7: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
9: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
10: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
11: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
10: K2 ड्राइव मतलब?
11: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
10: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
11: 100%
12: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402. Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
6: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
13: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
6: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
13: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
14: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
15: Excuse me? It's called being loyal.
14: It's called being predictable.
15: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
14: And what's so special at Neon Cactus?
15: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabiha halal options and plenty of great vegetarian choices too.
14: Not bad.
15: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
14: Okay, this I didn't expect from you.
15: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview. Mexican cuisine with global influences.
16: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khanzada, jinhone apni kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taaza tareen khabron ke liye The Jabu Times available hai ek click par, thejabutimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khanzada 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
17: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Fun Asia Radio.

मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे डैलस की जनता होता है। और डैलस की जनता को ये मंजूर है कि हर फ्राइडे स्वाति की जो फ्राइडे वाइब होती है ना, वो लेनी ही चाहिए। जैसे आपको पता है कि आपकी लाइफ में अगर आपकी बॉडी में विटामिन्स की कमी है तो विटामिन्स के टैबलेट ज़रूरी हैं, ऐसे ही आपकी लाइफ में फ्राइडे वाइब की थेरेपी इज मच नीडेड। क्या करना होता है फ्राइडे वाइब लेने के लिए? डैलस लेना होता है आपको, करना होता है फन की फ्रिक्वेंसी को सेट राइट, एंड इसके बाद आप कर सकते हैं एंजॉय फ्राइडे वाइब ओनली विद आरजे स्वाति, हंसती मुस्कुराती। हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू 104.9 एफएम फनीशिया रेडियो। तहे दिल से आपको कहना चाहती हूँ शुक्रिया डैलस, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। नमस्कार करती हूँ आप सभी सुनने वालों को और कहना चाहती हूँ कि भाई आपने फन की फ्रिक्वेंसी राइट रखी है तो नो फिल्टर फ्राइडे में मैं आरजे स्वाति आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और कहना चाहती हूँ कि आपको आज मिलेगा गाने का भरपूर डोज, जिसमें क्या होगा डैलस? कुछ नहीं यार, वाइब होगा, वाइब जो आपको बताएगा कि यार आज फ्राइडे है। फरमाइश रख लीजिएगा रेडी। जी हाँ, 8:07 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी पर। फ्राइडे 1st of May है आज की डेट, यानी कि इस साल का 2026 का पांचवा महीना शुरू हो चुका है एंड इस वक्त 8:07 हुए हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी पर। अगर आपकी भी कोई ऐसी वाइब, खूबसूरत वाइब वाली रिक्वेस्ट हो तो 9722355555 है स्टूडियो का नंबर एंड यू आर वेलकम टू रिक्वेस्ट योर ओन फेवरेट सॉन्ग।

ऑलराइट डैलस, आज पता है मैं बड़ी खुश हो रही हूँ यार, क्योंकि मुझे आज जो रिस्पांस मिल रहा है पिछले 3-4 हफ्तों में नहीं मिला, यानी कि ढेर सारा प्यार, ढेर सारे कॉल्स एंड ढेर सारी रिक्वेस्ट. एंड यू नो व्हाट, एक एकदम खुफिया जानकारी दूँ डैलस, एकदम खुफिया, आप किसी को मत बताइएगा, ठीक है? मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ. वो ये है कि नेहा को बेस पसंद है. ये बहुत सीक्रेट बात है, किसी को मत बताना.

देखिए बेबी को क्या पसंद है ये तो हमें नहीं पता, पर नेहा जी को ये गाना जरूर पसंद है क्योंकि उनको सलमान जी का गाना सुनना था एंड सलमान के गाने की रिक्वेस्ट करी नेहा, तभी तो मैंने बोला कि नेहा को बेस पसंद है। आपने किसी को बताया तो नहीं ना? देखिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ मैं अपनी सीक्रेट शेयर कर सकती हूँ एंड आप किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन ऐसे से आप मुझे वो वाली आंटी मत समझ लेना जो आंटी एक दूसरे से चुगली करते वक्त हमेशा हमेशा ये यूज़ करती हैं कि यार पता है क्या, मैं सिर्फ तुझे बता रही हूँ, तू किसी को मत बताना। और वो बोलती पागल है क्या, मैं क्यों किसी को बताने लगी, मैं तो तेरी बात ऐसे रखती हूँ ना बाबा, अपने घर में अपने हस्बैंड तक को नहीं बताती। और वो जो बताने वाली है ना वो पीछे करके अपने घर नहीं पहुंची होती, वहां से सारे लोगों को वो बात चली जाती है। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं वो आंटी हूँ और आप लोग वो दूसरी वाली आंटी हो, है ना। मैं बिलीव करती हूँ कि आप किसी को नहीं बताओगे। एनीवेज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी कि भाई हर फिल्म के पीछे ना कोई कहानी होती है और उस कहानी से ना हमको कोई ना कोई शिक्षा जरूर मिलती है, क्योंकि हम बचपन में पढ़ते थे ना जब तो हमें ये बात आती थी कि इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है, और फिर हमें कोई ना कोई एक शिक्षा निकालनी पड़ती थी और फिर वो शिक्षा जो है हम ग्रहण करते थे। तो अभी वो शिक्षा ग्रहण करें ना करें, लेकिन इस सुल्तान मूवी के इस गाने से हमें ये ज़रूर सीखने को मिलता है कि इंसान जब भी कभी गिर जाता है ना तो उसे उठने की प्रेरणा मिलती ही मिलती है, बस उसे उस एक प्रेरणा का इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए और अगर वो अपॉर्चुनिटी आई है तो उसे ग्रैब ज़रूर करना चाहिए। तो ये कहानी कुछ ऐसे ही है जिसमें खुद से खुद की लड़ाई है, खुद के गिरने से लेकर खुद के ऊपर उठने तक की कहानी है। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली डालस, कि अगर आप कहीं भी लाइफ में किसी चीज़ में हो गए हैं पीछे तो घबराइए मत, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी राइट टाइम पर। टाइम का वेट कीजिए एंड जब वो टाइम आए तो ग्रैब कीजिए, जैसे मेरे पास एक मौका आया है इस खूबसूरत से गाने को प्ले करने का। और इनको प्ले करने वाले कमलेश जी कह रहे हैं कि भाई कोई ना कोई तो चाहिए, तो मैंने पूछ लिया किस लिए, पार्टी के लिए, कह रहे हाँ। मैंने बोला कहाँ जा रहे हैं, चला हमें बता दीजिए, कह रहे नहीं यार बस घर जाएंगे, कुछ कुछ अपनी पसंद की चीज़ें लेके कंबल के अंदर बैठ के नेटफ्लिक्स में कुछ ना कुछ छाप देना है। ये भी एक तरीके की पार्टी होती है जब आप अपने और अपनों के साथ वक्त बिताते हैं।

0: आई एग्री विद दैट, प्यार के बिना जिंदगी चल ही नहीं सकती डायलस. लेकिन प्यार के अलावा पता है कलाकार जो होता है उसको दांत की जरूरत होती है. ये वाह वाह वाह क्या गाया, वाह वाह वाह क्या बजाया, वाह वाह वाह क्या शो कर रही हो स्वाति. मतलब समझ रहे हो ना, पॉइंट पे आई हूँ मैं भी. तो ये जो चीज़ है ना ये चाहिए होती है क्योंकि हम कलाकार लोग हैं, कला बेच रहे हैं. तो हमें कोई बताए भी तो सही कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं. देखिए आप गाड़ी चलाते वक्त सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ या नहीं ये बताने के लिए 9722355555 का स्टूडियो का नंबर ज़रूर है. अब हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनसे सुन लेते हैं. हेलो नमस्कार, वेलकम ऑन एयर. देखिए मैं यही कह रही थी कि कलाकार को जो है वो दांत की ज़रूरत तो पड़ती है एंड जानना तो पड़ता है कि वो सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या नहीं. बताइए क्या है आपके विचार.
1: आपकी पोस्टिंग जो है बेहतरीन है, बहुत ही बढ़िया है एंड इट्स सो पीसफुल. आप गाड़ी पे सफर करने वालों को भी आराम से बैठ के बस आपके बातें ऐसे सुनते सुनते पता नहीं चलता कब सफर
0: है ना. बस देखिए पता ना चले कि कब सफर कट गया, लेकिन ये जरूर पता चलना चाहिए कि कहाँ पहुँच गए.
1: कहीं भी पहुँचो अगर आप पहुँच जाओगे बस आपकी आवाज सुनते सुनते सुनते बस तो होके
0: क्या बात है.
1: रियली गुड, रियली गुड. एंड आपके जैसे कलाकार को इंकरेज करना आप डिजर्व करते हो.
0: ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच डैलस. बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं इनको सिखा के लाई हूँ, ठीक है. मैंने कुछ भी नहीं सिखाया इनको. जी थैंक यू सो मच. आपका नाम बताते हुए जाइए.
1: मेरा नाम गोपी है जी.
0: जी
1: और मुझे एक गाना दीजिएगा मेरे सारे फ्रेंड्स के लिए.
0: जी अच्छा ठीक है.
1: इसका नाम है स्वीटी डॉली.
0: बाप रे सारी गर्लफ्रेंड्स है. स्वीटी डॉली गुड़िया नन्नी मुन्नी बच्ची मीना शीना
1: अरमिन एंड शरण.
0: जी शरण
1: शरण एंड पब्बू
0: सुब्बू.
1: या
0: अरे वाह क्या बात है. अच्छा पब्बू. ओके वाह वाह वाह क्या है. मतलब पप्पू के काफी क्लोज होते होते वो पब्बू हो गए. थैंक यू सो मच. बट आप सभी को हैव अ वंडरफुल वीकेंड एंड आई होप दैट मैं आपका उसमें चार चांद लगाने का काम जरूर कर रही हूँ. तो सुनते रहिए हमारा 104.9 FM फनीशिया रेडियो एवरी फ्राइडे.
1: से गाना डालिएगा
0: दिल से मूवी से.
1: दिल से हाँ.
0: अच्छा दिल से
1: मूवी से हाँ.
0: यार थोड़ा सा स्लो है वो वाइब वाला गाना नहीं है. मैं कुछ और डाल दूँ. चलिए आई एम सो सॉरी. या फिर आप सोच के जरूर बताइए कि मैं कौन सा गाना आपके लिए प्ले करूं. हेलो नमस्कार, वेलकम ऑन एयर. जी बताइए. रेडियो का वॉल्यूम कम प्लीज. देखिए मेरी आवाज अच्छी है मैं मानती हूँ, पर रेडियो का वॉल्यूम कम. रेडियो का वॉल्यूम कम प्लीज. हेलो
2: हेलो.
0: हाँ जी प्लीज बताइए क्या कहना चाहती हैं.
2: हाँ जी स्वाति जी आपकी आवाज बहुत ही अच्छी लगती है रेडियो पर.
0: हाँ अरे वाह क्या बात है.
2: और कलाकार को पक्का तालियों की जरूरत होती है. एंड कलाकार कभी भी बूढ़ा नहीं होता है.
0: एग्जैक्टली क्या बात है. हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं. तभी मैं सोच रही हूँ कि मैं उम्र तो बढ़ रही है पर बूढ़ी क्यों नहीं हो रही हूँ. क्योंकि मैं कलाकार हूँ. क्या बात है. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया. जी देखिए मैं वैसे तो ऑन एयर आने के हमारे ना पैसे लगते हैं, पता है. मैं पैसे लेती हूँ लेकिन मैंने आज सोचा कि नहीं लेती हूँ पैसे. मैं सबको ये बोल देती हूँ कि प्रॉमिस करके जाओ कि कल मतलब कल यानी अगले फ्राइडे को वापस से शो सुनना पड़ेगा, ठीक है. तो पैसे मैंने माफ किए. ओके तो आप लोगों को सुनना पड़ेगा. ओके जी थैंक यू सो सो मच एंड हैव अ वंडरफुल वीकेंड. देखिए जो हमारे लास्ट कॉलर थे उनको अपने फ्रेंड्स के साथ गाना सुनना था. एंड आपको तो पता है कि एक गोपी के पीछे बहुत सारे मतलब गोपी उनका नाम था, वैसे वो कन्हैया थे और उनकी बहुत सारी गोपियां थी. तो मैं सोच रही हूँ कि एक और कॉलर को पहले ले लेते हैं हवा में. हाँ जी नमस्कार.
3: स्वाति हाउ आर यू. नमस्कार
0: जी. नमस्कार सफी हमारे फेवरेट लिसनर. जी
3: आज का उनका बर्थडे है आज.
0: ओह माय गॉड सफी, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम एंटायर फनीशा रेडियो की टीम की तरफ से. बहुत बहुत मुबारकबाद.
3: थैंक यू सो मच. बर्थडे सॉन्ग, ही जस्ट नॉट एनी बर्थडे सॉन्ग.
0: ओके ओके, फॉर श्योर. इस गाने के बाद हम सफी का बर्थडे बहुत प्यार से सेलिब्रेट करेंगे. थैंक यू सफी फॉर योर सपोर्ट एंड योर लव, एंड वी ऑल लव यू. थैंक यू सो मच. तो लास्ट हमारे जो कॉलर थे जिनके साथ पूरी उनकी टीम थी, उनके लिए शाहरुख खान से अच्छा गाना किसका हो सकता है यार, है ना, जिसका दिल किसी पे भी आ जाता था. देखिए शाहरुख खान, एंड जिसके ऊपर आता था ना, वो तो अपने आप को लकी समझती थी बस.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय वन गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
0: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
1: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
0: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
6: Discover the magic of authentic Indian vegetarian cuisine at Sarvana Bhavan, the world's number one in South Indian delights. Their menu, overflowing with veggie surprises cooked to perfection. After serving in Irving and Plano, ping them at 4693627755 or visit sarvanabhavanplano.com. Sarvana Bhavan, all day flavor play.
7: All locations are open daily from 11 a.m. to 10 p.m. with extended hours on weekends from 8:30 a.m. to 10:30 p.m.
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
8: Kya matlab?
9: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
9: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
8: Ab to karna hi padega, madam.
10: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल वन, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल टू, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल थ्री, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
7: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
12: इमिग्रेशन पेपर वर्क से परेशान, अब टेंशन छोड़िए। easypetition.com के साथ USCIS पेटिशन फाइल करना हुआ इजी। आप खुद इंडिपेंडेंटली प्रिपेयर और फाइल कर सकते हैं पेटिशंस लाइक F1 या B1 चेंज ऑफ स्टेटस, F1 OPT, H4 विद EAD, I-485 और I-485J, N-400 नेचुरलाइजेशन और 200 से भी ज्यादा पेटिशन टाइप्स, और प्राइसिंग सिर्फ $30। तो आज ही जाइए easypetition.com पर, easypetition.com।
13: चिकन बनाना
14: ब्रो, बनाना नहीं, बनाना मतलब मेक द चिकन राइट।
15: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
16: Planning to buy a perfect home or make a smart investment in India? Now it's easier than ever. Gra Pravesh, India Property Expo in Frisco. Meet top developers from Hyderabad, Bengaluru, Mumbai, Pune, Chennai and Delhi NCR all under one roof. Explore 200 plus projects and find the right property that fits your plans. 9th and 10th of May, Hyatt Regency Frisco, Dallas, 10 a.m. to 8 p.m. Free entry and free parking. Biggest India Property Expo by My Square Feet.

हैप्पी बर्थडे टू सफी। सफी, हम सब का प्यार आपके साथ है एंड आपकी सना आंटी ने भी आपको प्यार भेजा है क्योंकि उन्होंने सुना कि आज आपका बर्थडे है एंड हम आपके अच्छे हेल्थ की, आपके अच्छे वेल्थ की एंड आपके अच्छे एंटरटेनमेंट की, जो हम अफन एशिया रेडियो के थ्रू आपको देते हैं, हर सब चीज़ों की मंगल कामना करते हैं एंड हम चाहते हैं सफ़ी कि आप हमेशा ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहें और हम आपका थोड़ा भी इस हंसने और मुस्कुराने में दिन बना सकते हैं, आपकी लाइफ में थोड़ा सा एक्साइटमेंट और एडवेंचर ला सकते हैं तो हम अपने आप को बहुत बहुत खुशनसीब मानते हैं एंड हम और हमारी पूरी फन एशिया रेडियो टीम की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार एंड हैप्पी बर्थडे अगेन। एंड यू नो व्हाट डैलस, सफ़ी जो है वो पसंद करते हैं शाहरुख खान को, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए ये गाना सफ़ी को डेडिकेट करती हूँ मैं पूरे अपनी टीम की तरफ से एंड पूरे डैलस की जनता की तरफ से।

0: नमस्कार एंड वेलकम बैक टू 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो. हमारे साथ जुड़ गए हैं कोई कॉलर. हेलो, आप ऑन एयर हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं आज.
1: हेलो, गुड इवनिंग. जी, मेरा नाम सुहेल है और मैं एक गाना, इफ आई कैन रिक्वेस्ट फॉर सॉन्ग.
0: प्लीज गो अहेड, बताइए कौन सा गाना सुनना है.
1: आई थिंक अब बीट चल रहा है काफी गाने.
0: हाँ,
1: तो
0: जी.
1: हम वो फाइटर का गाना बचाएंगे. शेर खुल गए आज, शेर खुल गए.
0: क्या बात है, कहाँ खुला है देखो. बताओ, मैं ट्रैफिक को बता देती हूँ कि उधर से नहीं जाना है. है ना, ये बताइए कि ये
1: तो ऐसे ही लगता है कि शेर खुल गए, बस हमें खुल जाना
0: है ना.
1: चाहिए.
0: आप सब शेर ही हैं. वही मैं सोच रही थी कि ये जो सही वाला शेर है ये खुला है या मन के अंदर का शेर खुल गया.
1: सारे शेर खुल गए. देखिए, मैं एक्चुअली बॉम्बे से हूँ तो बातों में तो आप जीत नहीं सकेंगे मुझसे.
0: क्या बात है, मैं तो जीत गई अभी की अभी. देखे, पीछे से ठाके लग रहे थे मेरी बातों पे, आपके बातों पे नहीं लगे.
1: नहीं, हम वुमन को जीतने देते, नो प्रॉब्लम.
0: है ना,
1: जेंटलमैन
0: लेकिन
1: है हम.
0: वो तो सब ठीक है, लेकिन मैंने जब बात बोली ना, मुझे पीछे से जो आवाज आई मेरी,

0: अभी देखे पीछे से ठाके लग रहे थे मेरी बातों पे, आपके बातों पे नहीं लगे,
1: नहीं, हम वुमन को जीतने देते, नो प्रॉब्लम,
0: है ना? लेकिन
1: जेंटलमैन
0: देख,
1: है हम
0: वो तो सब ठीक है, लेकिन
1: जी।
0: मैंने जब बात बोली ना, मुझे पीछे से जो आवाज आई, मेरी कान बड़े तेज हैं, पीछे से ठहाके की आवाज सुन ली मैंने, वो देखा मेरी बात।
1: नो, ये बात सुने आपने?
0: हाँ, सुन
1: अरे आप,
0: लिया।
1: यू आर लाइव ऑन एयर, बी केयरफुल व्हाट यू सेइंग। ओके ओके,
0: हाँ, तो
1: चले आपको
0: क्या
1: गाना
0: दिक्कत
1: बजाने।
0: है?
1: थैंक यू सो मच,
0: हाँ
1: थैंक यू
0: जी,
1: सो
0: हाँ
1: मच।
0: जी, थैंक यू
1: क्या
0: सो मच। शेर खुल गए हैं भाई, देख के बच के रहने का, ये आपको खा ना जाए। यू नो व्हाट डैलस, आज जी भर के खाइए, जी भर के पीजिए, पर पता है खाने के चक्कर में ना किसी का समय मत खाइएगा यार, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं जब कहीं जाती हूँ ना, मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो मेरा बड़ा ही कीमती वक्त खा जाते हैं। फिर मुझे लगता है यार मेरा वेस्ट हो गया ना सब। ऐसे लोगों से पाला पड़ता है ना डैलिस। हाल फिलहाल में पड़ा हो ना तो बताइएगा जरूर, एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, क्योंकि मैं हूं कौन, आपकी दोस्त, आपकी साथी, हंसती मुस्कुराती स्वाति।

डेलिस, आपको पता है कि देसी मंडी आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑफर लेकर आए हैं। द बिगेस्ट साउथ एशियन ग्रोसरी स्टोर इन टाउन, देसी मंडी हैज अमेजिंग अमेजिंग ऑफर। अगर आप वीकेंड और वीक डेज में कुछ बढ़िया सी डील पाना चाहते हैं तो वीकेंड का छोड़िए, वीकेंड में तो आपके पास बहुत कुछ होता है करने के लिए। वीक डेज में ऑफिस के काम के अलावा ग्रोसरी में आपको मंडे एंड वेडनेसडे बाय वन गेट वन फ्री ऑन बिरयानी, नूडल्स एंड फ्राइड राइस यानी खाने में, एंड देन ट्यूजडे एंड थर्सडे को बाय वन गेट वन फ्री ऑन डोसाज एंड चाट्स। तो अगर आपको वीक डे में लगे कि कहीं जाके खाना है तो आप यहाँ ज़रूर जाइए, क्योंकि खाने के साथ साथ आप अपनी ग्रोसरी भी वहाँ से लेकर आ सकते हैं। सो मंडे एंड वेडनेसडे भूलिएगा मत, बाय वन गेट वन फ्री ऑन बिरयानी, नूडल्स एंड फ्राइड राइस, एंड ट्यूसडे एंड थर्सडे बाय वन गेट वन फ्री ऑन डोसाज एंड चाट। तो एवरी वीक डे 5 PM

9 PM, नो मिक्स मैच, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई. बहुत ज्यादा फ्लेवर मिलेंगे एंड मोर सेविंग्स हो जाएगी ऑल वीक लॉन्ग. आज ने बड़ा ही अच्छा नाम है यार, मैंने बोला ये यूनिक नाम है. तो यू नो अभिराज ने कहा कि मेरे मम्मी पापा ने काफी मेहनत करी है ये नाम ढूंढ कर रखने के लिए. मैंने कहा कि देखिए, ढूंढ के रखने में जो मेहनत करी होगी उसके बाद काफी मेहनत इस बात पे भी की होगी कि ये नाम कोई और ना रखे, क्योंकि मैंने इसे और कहीं सुना नहीं है.

0: लाल लाल कलरची बांगडी, बांगडीचा कलर लाल, चाल माझ्या सोबत चाल।
1: वाह वाह वाह वा, क्या बात है यार। ये गाने मतलब मुझे बांगड़ी का मतलब पता नहीं था, उसका मतलब होता है चूड़ियाँ। क्या बात है। यू नो व्हाट, जब हम छोटे थे, मतलब मैं अपनी बात तो बता सक रही हूँ कि मुझे चूड़ियों का बड़ा क्रेज़ था। मतलब मम्मी की बड़ी बड़ी चूड़ियाँ पहन के हाथ में खेलते रहना उसको, यू नो उसकी खनक को एन्जॉय करते रहना। लेकिन सच बताऊँ ना, तो जब हम बड़े होते चले गए, ज़माना इतना चेंज होता चला गया ना, भरी भरी चूड़ियों के एक एक दर्जन जो उस समय पे हमारी जो मम्मी दादी नानी लोग पहना करते थे, वो कम होते होते दो चार पांच, और अब तो बिल्कुल ही गायब हो गई है। यानी कि हम जिस चीज़ को एक टाइम

है या कुछ ऐसा शौक है जो तब से लेके अब तक कंटिन्यू है बॉस, तो बताइएगा, जरूर शेयर कीजिए। 9722355555। लिपस्टिक से गाना याद आया जिसमें भी खतरनाक वाइब है।

हा। डेनिस, हम एंजॉय कर रहे हैं फ्राइडे वाइब्स एंड कोई भी फिल्टर हमने नहीं लगाया, यानी कि नो फिल्टर फ्राइडे। आरजे स्वाति हंसती मुस्कुराती के साथ, देखिए हमारे पास बहुत ही कम समय है, हम तुरंत तुरंत एक गाने की तरफ चलेंगे और उस गाने की तरफ बढ़ते हुए आपको बता दूं कि भाई आपके पास एक गिव अवे आने वाला है आफ्टर द ब्रेक, सो बी रेडी। एंड आप हमारे फ़ोन नंबर 9722355555 को अपने डायल पैड पर रख लें ताकि आप पहले कॉल करें और जीत जाएं, क्योंकि ये आने वाला है चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से। तो ये गिव अवे जीतने का मौका मत छोड़िएगा, बिल्कुल थोड़ी ही देर में लौटूंगी मैं और आपको ये सवाल पूछूंगी जिसका जवाब जब आप देंगे तो आपको मिल जाएगा मौका चंडीगढ़ बाइट्स के गिव अवे जीतने का। लेकिन अभी मैंने सवाल पूछा नहीं है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, अभी तो आप एंजॉय कीजिए डिंक चिका।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: अभी मजा आएगा ना भिड़ो
3: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे.
4: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business के कुछ symptoms है. Profits है, but no cash liquidity. हर साल tax bills के साथ tax season का anxiety. Diagnosis clear है. आपके business को चाहिए smart tax planning, clean bookkeeping और एक strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory, business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
5: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम. वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डालस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे. नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह. प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी. देसी मंडी पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डालस.
6: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
7: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
8: Bawarchi Biryani is in Plano, bigger, better and the best now serving everyday lunch specials, thalis, biryani combos and refreshing Irani chai with delicious Indian snacks, freshly made sweets and bakery items. Please walk into Bawarchi Plano or visit bawarchiplano.com.
9: Kabhi aisa lagta hai ki decisions aap le rahe ho par results control mein nahin, career ruk sa gaya hai, rishton mein clarity nahin aur future bas ek sawal ban kar reh gaya hai. हर जगह आंसर्स ढूंढने से बेहतर है सही जगह समझना. कनेक्ट विद अनीता चुंद्रू एट द कॉलोनी टेक्सस. चार्ट रीडिंग, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हवन सर्विसेज से मिले सही गाइडेंस. कॉन्टैक्ट 9453387670. ईमेल astro111city@gmail.com. अनीता चुंद्रू, योर लाइफ विद राइट डायरेक्शन.
10: कॉन्टैक्ट 9453387670. ईमेल astro111city@gmail.com और विजिट टैक्सी एट 5200 मेमोरियल ड्राइव, कॉलोनी, टेक्सस.
11: या दिस इज शक्ति कपूर एंड यू गाइस आर लिसनिंग टू मी ऑन द फन एशिया रेडियो.
12: बाय.

0: किस कंट्री में मिलती हैं। गाना सुन रहे हैं ना आप? 972-235-5555 आपके पास है चंडीगढ़ बाइट्स का गिव अवे जीतने का मौका, जो कि एलन में लोकेटेड है। द स्पेशल थाली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे विद एक्साइटिंग न्यू डिशेस रोटेटिंग डेली फॉर लंच ओनली, लोकेटेड ऑफ मैकडरमॉट ड्राइव इन एलन। चलिए आ भी गया है। हेलो नमस्कार, वेलकम ऑन एयर। बताइए कौन सी कंट्री में मिलती है दूसरे वाले ऋतिक को?
1: न्यूजीलैंड।
0: हाँ जी,
1: हेलो न्यूजीलैंड।
0: न्यूजीलैंड, आर यू श्योर?
1: यस।
0: पक्का है पूरा?
1: पक्का है पूरा।
0: गलत बता रहे हो यार।
1: अरे यार,
0: है ना, देख।
1: नहीं नहीं मुझे तो न्यूजीलैंड ही याद है। एनीवेज,
0: अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? क्या नाम है आपका?
1: अमित। अमित
0: अमित जी, वो अमिताभ बच्चन वाले अमित तो नहीं हो ना? देखो, मेरे पापा जब मुझे कोई चीज प्लस माइनस करने बोलते थे, उसके बाद मेरे से आंसर पूछते थे। फिर जब मैं कोई आंसर बताती थी तो बोलते पक्का यही होगा, तो मैं बोलती थी नहीं नहीं नहीं, तो एक चटाक से पड़ता था। फिर मैं दूसरा आंसर देती थी, फिर मैं तीसरा आंसर देती थी, फिर मैं चौथा आंसर देती। मैं कभी भी श्योर नहीं होती थी। तो आपको मैंने धमका के चमका के पूछा तो आप भटक गए थे रास्ते से। अमित
1: नहीं, मैंने
0: जी,
1: 2 बार पक्का बोला, फिर आपने बोला कि नहीं।
0: नहीं, मैं 3-4 बार और बोलने वाली थी, ये गिव अवे मैं छीनने वाली थी आपसे। अमित जी, हमारा वेट कीजिएगा प्लीज, एंड ले लेते हैं दूसरे कॉलर को ऑन एयर। हेलो नमस्कार जी, बताइए कौन सी कंट्री में मिलती है?
2: न्यूजीलैंड।
0: आपको भी पता है?
2: यहाँ उनका नाम है राज, जो जीते वाले।
0: राज नाम तो सुना होगा वाला नहीं है, लेकिन यू नो व्हाट, इससे इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, चलो बताओ शिक्षा अगर आपने।
2: सी द बेस्ट ऑब्जेक्टिव इज कि जो होता है कर्मा, राइट? सब कुछ घूम फिर के वापस आता है। जैसा हुआ था लौट के वापस ऐसे ही आया।
0: नहीं, तो ये तो हो गई ज्ञान की बात, अब आप बताएं कि कहानी से शिक्षा क्या मिली।
2: कहानी में तो सर की थे और सर जी से ही शिक्षा मिली कि कितना भी छुपा लो वो फिर क्या ही जाते हो बाहर।
0: नहीं, पता है कहानी से क्या शिक्षा मिली कि कभी कभी जब आपका मन उदास हो और कोई चीज आपके सामने आए एज अ अपॉर्चुनिटी और आप उसे नहीं करना चाहो, बिल्कुल नहीं करना चाहो, फिर भी नियति आपसे ही वो करवा लेती है, तो पता है क्या होता है, ऋतिक रोशन मिल जाता है यार। है ना, वो नहीं जा रही थी ना न्यूजीलैंड, मार पीट के भेजा गया था उसको, फिर गई तो देखो मिल गया।
2: आई थिंक आपको भी ऋतिक रोशन मिल ही गया कोई ना कोई।
0: मैं, अरे रोज नया ऋतिक बना लेती हूँ मैं, इधर उधर सबको बोलती हूँ तुम ऋतिक हो, तुम ऋतिक हो। मुझे थोड़ी पैसे लग रहे हैं उसे बोलने के। ओके जी, थैंक यू सो मच। हेलो नमस्कार जी, बताइए कहाँ मिलती है ऋतिक को?
3: जी न्यूजीलैंड।
0: वाह यार, मैंने ऐसा कोई, मुझे लग रहा था मैं बहुत ही कठिन सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि कई बार ना मुझे नहीं पता होता, मुझे पूछना पड़ता है चैट जीपीटी से। एनीवेज, थैंक यू सो

मच. पर हमारे पहले कॉलर थे अमित. अमित जी, आपका कॉल ड्रॉप हो चुका है. प्लीज मुझे एक बार वापस से कॉल करें ताकि मैं आपका आपकी डिटेल ले सकूं. और मेक श्योर आपने ये गिव अवे एक मंथ के ड्यूरेशन में नहीं जीता होगा फनीशिया में. प्लीज हाँ, लीजिए गाना, एंजॉय कीजिए. कहो ना प्यार है डैलस. यार ये जो मैंने ऑन एयर बोल दिया ना, मैं सबको ऋतिक बना लेती हूँ. इसको उसको गलत मत समझ लेना यार. देखो कभी कभी किसी किसी को ऐसे बोल देने से उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है यार. और रियली मैं ऋतिक जैसा दिखता हूँ तो ठीक है ना, किसी के चेहरे पे स्माइल लाना सबसे टफ काम होता है. एंड उन्होंने एक ज्ञान की बात बताई थी जाते जाते कि भाई कर्मा होता है, जो देते हो वही वापस आता है. तो मैं स्माइल देती हूँ तो स्माइल वापस आता है. इसलिए मेरा नाम क्या है डायरेस? हंसती मुस्कुराती स्वाति.

यू नो व्हाट, बहुत बार सवाल आया कि ये ए आई ओ आया, मेरा तो पता नहीं, मैं सही से नहीं बोल रही होंगी, लेकिन ये कहाँ से आया भाई, इसकी पैदावार कहाँ की है? क्योंकि हमने इसे गोलमाल में सुना था और ऐसा लग रहा था कि कहीं तो सुना है, पर समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ सुना है, यहाँ से सुना है डायलेस। आज के बाद कोई सवाल करे कि भाई वो जो तुषार कपूर का कैरेक्टर है ना, ए आई यू आई ओ नाम, ए लगता है वॉवल्स बोल रहे, AI AEIOU, ये कहाँ से आया? तो यहाँ से आया, जब लकी अली साहब ने ये गाना गाया था कहो ना प्यार है फिल्म में, ऋतिक रोशन। मजा आ गया। चंडीगढ़ बाइट्स का गिव अवे अमित जी ले गए, ठीक है। अब अमित जी एंजॉय करेंगे इसको न जाने रेखा जी के साथ या जया जी के साथ, पर हमें क्या लेना देना है, हम तो गिव अवे बांट आए हैं यार। अब ये जो लड़की है ये बहुत देर से परेशान कर रही है, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन इसको कहते हैं चुल करना। You know what, छोटी मोर बड़ी बात मैंने सोचा नहीं करती क्योंकि लड़की के साथ ब्यूटीफुल भी जुड़ा हुआ है, जो मैं अपने आप को मानती हूँ डैलेस। यू नो व्हाट, चेहरे की खूबसूरती एक तरफ और मन की खूबसूरती, सोच की खूबसूरती एक तरफ, वो अगर है ना तो आप खूबसूरत हैं डैलेस, मान लीजिए मैंने बोल दिया।

0: कर गई चुल।
1: यार सीरियसली यार, इतनी ठंडी सी फिल्म थी ना, मजा तो बिल्कुल नहीं आया था फिल्म में, लेकिन गाना बड़ा एनर्जेटिक है बाबा। कर गई चुल, कपूर एंड सन्स फिल्म का ये गाना है, जो कि फिल्म तो कभी याद नहीं आती पर गाना अक्सर आता जाता रहता है। जैसे एक गाना मेरे दिमाग में इस वक्त आया है जो कितना पुराना हुआ करता था, मतलब तब भी इसमें बात तो थी और तब भी लोग कहते थे कुमार शानू की आवाज़ में, यू नो। गाना सुन जाएंगे ना कौन सा है। वैसे देखते हैं कौन आया है हमसे मिलने। हेलो, नमस्कार, आप हवा में उड़कर हमारे पास आ चुके हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं। अरे हवा में नहीं उड़ना था यार, क्या स्वाति तुम भी यार बिना पूछे कुमार शानू की आवाज में।
2: ओह गॉड, वन मोर इमेज।

क्या बात है यार, क्या बात है। यू नो व्हाट डैलस, एक बहुत ही अच्छे विषय पर चर्चा चल रही है। मेरे साथ मेरी कॉलर हैं, लेकिन वो ऑन एयर नहीं आना चाहती, बट ठीक है, कोई बात नहीं। उनका एक सवाल है कि स्वाति जी, ऐसा तो नहीं है कि आप जो डीजेज होते हैं या आरजेज होते हैं, इनका हर दिन हर समय मूड अच्छा होता है, हमेशा आप खुश हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई दुख ही नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है? ऐसा नहीं होता ना, आप होते हैं दुखी, आपको अच्छा नहीं लगता है, कोई दिन आपका डाउन होता है, तो फिर आप ऐसा प्रिटेंड क्यों करते कि आप हैप्पी हैं? आप क्यों नहीं आके बता देते कि आज अच्छा नहीं लग रहा है? आप सही क्यों नहीं हो जाते? आप चीट या बिट्रेल क्यों कर देते हैं? या फिर आप कभी नहीं फील करते ऐसा कि आप अपने आप को चीट कर रही हैं क्योंकि आप हैप्पी नहीं हैं, लेकिन आप प्रिटेंड कर रही हैं कि आप हैप्पी हैं? तो इस सवाल का बहुत ही धांसू तरीके से सवाल आया है वैसे मेरे ऊपर, बिल्कुल बरसात की तरह। तो सवाल का जवाब तुरंत ही मेरे पास है, क्योंकि मैं कोई भी जवाब बना नहीं रही हूँ। मेरे अंदर ये बात है कि जैसे यू नो घर के बड़े होते हैं, जैसे हमारे पापा होते हैं, पापा को क्या क्या देखना पड़ता है, क्या क्या चल रहा होता है उन लोगों की लाइफ में, लेकिन हम बच्चों तक वो बात नहीं आती, या हमसे पापा से जो भी छोटे हैं उन तक वो बात नहीं आती, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं इस चीज़ के लिए कि सब कुछ, घर का जो माहौल है, जो भी चीज़ें हैं, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर मूड वो ख़राब कर देंगे, सबको बता के सबको दुखी कर देंगे, तो भी वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, और अपने पर रख कर अगर किसी को ना बताकर भी वो चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे और सबके चेहरे पर वो खुशियाँ बनी रहेगी, तब भी वो रिस्पॉन्सिबल है। ऐसी माँ होती है, अपने बच्चे को हर चीज़ नहीं बताती कि वो कब दुखी है, उसको कब रोना आ रहा है। ऐसे ही पता है, हम आरजेज यहाँ फनी शरीरियों में हम आपके लिए हैं, और हम आपके दिन और मूड को बनाने के लिए, और अगर कुछ बिगड़ गया है उसे सही करने के लिए हैं। तो हम यहाँ आकर अपना दुखड़ा रोकर आपको दुखी कर दे, ये हमें सही नहीं लगता। तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं आपकी खुशियों की, आपके एंटरटेनमेंट की। यही वजह है कि हम कभी अगर दुखी भी हों, कभी हमारा मूड ऑफ भी हो, तो भी हम आकर वो चीज़ नहीं स्प्रेड करते, यानी कि नेगेटिविटी नहीं स्प्रेड करते, हम स्प्रेड करते हैं ओनली ओनली पॉजिटिविटी। अब ये जवाब जब मैंने उनको दिया, तब भी वो मुझसे इतनी सहमत नहीं हो रही थी, और वो सही है अपनी जगह पर, वो बिल्कुल करेक्ट है, और वो मुझे ये कह रही थी कि नहीं स्वाति जी, आप चीटेड फील नहीं कर रही कि आपने अपने आप को चीट किया या कुछ? तो मैं यही बोलती हूँ कि कई बार जब हम जिस गली में जाने से पहले 10 बार सोचते हैं, जैसे कि ऐसा होता है कई बार कि जब मैं यहाँ आ रही होती हूँ, मेरा शो पर आने का मन नहीं होता, मैं उस दिन दुखी हूँ या मेरा मूड ऑफ है या कुछ है, लेकिन क्योंकि मेरे पास मुझे इस शो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आ जाती हूँ। और जब मैं आ जाती हूँ, तब मैं प्रिटेंड भी करती हूँ, चलो कि आज मेरा मूड ठीक नहीं, लेकिन फिर भी मैं खुश हो रही हूँ, फिर भी मैं चहक के बात कर रही हूँ, खुशियाँ स्प्रेड कर रही हूँ। पर पता है, ऐसा करते करते ना मैं सचमुच खुश हो जाती हूँ। यानी कि जब आप पॉजिटिव करते हैं और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं, जब आपकी वजह से दो लोग स्माइल करते हैं, तो इवेंचुअली आप भी स्माइल करने लगते हैं। एंड जो आप घर में बैठ के इस वक्त दुखी हो रहे होते, अगर आपने अपने आप को पुश किया कि मैं जाता हूँ या जाती हूँ, और मेरा काम है, मैं करता हूँ या करती हूँ, एंड देन उसके बाद आप डिफरेंस फील करते हैं, तो आप कुछ चीट नहीं कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। आई होप हमारी कॉलर को उनका आंसर मिल गया होगा, एंड मुझे पता है कि शायद सेटिस्फेक्शन ना हो, बट दिस इज वॉट आई डू एंड दिस इज वॉट आई फील एंड बिलीव। सो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन, एंड फ्राइडे की ये वाइब आरजे स्वाति के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं, हंसती मुस्कुराती स्वाति 104.9 FM फनी शो रेडियो पर।

0: छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, पर किसी को ऑन एयर ले लिया है। हेलो नमस्कार, मैं आपसे ऑफ एयर बात करती हूँ क्योंकि हमारा टाइम चला गया। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, ब्रेक के बाद मैं वापस आती हूँ और आपसे करती हूँ ढेर सारी बातें।
1: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
2: बैठ जाऊँ? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
3: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
2: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
4: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
1: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
5: सब कुछ साफ रख सकते हो,
6: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती। कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
7: क्योंकि ये कौन बोला?
6: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
2: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 9728772500।
8: Ready to turn up the heat? Introducing our Achari Paneer Pizza, where bold Indian spices meet cheesy perfection. Think tangy pickle flavors, a dash of chili, and soft paneer cubes soaking up every bit of that spicy magic, all on a hot, fresh crust straight from the oven. It's not just a pizza, it's a flavor explosion with every bite. If you dare to try something bold, come grab your Achari Paneer Pizza today, only at Fun Pizza Kitchen, where tradition meets the oven. Fun Pizza Kitchen, flavor that fires you up.
9: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Pan Asia.

ब्रेक के बाद आपका स्वागत है डैलस। देखिए, मैं आज बड़ी खुश हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों 3-4 हफ्ते से जब से मेरा ये नया शो स्टार्ट हुआ है, मैंने आपकी बातों के लिए और आपके मोटिवेशन के लिए काफ़ी क्रेव किया है। एंड इस वीक मुझे बढ़ चढ़कर रिस्पांस मिल रहा है। थैंक यू सो मच आपके प्यार और अपनेपन के लिए एंड मुझे सुनने के लिए 104.9 FM यानी कि फन की फ्रिक्वेंसी राइट रखने के लिए। थैंक यू सो मच डैलस। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है डैलस, दिस मे 14th to 17th स्टेप इन टू अ 3-डे इमर्सिव जर्नी टू रिलीज स्ट्रेस, क्लियर इमोशनल ब्लॉक्स एंड रिकनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ थ्रू पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक्स गाइडेड बाई एक्सपीरियंस्ड जो आपके जानने वाले हैं, जिनके थ्रू आपको ये जानने का मौका मिलेगा कि कैसे आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सब कुछ करते हुए भी स्ट्रेस को दूर रख सकते हैं, कैसे अगर आपके अंदर इमोशनल ब्लॉक्स हैं तो उसे आप क्लियर कर सकते हैं। इनके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, प्रॉपर मेडिटेशन टेक्निक सिखाई जाएगी। तो ज़रूर आइए, आप मिस मत कीजिएगा। ये इवेंट होने वाला है May 14th to 17th बिकॉज समटाइम्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ इज टू स्लो डाउन। एंड कोई चीज़ अगर आपको सुनने और समझने का मौका मिल रहा है तो आलस छोड़ दीजिए एंड ज़रूर आइए। रजिस्टर नाउ एट osho-universal.org। क्या पता कौन सी किस्मत की घंटी बज रही हो और आपको मौका मिल जाइए जानने का कि लाइफ में से स्ट्रेस को और इमोशनल ब्लॉक को कैसे रफा दफा किया जाए, है ना। वैसे इसका एक और मंत्र है, वो ये है कि अच्छे लोगों के साथ जुड़े रहिए, अच्छी बातें सुनिए और अच्छी बातें कीजिए। एट द सेम टाइम म्यूजिक इज द बिगेस्ट थेरेपी। अगर आपका अपना कोई सवाल है, कोई जवाब है, किसी से कोई बात करने का मौका नहीं मिल रहा है, मैं यहाँ हाजिर हूँ, मुझसे बात कीजिए, मैं आपके गुफ्तगू में पार्ट लूँगी। एंड उसके अलावा नंबर बता दूँ 9722355555 एंड डैलस। याद रखिए, जिससे मन करता है ना और जिससे बात करके दिल हल्का होता है, उसको कॉल करने के पहले एक बार मत सोचेगा, बोल दीजिएगा। एंड आज तो फ्राइडे है, आज तो ना पता है सारा बिल आप इस बात पे भी फाड़ सकते हो कि यार आज तो हंसने मुस्कुराने का मौका है, मैंने बोल दिया बॉस कोई चीज़ दिल पे मत ले, ठीक है, खुश हो जा खुश। एंड अगर बन रहा है तो जी भर के डांस करो, इससे भी स्ट्रेस गायब हो जाता है। अच्छा म्यूजिक, अच्छा डांस, स्ट्रेस गायब।

0: डैलस, जब आपको कभी कभी कुछ चीजें जो आप सुन के आए होते हैं ना, आपको ऐसा लगता है कि शायद वो मेरे लिए बना नहीं है. मतलब जैसे कभी कोई बोलता है ना कि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, जब तक आपके साथ बीतता नहीं है ना, आपको मानने का मन नहीं करता. जैसे मैं ना आपको बता रही थी ना कि 3-4 हफ्ते से बड़ा ही सूखा पड़ा हुआ था मेरे इधर फाइनेंशिया रेडियो में, फ्राइडे का 8 to 10 का मेरा वाला शो. मैंने पूरी कोशिश करी, मैंने ये किया वो किया वो किया वो किया, पर कुछ हुआ नहीं. बट यू नो वॉट, सब्र का फल मीठा होता है. ये भी आज सिद्ध हो गया, फिर ये भी सिद्ध हो गया कि भगवान जब देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं. आज कॉल्स का सिलसिला रुका नहीं है. थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया फनीशा रेडियो के लिए, में ट्यूनिंग करने के लिए. 104.9 FM फनीशा रेडियो सुनते रहिएगा. और हमारे पास 15 मिनट है आप के लिए. एक इन्फॉर्मेशन है कि विद कनेक्टिंग अमेरिका यू कैन टर्न योर बिजनेस एक्सपेंसेस इन टू अ पावरफुल इनकम स्ट्रीम थ्रू अ यूनिक इंश्योरेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी डिजाइन टू बूस्ट योर बॉटम लाइन. एंड इट डजंट स्टॉप देयर, दे ऑल्सो हेल्प होम ओनर्स पे ऑफ देयर मॉर्गेज इन 10 years और लेस. सो डोंट वेट, कॉल जेन्स टूडे एट 321-888-7345, या फिर आप विजिट कर सकते हैं connectingamericafinancials.com and start turning your daily expenses into income. Connecting America, where smart business owners turn cost into cash. तो फिर अगर आप भी business owner हैं तो connectingamericafinancials.com पर विजिट कीजिए, या फिर जेम्स को कॉल कीजिए 321-888-7345. डैलस, मेरे लिए एक, मतलब मेरे पास आपके लिए एक गाना है. फुट टैपिंग साउंड ट्रैक इज संग बाय नेहा कक्कर एंड बादशाह. एंड आपको पता है कि अभी अचानक एसी चलते चलते ठंडी कहाँ से आ जाती है यार. आई हेट दिस. लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि देखो, 2-4 दिनों के बाद आप यही बोलने वाले हो कि कोई एसी चला दो यार.
1: अरे यार, कोई एसी चला दो यार.
2: सही है, सही.
1: मजा ही मजा ब्रो. चलो शुरू करते हैं.

डैलस, हम कभी नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसी कोई अप्रिय घटना हो जो कि आपको तकलीफ पहुंचाए, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ हो जाता है, इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन अ कार और ट्रक एक्सीडेंट और स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट, देन आप एक नाम ज़रूर याद रखिए, अटर्नी उमर ख्वाजा, बिकॉज अटर्नी उमर ख्वाजा विल फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व. डीलिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज कैन बी स्ट्रेसफुल एंड यू नीड अटर्नी दैट will make sure you are compensated. तो आपके लिए, आपकी खिदमत में हाजिर है उमर ख्वाजा. आप उनका नाम ज़रूर याद रखें और उनका नंबर भी याद रखें, और फ्री कंसल्टेशन के लिए आप कॉल ज़रूर कीजिए 4693005046 4693005046, या फिर आप विजिट कर सकते हैं attorneyumarkhwaja.com. You don't pay until you win. तो नंबर एंड वेबसाइट ज़रूर याद रखें, attorneyumar

4693005046 या फिर आप विजिट कर सकते हैं attorneyumarkhwaja.com. यू डोंट पे अंटिल यू विन. तो नंबर एंड वेबसाइट जरूर याद रखें attorneyumar.com 4693005046.

ऑलराइट डैलस, मेरा आपसे इजाजत लेने का हो चला है वक्त. आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आपका वीकेंड और आपका पूरा वीक आने वाला हो मंगलमय. यही मंगल कामना करती है यारजे स्वाति. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड लिसनिंग टू माय फ्राइडे वाइब शो, जहां पे मैंने पूरी कोशिश की कि आपका वाइब रहे हाई एंड आपकी फ्रिक्वेंसी रहे राइट. तो आप नेक्स्ट फ्राइडे 8 to 10 PM के बीच ट्यून इन करना मत भूलिएगा. तब तक के लिए मुझे यादों में याद रखिए एंड मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा. डैलस, एंजॉय कीजिए आज की ये शाम, एंड मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला।
3: ओ हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: It's true, hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
4: Get ready for the smoky, flavorful goodness of Tandoori Chicken Pizza. Perfectly marinated tandoori chicken, mildly spiced, tender, and bursting with aroma. Layered over creamy cheese and a golden crust. It's the perfect balance. Not too spicy, not too mild. Just right for every flavor lover. Taste the magic of the tandoor on your favorite sliced tandoori chicken pizza. Only at Fun Pizza Kitchen. Fun Pizza Kitchen, where every slice tells a story.
6: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
1: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।
2: ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां।
3: जुल्फें सिर्फ हवा में नहीं, स्टाइल में भी उड़नी चाहिए। बॉलीवुड स्टाइल लेयर्स हो, सॉफ्ट कर्ल्स हो या कंप्लीट हेयर मेकओवर, अमरीन सैलून गिव्स यू दैट परफेक्ट हेयर स्टाइल जो आपकी पर्सनालिटी को करे हाईलाइट। बिकॉज ग्रेट हेयर डजंट जस्ट चेंज योर लुक, इट चेंजेस योर कॉन्फिडेंस। Mention Funasia and get 10% off on your hairstyle service. Call Amreen at 214-909-6601.
4: Or visit their Instagram, Amreen Salon, located at Allen and Frisco.
3: Amreen Salon. Style that moves with you.
5: यार मैं थक चुकी हूँ। पार्टी के पहले सफाई, फिर पार्टी, बाद में सफाई, ऊपर से आप तो कोई मदद करते हो नहीं। मेरे से नहीं होगा ये।
6: अरे यार बोला ना, लेकिन तुम्हें सुनना ही नहीं। बताया ना, जहाँ पार्टी है वहीं खाना है, जहाँ खाना है वहीं पार्टी है। सिंपल।
5: मतलब
6: देख, जगह बुक करेंगे पूरे 3 घंटे के लिए, और वो भी सिर्फ $250 में। और खाना पीना जो ऑर्डर करना है वो अलग से पे करके वहीं ऑर्डर कर लेंगे। अब तेरे को तेरी सफाई की पड़ी है, अब खुल के पार्टीज कर, चाहे क्रिसमस हो, थैंक्सगिविंग हो या फिर तेरे भाई का बर्थडे। नाम याद रख बस, फन पिज्जा एट कॉलोनी।
4: विजिट फन पिज्जा किचन, FPK एट कॉलोनी इज नाउ ओपन फॉर डाइन इन।
7: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है, पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है। और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8 2 3 4 6 4 6 1 1 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई।
8: Astrology readings for guidance only and results may vary.
9: ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಡ್ಯಾಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ NCR ಇಂದ ಟಾಪ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಫ್ ಕೆಳಗೆ. 200+ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನಕ 9th May and 10th May. ಸ್ಥಳ ಹಯಾತ್ ರೀಜೆನ್ಸಿ, ಫ್ರಿಸ್ಕೋ, ಡ್ಯಾಲಸ್. ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:00 to 8:00. ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್. ಮೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.

0: संगीत प्रेमियों को जगजीत सिंह का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपसे मुखातिब हूँ इस वक्त फन एशिया रेडियो की तरफ से।
1: Don't miss out on the dance party of the year. Join the club Fun Asia Revolution and let the good times roll.
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
3: Official tax and finance partner, AG Fintax.
2: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
4: अभी बजाए करना भिड़ो
5: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे।
6: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट। When it comes to taxes, only one name pops up, AG Fintax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG Fintax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna, that's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG Fintax. Plan today, profit tomorrow.
7: Get ready for the smoky, flavorful goodness of the Tandoori Chicken Pizza. Perfectly marinated tandoori chicken, mildly spiced, tender, and bursting with aroma. Layered over creamy cheese and a golden crust. It's the perfect balance. Not too spicy, not too mild. Just right for every flavor lover. Taste the magic of the tandoor on your favorite sliced tandoori chicken pizza. Only at Fun Pizza Kitchen. Fun Pizza Kitchen, where every slice tells a story.
8: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
9: Hi, I am Shah Rukh Khan. You are listening to Fun Asia.

0: मजा आएगा ना भिड़ो।
1: अपुन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे।
2: यार मैं थक चुकी हूँ, पार्टी के पहले सफाई, फिर पार्टी, बाद में सफाई, ऊपर से आप तो कोई मदद करते हो नहीं, मेरे से नहीं होगा ये।
3: अरे यार बोला ना, लेकिन तुम्हें सुनना ही नहीं, बताया ना जहाँ पार्टी है वहीं खाना है, जहाँ खाना है वहीं पार्टी है, सिंपल।
2: मतलब
3: देख, जगह बुक करेंगे पूरे 3 घंटे के लिए और वो भी सिर्फ $250 में, और खाना पीना जो ऑर्डर करना है वो अलग से पे करके वहीं ऑर्डर कर लेंगे। अब तेरे को तेरी सफाई की पड़ी है, अब खुल के पार्टीज कर, चाहे क्रिसमस हो, थैंक्सगिविंग हो या फिर तेरे भाई का बर्थडे। नाम याद रख बस, Fun Pizza at Colony.
4: Visit Fun Pizza Kitchen. FPK at Colony is now open for dine-in.
5: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to Fun Asia Radio.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: अभी मजा आएगा ना भिड़ो
3: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे।
4: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल वन मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल टू मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट। लेवल थ्री अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
5: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम सम

0: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है। पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 6823464611 और विजिट masterjoshiram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए।
1: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिसर्च में वेरी।
2: हाय, दिस इज कोंकणा सेन शर्मा एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन फन एशिया रेडियो।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: अभी मजा आएगा ना भिड़ो
3: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे
4: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में
5: कभी चटपटा सा ट्विस्ट कभी तीखा सा किक कभी मीठा सा सुकून
4: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज
5: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स द फ्लेवर लाउंज हर बाय

0: on your airwaves.
1: Turn it up.
0: Brought to you by Club Fanasia.

0: Asia.
1: I love it.
0: The ultimate celebration of music and rhythm.

0: चट्टान से कूदने जा रही हूँ तो मेरी बहनों से तो मैं बता रही हूँ। पर क्यों? क्योंकि ये देखो #you #out #her और उसे भी लगता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रब हूँ।
1: उसे कूदने से पहले उसे बता के तो जा।
0: क्या

0: Male.
1: 104.9 FM Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Pure Facts, they see.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग। क्या बात है, क्या चीज है पैसा?

0: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है। पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 6823464611 और विजिट masterjoshiram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस
1: लाइए।
2: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशा 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

बस आशिकों पे रहे।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: अभी मजा आएगा ना भिड़ो
3: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे.
4: हाय दिस इज विनय पाठक एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: अभी मजा आएगा ना भिड़ो
3: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे।
4: हाय आई एम शाहरुख खान, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

विठ विठ जाशनी।

0: हर घूट में स्वैग है, हर घूट में स्वैग है, हर घूट में स्वैग है, हर घूट में स्वैग है।
1: शुपोए बादशाह
0: बिंटा रहे फ्लाई बॉय, ये हम लाइफ पे हाई बॉय, ये तू रख तेरी राय बॉय, ये

0: बुला दे, हर घूट में स्वैग है।
1: अभी भी एक घूंट बाकी है।

0: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
1: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
2: हेलो गाइज, दिस इज मी किंजल दवे एंड यू आर लिसनिंग एंड वॉचिंग फन एशिया रेडियो।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

Fantasia 104.9 FM turns up the heat in Dallas.

का दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है बोली में थोड़ा रियान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ BADशा नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा थी तेरी ना

0: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
1: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
0: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
1: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।
2: This is Ali Zafar, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: सीकर फट जाए।
1: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
2: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।

0: अच्छा लगता है फारूक नहीं बोलेगा।
1: उसका बाप भी बोलेगा।
2: बेटा वार्निंग नहीं दूंगा।
3: 25 किलो HMX हमारे शहर में आ चुका है, ना जाने अब तक उसके कितने टुकड़े पूरे शहर में पड़ चुके होंगे।
4: होली स्पिरिट हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंट विक्टिम लाया गया है। He's a human bomb.
5: देख बेटा

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: Hi, I'm Vijay Karthik. I've served as a global C-suite executive, led thousands of employees, advised boards, and earned industry recognition for innovation and leadership. My career spans decades of responsible governance, strategic planning, and delivering results at scale. That level of experience is rare in local government. Fisco deserves its most qualified leader, someone prepared from day one. Vote Vijay Karthik for Fisco City Council Place 5. For more information, you can check out my website at www.vjforfisco.com. This is Vijay Karthik, and I approve this ad.
1: Immigration attorneys in the DFW area. If you're looking to grow your client base and reduce your overheads, join Fun Asia Media Group for an exclusive short seminar designed only for you. Discover how Fun Asia can deliver a steady stream of qualified clients while helping you cut costs on paralegal work and routine filings. Plus, enjoy a complimentary lunch on us. Seats are limited. Please email your interest to immigration@funasia.net to reserve your spot.
2: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
3: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
2: कैसे?
3: पेज 3 ईटरी?
2: No, not another restaurant again.
3: Dude, it's Page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
2: मतलब great food, great drinks, and great company. यानी कि मैं।
4: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat. 3 minutes. That's how long it takes to sign up with Bezit. They challenge your property tax appraisal, build the case, go to the hearing. You just wait for the result. 89% of customers get a reduction. Average savings over $1,100. Call in and Denton County. May 15th is your last day this year. Bezit.co.
5: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
4: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: गुडनेस इज अ ब्यूटीफुल थिंग एंड गुड बिगेट्स गुड। One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadaqa and donation. Visit siutna.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 nonprofit organization.

0: आपके सुहाने सफर का साथी फन एशिया रेडियो।
1: बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या

0: ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338। myfamilyhomeloan.com इज पावर्ड बाय लोन फैक्ट्री, NMLS 2025289, लाइसेंस्ड मॉर्गेज ब्रोकर इन टेक्सस। ऑल लोन सब्जेक्ट टू क्रेडिट अप्रूवल। Equal housing lender.
1: It's true. हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट sometimes, इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 ईयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर, पंडित ईश्वर जी, 9455270897, or visit astrologerishwar.com.
2: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
3: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
2: Kya matlab?
3: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
2: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
3: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
2: Ab to karna hi padega, madam.
4: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
5: Hi, this is Ranveer Shori and you're listening to me on Fun Asia Radio.

सुप्रभात दोस्तों, सुस्वागत है माफी के कार्यक्रम म्यूजिक मंत्र में, जिसमें मैं हूं आपके संग संगीता। आपका मेरा साथ रहेगा सुबह के 10 बजे तक। हमारे साथ रहेंगे मीठे तराने और खूबसूरत संगीत। उम्मीद कर रही हूं कि आपका ये वीकेंड जो है सुखद जा रहा है, बढ़िया जा रहा है। और अब आप जुड़े हैं मेरे साथ ऑन दिस म्यूजिकल जर्नी, जहां मैं ले चलूंगी आपको बहुत ही प्यारे गीतों की ओर। सम फन फिल ट्रैक्स ऑन दिस साइड ऑफ दी शो। और आज सभी गाने जुड़े हुए हैं एक मकसद के साथ, और वो है मनाएंगे हम आज नेशनल फिटनेस डे साथ साथ। सो विद दैट सेड, सॉन्ग्स दैट शो सम गेम्स, सम फन फिटनेस मूवमेंट्स, एंड यू नो समथिंग लाइक दैट, गिव मी कॉल, लेट मी नो। तो वो नेशनल फिटनेस डे के जरिए जुड़े हैं आज गाने साथ साथ, ऑल द वे अनटिल 10 AM ऑन म्यूजिक मंत्रा, जिसमें मैं हूँ आपके संग संगीता। एंड दीज पीपल, दे आर ऑन देयर रोलर स्केट्स। यू रिमेम्बर कौन है ये बताएंगे मुझे 9722355555 पे।

रोलर स्केट्स पर दिखाई दिए थे हेमा मालिनी और संजीव कुमार फ्रॉम द फिल्म सीता और गीता जो 1972 में रिलीज हुई थी. बट मोर इम्पोर्टेंटली दे वर हैविंग फन वाइल बीइंग फिट ऑन दोस ब्यूटीफुल रोलर स्केट्स ऑन अ ग्रेट फैंटास्टिक डे. एंड टुडे इज अ नेशनल फिटनेस डे. एंड फिटनेस, व्हाट इज फिटनेस? वेल, फिटनेस इज द एबिलिटी ऑफ योर बॉडी टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज एफिशिएंटली विद energy left over for other pursuits and that too without excessive fatigue. With that said, fitness isn't just about how you look or how much you can lift, but it is a broader concept. Aur is concept mein kafi kuch aur bhi hai shamil, including, you know, mental well-being and consistency of healthy habits, energy levels and recovery. Won't get into the technicalities of it because I want to take you to this next track jisme dikhai de rahe hain ki ye they are having fun on their bikes yani ki cycles and ye wale mein to bhai double biking ho rahi hai. चलिए, अगर पहचान लिया आपने इस गाने को और याद है किस फिल्म का है तो बताएंगे मुझे 972-235-5555 पे. बस में बैठी हैं दो एक्ट्रेसेस और साथ में बाइक्स पे आए हैं उनके हीरोज. सुन रहे हैं आप म्यूजिक मंत्र जिसमें मैं हूं आपके संग संगीता.

0: बाइक पे दिखाई दिए थे हीरोज अमिताभ बच्चन और शशि कपूर, और इनकी हीरोइन जो थी बैठी हुई थी बस में, और वो थी बिंदिया गोस्वामी और परवीन बाबी. एंड जब बाइक पे थे और मुझे डर लग रहा था कि कहीं गिर न जाएं. वेल, अगर आपके साथ कोई ऐसा किस्सा हो या कोई हादसा हो जिसमें कार या ट्रक का एक्सीडेंट हो या कोई हो स्लिप एंड फॉल का इंसिडेंट, तो नाम याद रखिए, क्योंकि आपने चाहिए होगा कोई बहुत ही खास, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटर्नी. और वो अटर्नी का नाम आपने याद रखना है, अटर्नी ओमर ख्वाजा, बिकॉज अटर्नी ओमर ख्वाजा विल फाइट योर केस एंड विल गेट यू द कॉम्पेंसेशन दैट यू डिजर्व. और पता है ना आपको कि इंश्योरेंस कंपनीज के साथ डील करना बहुत ही कठिन काम है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही स्ट्रेसफुल है. तो यू डेफिनेटली आल्सो एट दैट टाइम नीड एन अटॉर्नी बाय योर साइड हु विल मेक श्योर दैट यू आर कॉम्पेंसेटेड. सो वन मोर टाइम, दैट नेम टू रिमेम्बर इज अटॉर्नी ओमर ख्वाजा. एंड विद अटॉर्नी ओमर ख्वाजा सर्विसेज यू डोंट पे अंटिल यू विन. नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन विद अटॉर्नी ओमर ख्वाजा, you need to call them at 469-300-5046. And for more information so that you can understand all the services that they offer, you want to visit attorneyomar.com.
1: Dallas ki dhadkan 104.9 FM Phoenicia Radio.
0: आज हम बातें कर रहे हैं फिटनेस के बारे में. इट इज नेशनल फिटनेस डे एंड यू नो इट्स अ गुड टाइम. इट्स ऑल्सो द स्टार्ट ऑफ द मंथ ऑफ मे, जस्ट द सेकेंड ऑफ मे, एंड यू हैव मोस्ट ऑफ द ईयर स्टिल अहेड ऑफ यू टू काइंड ऑफ परस्यू योर फिटनेस गोल्स. सो ऑन दिस नेशनल फिटनेस डे, आई वांट टू टॉक टू यू अ लिटिल बिट अबाउट फिटनेस. एंड फिटनेस इंक्लूड्स डिफरेंट कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, muscular strength and endurance, flexibility, body composition, and as I mentioned earlier, mental well-being, consistency of healthy habits, and energy levels and recovery. And all of these can be done by having fun. Fitness is fun. Fitness can be really fun agar jo aap involve ho jayein aur pursue karein un fitness regimes ko, that is fun. Such as playing games. So here's one. Pakdo, pakdo, pakdo. Film Shaan ki us gaane ke baad, ab film Naseeb ki is gaane ko enjoy karte hain.

अचीविंग योर फिटनेस गोल्स थ्रू फिटनेस एक्टिविटीज, और काफी सारी एक्टिविटीज रहती हैं थ्रू विच यू कुड अचीव योर फिटनेस लेवल, एंड दोज इंक्लूड एरोबिक एक्सरसाइज यानी कि कार्डियो, जैसे कि हो गया वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, डांसिंग, स्किपिंग रोप और स्विमिंग. उसके अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड यू नो लिफ्टिंग वेट्स यूजिंग रेजिस्टेंस बैंड्स, पुशअप्स एंड समटाइम्स ऑल्सो हैवी गार्डनिंग. उसके अलावा होते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेस, एंड दोज इंक्लूड योगा, पिलाटेज एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस. देयर इज अ बैलेंस एंड स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस व्हिच इंक्लूड्स स्टैंडिंग ऑन वन लेग एंड हील टू टो वॉकिंग. वेरी डिफिकल्ट, बट मोर डिफिकल्ट इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्टिविटी व्हिच इज कॉल्ड हिट, यानी कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग. बॉय इज दिस हार्ड और व्हाट. देयर इज अ sprinting, the circuit training and fast-paced cycling involved in this, and then my favorite, which are group fitness classes such as spinning, aerobics and zumba. Well, with that said, aapse pooch rahi hoon, what is your favorite type of workout or fitness exercise or fitness activity? It does not have to be an exercise, it has to be an activity. Share with me which one that would be your favorite fitness activity. I think swimming is a फेवरेट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. एक गाना है मेरे पास यहाँ पर आपके लिए, पर आपसे पूछती हूँ व्हाट इज योर फेवरेट फिटनेस एक्टिविटी. लेट मी नो एट 972-235-5555.

0: इमिग्रेशन पेपर वर्क से परेशान? अब टेंशन छोड़िए। easypetition.com के साथ USCIS पेटिशन फाइल करना हुआ इजी। आप खुद इंडिपेंडेंटली प्रिपेयर और फाइल कर सकते हैं पेटिशंस लाइक F1 या B1 चेंज ऑफ स्टेटस, F1 OPT, H4 विद EAD, I-485 और I-485J, N400 नेचुरलाइजेशन और 200 से भी ज्यादा पेटिशन टाइप्स और प्राइसिंग सिर्फ $30। तो आज ही जाइए easypetition.com पर, easypetition.com।
1: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है, पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8-6823464611 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए।
2: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन रिसर्च में।
3: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
4: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
3: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
4: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
5: Attention business owners, what if your everyday expenses could actually make you money? That's right, with Connecting America, you can turn your business expenses into a powerful stream of income via a unique insurance product. If you are looking to boost your bottom line, they got the strategy that works for you. Plus, they help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less.
0: Don't wait. Call James at 321-888-7345 today or visit ConnectingAmericaFinancials.com and discover how to turn your daily expenses into income. Connecting America, where smart business owners turn costs into cash.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट। When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Grandhi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna, that's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Grandhi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
11: Planning to buy a perfect home or make a smart investment in India? Now it's easier than ever. Grah Pravesh, India Property Expo in Frisco. Meet top developers from Hyderabad, Bengaluru, Mumbai, Pune, Chennai and Delhi NCR all under one roof. Explore 200 plus projects and find the right property that fits your plans. 9th and 10th of May, Hyatt Regency Frisco, Dallas, 10 a.m. to 8 p.m. Free entry and free parking. Biggest India Property Expo by My Square Feet.

सभी श्रोताओं का फिर एक बार स्वागत है म्यूजिक मंत्र में, जिसमें मैं हूँ आपके संग संगीता, और हमारे साथ है मीठे तराने, खूबसूरत संगीत जो कि आधारित है आज नेशनल फिटनेस डे को मनाने के साथ, यानी कि वी आर सेलिब्रेटिंग नेशनल फिटनेस डे विद सम म्यूजिक एंड सम नोट्स एंड टॉकिंग अबाउट फिटनेस। तो फिटनेस, जैसे हमने पहले भी कहा, इट is the ability of your body to perform daily activities efficiently with energy left over for other pursuits without excessive fatigue, and it is a broader concept to include mental health or mental well-being, consistency of habits and energy levels and recovery. Sounds like a mouthful, but honestly, you know what it is. Staying fit is easy, but sometimes staying fit isn't easy. The one thing that can make it a little bit easy is consistency. Yani ki, chale chalo,

इस गाने में आपने देखा इंटेंस रनिंग ट्रेनिंग, देयर इज एंड्यूरेंस बीइंग बिल्ट एंड द माइंडसेट ऑफ एन एथलीट पुशिंग लिमिट्स. और जो अगला गाना है, इट इज रियली अ सॉन्ग अबाउट रीबिल्डिंग स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना, अबाउट फिजिकल कमबैक एनर्जी, अबाउट स्ट्रगल, डिसिप्लिन एंड फोकस. कर हर मैदान फतेह.

0: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।
1: सुन रहे हैं आप म्यूजिक मंत्र, जिसमें मैं हूं आपकी संगीता। बताना चाहूंगी कि मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, जो कि लोकेटेड है प्रेस्टन रोड पे इन फ्रिस्को, इट इज योर गो टू डेस्टिनेशन फ्रेंड्स फॉर डायमंड रिंग्स दैट आर स्टनिंग, इयररिंग्स दैट आर अमेजिंग, नेकलेस डिजाइंड इम्पेकेबल एंड मोर दैट स्पार्कल कैन बी फॉर एवरी स्पेशल मोमेंट। नाउ यू गोइंग टू फाइंड यू नो व्हाट, क्लासिक डिजाइन वाले सॉलिटेयर्स, इनके पास कुछ मॉडर्न डिजाइन वाले के भी काफी सारी ज्वेलरी हैं। देयर डायमंड कलेक्शन ब्लेंड सुपीरियर क्वालिटी विद टाइमलेस डिजाइन। नाउ दीज मेक इट परफेक्ट फॉर ऑल ओकेजंस, बट स्पेशली फॉर एंगेजमेंट्स एंड एनिवर्सरीज। नाउ आई ऑल्सो वांट टू टेल यू, यू कैन डाउनलोड देयर मोबाइल ऐप एंड गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू आर लुकिंग फॉर, सो दैट यू कैन गो अहेड एंड शाइन ब्राइट एवरी टाइम यू हैव डायमंड्स फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स।
2: 104.9 FM Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, non-stop entertainment.
1: Celebrating National Fitness Day right here on Music Mantra, जिसमें मैं हूँ आपके संग संगीता। Now we talked about being fit. Well, fitness is not limited to physical fitness only. It is to do with the mental well-being as well. और उसके लिए आपने बहुत कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है। Few things that really help are things like being focused on things, like being present in the moment. You need to have an emotional balance. You should talk about your mental well-being if it is needed. And sometimes all you need is self-love and self-talk. With that said, here's a song for all of us to enjoy. And it's called Love You Zindagi. Film ka naam Dear Zindagi. Alia Bhatt aur Shah Rukh Khan ki film thi ye. In the next segment, we're going to really dance it out. So for now, this is Love You Zindagi.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: अभी मजा आएगा ना भिड़ो
3: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे
4: लैपटॉप चार्जर कॉफी फोन उफ ऑफिस का चेकलिस्ट यार खत्म ही नहीं होता
5: एग्जैक्टली और ऊपर से व्हाट टू वेयर का स्ट्रेस अलग
4: ओ गॉड पहले आउटफिट फिर उसके बाद उसके साथ क्या पहनना है
5: हाँ आई कीप दैट पाथ सिंपल
4: कैसे
5: ज्वेलरीज जो ऑफिस डिनर वीकेंड हर दिन हर ओकेजन को सूट करे
4: ओ दैट काइंड ऑफ ज्वेलरी
5: या कैरेट लेन काइंड
0: Lightweight, real diamonds, your everyday fine jewelry. Made to be worn, not stored. Carat Lane, a Tata product, now open in Frisco.
6: Shaadi byah ka koi mauka ho, ya koi tyohar, khoobsurat libaas khushiyon ko dugna kar deta hai.
0: Har khushi mein aapke saath, Manyavar Mohe. Traditional celebration wear for men, women and children. Crafted with exquisite blended fabrics. Manyavar Mohe, located on Regent Boulevard of 635 East in Irving.
7: Aaja meri gaadi mein baith ja.
5: Baith jaun? पक्का कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था
8: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था
5: थोड़ा तेरी गाड़ी डेट पे कम वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है
9: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
10: इन प्लेनो
9: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स मेंटेनेंस रिपेयर्स ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ कंपटीटर कोर्ट मैच भी कॉल 4692983870 पहले गाड़ी ठीक कराओ फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा
11: घर की याद नहीं आई तुझे जैसी
8: आती है यार बहुत आती है इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ
5: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं विजिट चंडीगढ़ वाले जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट
8: सच में बिल्कुल घर जैसा
5: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुल्चास विद ग्रेवी बटर चिकन एंड मेनी मोर लोकेटेड इन इरविंग देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट चंडीगढ़ वाले टेस्ट दैट फील्स लाइक होम
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
12: Kya matlab?
13: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
13: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
12: Ab to karna hi padega, madam.
14: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
15: Chicken banana.

एंड वार्म वेलकम बैक टू म्यूजिक मंत्र दोस्तों, जिसमें मैं हूं आपके संग संगीता। आपका और मेरा साथ रहेगा 10 बजे तक। हमारे साथ है मीठे तराने और खूबसूरत संगीत। एंड ऑनेस्टली देर आर सम फन फिल सॉन्ग्स इन दिस सेगमेंट। वी आर सेलिब्रेटिंग नेशनल फिटनेस डे टुडे, और फिटनेस इज गोइंग टू बी फन, इट ऑलवेज इज। वेल, आई थिंक कि लोग अलग अलग तरीके यूज करते हैं टू गेट द फिटनेस एक्टिविटीज इन, सच एज वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, योगा, डांस, एंड माई फेवरेट इज जुम्बा। और पता है कि मैं ये करना चाह रही थी काफी टाइम से, पर आज मिला है मौका टू काइंड ऑफ गो थ्रू अ प्ले लिस्ट दैट आई एब्सोल्युटली एंजॉय एंड डांस टू, एंड जुम्बा स्टाइल। Or so we're going to start with some warm-up songs and then take it high and then cool it down too. Umeed karti hoon ki aap denge mera saath all the way until 10 a.m. and maybe dance along, or at least enjoy listening to this playlist. Here we go, starting with this very, very popular track from by Radha, Nick Jonas and King.

That's a great start and a great warm up song. Well, before we move on though, बताऊं आपको कि ड्रीम होम मॉर्गेज का जो नाम है ना आपके जहन में आ ही गया है, क्योंकि जब भी आप सोचते हैं कि आपने अपना घर खरीदना है तो यू आर डेफिनेटली थिंकिंग ऑफ ड्रीम होम मॉर्गेज बिकॉज यू नो दैट दे विल हेल्प यू मेक योर ड्रीम होम अ रियलिटी, राइट? टू गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन, ड्रीम होम मॉर्गेज हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज अचीव देयर होम ओनरशिप सिंस 1998. अब और भी बताती हूँ आपको डिटेल्स. Well, they are licensed in all 50 states and their expert team delivers stress-free tailored mortgage solutions. Ab adhik jankari ke liye visit dreamhomemortgage.com or simply pick up the phone and give them a call at 972-245-5626. That's Dream Home Mortgage.

0: More dance tracks after a short break.
1: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
2: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
3: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
4: अरे सारे तो सेम है।
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
4: ओ हाँ, ये तो अलग है।
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: Did you know LASIK is just one of six ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
7: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
6: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
8: Inefficient man.
9: Very complex.
8: Clumsy.
9: Are confusion hi confusion hai. अबे
8: डिसजॉइंटेड सॉफ्टवेयर को यूज करना इतना इजी नहीं जितना आप समझ रहे हैं। टूटे फूटे सॉफ्टवेयर से छुटकारा पाओ, अपने बिजनेस के लिए Zoho One ले आओ। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेकर customer support, accounting, operations या HR. काम एक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
10: Ready to turn up the heat? Introducing our Achari Paneer Pizza, where bold Indian spices meet cheesy perfection. Think tangy pickle flavors, a dash of chili, and soft paneer cubes soaking up every bit of that spicy magic, all on a hot, fresh crust straight from the oven. It's not just a pizza, it's a flavor explosion with every bite. If you dare to try something bold, come grab your Achari Paneer Pizza today, only at Fun Pizza Kitchen, where tradition meets the oven. Fun Pizza Kitchen, flavor that fires you up.
11: सब कुछ साफ रख सकते हो
12: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
13: क्योंकि ये कौन बोला?
12: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
14: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 9728772500।
15: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
16: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
15: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
16: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
5: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या अनवेरिफाइबल आइटम्स ऑन योर रिपोर्ट। नो अपफ्रंट फीस, फुल ट्रांसपेरेंसी एंड द राइट टू कैंसिल एनी टाइम। कॉल 1-800-400-9468। Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
17: Goodness is a beautiful thing, and good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadaqa and donation. Visit siutna.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 nonprofit organization.
18: Point 9 FM.

एंड वेलकम बैक टू द फाइनल सेगमेंट फॉर दिस मॉर्निंग म्यूजिक मंत्र, जिसमें रही हूँ मैं आपके संग संगीता, आपका और मेरा साथ रहता है हर सैटरडे सुबह ठीक 8 से लेकर 10 बजे तक, और ले आती हूँ मैं आपके लिए हर बार एक अनोखी प्रस्तुति। आज की इस प्रस्तुति में हम मना रहे हैं नेशनल फिटनेस डे। यस, ऑल सॉन्ग्स दैट वर रिलेटेड टू फिटनेस, एंड ऑन दैट नोट आई केम टू माई फेवरेट फिटनेस एक्टिविटी एंड दैट इज जुम्बा। सो पिछले सेगमेंट में हमने कुछ गाने सुने दैट हेल्प्ड अस वार्म अप, एंड नाउ वी आर प्रीटी वेल वार्म्ड एंड अप, टेकिंग इन टूवर्ड्स द पीक ऑफ द पुश, एंड हैव अ कपल सॉन्ग्स विद दैट। Talking about fitness and fitness activities, I invite you to share with me what is your favorite activity to stay fit. Let me know. Would love to hear from you at 972-235-5555.

almost time for me to leave the studio and probably go hit the gym. I feel super motivated with the tracks that we listen to, and also actually from all these calls of people coming out of the gym right now keh rahe hain ki bhai hum gym ja kar rahe hain, bahut acha lag raha hai, and then music sun rahe hain aur bhi acha lag raha hai. Well, thank you very much for that. ले आऊंगी फिर एक बार एक अनोखी प्रस्तुति अगले सैटरडे ठीक 8 बजे. तब तक के लिए मुझे यानी कि संगीता बच्चानी को दीजिए इजाजत. साइनिंग ऑफ फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Hi, I'm Vijay Karthik. I've served as a global C-suite executive, led thousands of employees, advised boards, and earned industry recognition for innovation and leadership. My career spans decades of responsible governance, strategic planning, and delivering results at scale. That level of experience is rare in local government. Fisco deserves its most qualified leader, someone prepared from day one. Vote Vijay Karthik for Fisco City Council Place 5. For more information, you can check out my website at www.vjforfisco.com. This is Vijay Karthik, and I approve this ad.
3: Like to dress up for parties and special occasions? Indian Attire in Frisco has a phenomenal collection of lehengas, saris, bridal wear, men's and kids' wear.
4: Traditional, ethnic wear, as well as fusion. At Indian Attire, you will find designer wear lehengas at 25% off during their festive sale.
3: No need to shop around. Just head to Indian Attire of Preston and Gaylord in Frisco to find your perfect attire. For details, visit IndianAttireFrisco.com.
5: इमिग्रेशन पेपर वर्क से परेशान? अब टेंशन छोड़िए। easypetition.com के साथ USCIS पेटिशन फाइल करना हुआ इजी। आप खुद इंडिपेंडेंटली प्रिपेयर और फाइल कर सकते हैं पेटिशंस लाइक F1 या B1 चेंज ऑफ स्टेटस, F1 OPT, H4 विद EAD, I-485 और I-485J, N400 नेचुरलाइजेशन और 200 से भी ज्यादा पेटिशन टाइप्स और प्राइसिंग सिर्फ $30। तो आज ही जाइए easypetition.com पर, easypetition.com.
6: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
7: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
6: That magic removal हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड solutions विद 100% privacy.
7: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान. एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
8: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम. वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डैलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे. नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह. प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी. Desi Mandi, powered by Desi's, loved by Dallas.
9: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
10: इंडिया में घर खरीदना या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना अब हुआ और भी आसान. गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो अब फ्रिस्को में. मिलिए मुंबई, पुणे, दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, चेन्नई और

0: हैदराबाद के टॉप डेवलपर्स से। सब एक ही छत के नीचे 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर कीजिए और अपने प्लान्स के हिसाब से सही प्रॉपर्टी चुनिए। आइए 9th एंड 10th मई को हयात रेजेंसी फ्रिस्को डलास में सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक। एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री। माई स्क्वायर फीट प्रेजेंट्स सबसे बड़ा इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो।
1: डलास की धड़कन 104.9 FM फनी या रेडियो।

0: वेलकम, नमस्कार, खुशामदीद, फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम पर मैं मधुलिका आप सभी का जस्ट चिल में करती हूँ हार्दिक स्वागत। वेल, जस्ट चिल में हम करेंगे एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल। अ बिग शाउट आउट टू संगीता फॉर अ वंडरफुल शो दैट शी ब्रॉट टू अस टुडे मॉर्निंग टिल 10 AM। इट वॉज ऑल अबाउट फिटनेस एंड यस, आजकल का मंत्रा ही ये है कि भैया फिट रहने का, बोथ फिजिकली एंड मेंटली। एंड वेल, कमिंग बैक टू जस्ट चिल, वेल जस्ट चिल में सैटरडे होता है हमारा ट्रैवल सेगमेंट, जिसमें मैं ले चलती हूँ आपको एक ऐसी डेस्टिनेशन पर जहाँ या तो आप जा चुके हैं या जाने का मन रखते हैं। लेकिन आज की हमारी जो ये डेस्टिनेशन है वो ऑन गोइंग है, लाइक इट्स अ जर्नी फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज लाइफ, यू नो। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ थिंग्स कीप चेंजिंग फॉर द गुड। स्कूल लाइफ से कैसे कॉलेज लाइफ में ट्रांजिशन होता है, बॉलीवुड में भर के गाने हैं इस टॉपिक पर। अगर आपको कुछ गाने याद आ रहे हैं ज़रूर कॉल करिएगा, या कुछ मज़ेदार यादें हैं स्कूल की, कॉलेज की, यू नो, कुछ खास मेंशन कुछ करना चाहें तो ज़रूर कॉल करिए। द नंबर इज़ 972-235-5555।
1: के जूता कस के बेल्ट खोस के अंदर अपनी

वेल, अगर आपने ये मूवी देखी है या ये गाना का जो वीडियो है देखा है, इट इज सो ट्रू. इट डिपिक्ट्स स्कूल लाइफ सो ब्यूटिफुली. क्योंकि होता यही है कि मम्मी का पूरा मिशन ही ये होता है कि सुबह उठ के टाइम से बच्चे को स्कूल के लिए, स्कूल के बस स्टॉप के लिए, स्कूल की बस के लिए या स्कूल के एंट्रेंस के लिए रेडी कर दें भाई. क्योंकि बच्चे जो हैं तरह तरह के होते हैं. कुछ होते हैं बिल्कुल रेडी टू गो, यू नो, एक बार बोलने पर उठ गए, और कुछ होते हैं कि आप बोल बोल के थक जाएँ, बट वो कोई ना कोई बहाने से फिर एक झपकी मार लेंगे, या यू नो दे विल टेक देयर ओन स्वीट टाइम, एंड यू नो टाइम डजंट स्टॉप, राइट? सो यू फील कि यार अगर बस मिस हो गई तो अभी स्कूल जाके छोड़ना पड़ेगा, स्कूल जाके छोड़ेंगे तो हमारी चाय मिस हो जाएगी. चाय तो चलो कोई बात नहीं, बट ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे. यू नो एवरीथिंग इज कनेक्टेड. सो स्कूल लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग, एंड इट हैज़ लॉट्स ऑफ फन मेमोरीज. वेल, अगर आपके पास हैं कुछ मज़ेदार मेमोरीज तो ज़रूर कॉल करिएगा. द नंबर इज़ 972-235-5555. अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हर साल क्लास में बच्चे जो हैं वो बदल जाते हैं. यू डोंट स्टे विद द सेम किड्स. जैसे इंडिया में क्या होता था कि जो आपकी क्लास में बच्चे हैं वही अब टिल 12th, एटलीस्ट मेरे स्कूल में तो ऐसा ही था कि दे विल स्टे द सेम, इनफैक्ट 10th तक. फिर 11th एंड 12th में डिपेंडिंग ऑन व्हाट सब्जेक्ट्स यू टेक यू विल हैव डिफरेंट क्लासेस. तो उस चक्कर में दोस्ती बड़ी गहरी हो जाती थी, बिकॉज सोचो 10-11 साल आप उसी दोस्त के साथ बड़े हुए हैं. यू नो स्कूल की जो फ्रेंडशिप होती थी, दे वुड ऑफन स्टार्ट समथिंग, यू नो रैंडम, जैसे शेयरिंग लंच और सिटिंग ऑन द सेम बेंच या डूइंग द सेम बदमाशियाँ एंड गेटिंग द सेम काइंड ऑफ पनिशमेंट्स. सो यस, स्कूल लाइफ के अपने ही अलग यादें हैं जो बड़ी सुनहरी होती हैं.

वॉज टेकन फ्रॉम द मूवी जो जीता वही सिकंदर। एंड यस, अब आपको मैं अगला गाना प्ले करूँ उसके पहले बताना चाहूंगी दैट डिस्पाइट बीइंग वेरी केयरफुल, टेकिंग ऑल सेफ्टी मेजर्स, हो जाता है दैट कभी कभी यू गेट इन्वॉल्व इन अ कार और ट्रक एक्सीडेंट, और यू नो समबडी हु यू केयर फॉर एंड हैज गॉट इन्वॉल्व इन अ कार और ट्रक एक्सीडेंट, या कोई स्लिप या फॉल इंसिडेंट, देन आपको याद रखना है एक ही नाम, एंड दैट इज अटर्नी ओमार ख्वाजा। क्योंकि ना केवल ही आपका केस लड़ेंगे, यू नो इंश्योरेंस कंपनी से डील भी करेंगे, एंड यू डू नॉट पे अंटिल यू विन। सो फ्री कंसल्टेशन के लिए आप उन्हें कॉल करें, द नंबर इज 4693005046, और विजिट अटर्नी ओमार .com, दैट्स अटर्नी ओमार .com।

Well, that was हम हेरा ही प्यार के मूवी से गाना. एंड यस, आज हम बातें कर रहे हैं द जर्नी ऑफ स्कूल लाइफ टू कॉलेज लाइफ टू द एक्चुअल एक्चुअल लाइफ, राइट. सो मैं बताऊं कि मुझे जो स्कूल लाइफ में बड़ा मज़ा आता था वो होता था प्रेयर टाइम. बिकॉज़ एक तो मैं ठीक ठाक गा लेती थी और मुझे सारी प्रेयर्स याद होती थी. तो जो हमारी म्यूज़िक टीचर थी उनको मैं थोड़ी ज़्यादा ही पसंद थी. तो शी वुड ऑलवेज, और मैं थोड़ी सी छोटी सी थी, राइट, ऑलवेज हैव बीन पतित. तो मुझे सबसे आगे माइक के पास खड़ा किया जाता था. एंड इट यूज़ टू बी फन टू लीड द प्रेयर, यू नो. सो लेकिन कुछ बच्चे होते थे जो बड़े लंबे लंबे होते थे एंड उन्हें कुछ भी याद नहीं होता था. तो वो दिखते भी थे कि ये ठीक से गा भी नहीं रहे, तो उनको बेचारों को फालतू डांट पड़ जाती थी. बट हाँ, स्कूल लाइफ का जो मुझे सबसे खास मेमोरी है, दैट्स अराउंड द प्रेयर टाइम, यू नो. कि सुबह उठ के आप जब स्कूल पहुंचते हैं, अपना स्कूल बैग वगैरह क्लासरूम में रख के फटाफट प्रेयर्स के लिए वहाँ नीचे असेंबल होते थे ऑडिटोरियम में. एंड फिर प्रेयर होती थी. प्रेयर के बाद जो भी अनाउंसमेंट्स होनी होती थी, दैट वुड हैपन. द प्रिंसिपल वुड एड्रेस अस, यू नो, टेल अस एनीथिंग इंपॉर्टेंट और समथिंग दैट्स कमिंग अप. उन सब के बारे में शेयर करती थी. एंड इट यूज़ टू बी अ वेरी वेरी नाइस मोमेंट, बिकॉज यू वुड गेट टू मीट योर फ्रेंड्स जो आपकी क्लास में नहीं है. सो एंड वो आई रिमेम्बर कि वो नेल्स चेक होते थे हर थर्सडे या वेंसडे, कोई तो एक दिन होता था कि आपके सॉक्स, आपकी बेल्ट, आपके नेल्स चेक किए जाएंगे. तो जो लड़कियां या लड़के भूल जाते थे अपने नाखून काटना, वो बेचारे चबा चबा के उनको आड़ा टेढ़ा करके किसी भी तरह छोटा कर देते थे. सो यस, कुछ और ऐसी यादें अगर आपकी भी हैं तो ज़रूर कॉल करिए. नंबर टू द स्टूडियो 972-235-5555.

0: You're listening to 104.9 FM, Fun Asia Radio, bringing the community together. This is Madhulika, लेकर आई हूँ Just Chill, जहाँ कर रहे हैं हम, as the name suggests, Just Chill. Well, आज हमारे travel segment में हम एक journey पर हैं, journey from school to college life. साथ ही साथ शेयर कर रहे हैं आपकी कुछ मज़ेदार यादें स्कूल या कॉलेज से जुड़ी हुई. स्टूडियो का नंबर 972-235-5555. अच्छा, ये फैक्ट है कि टीचर्स आपको बहुत सी मिलती हैं, लेकिन जो टीचर आपसे एक अलग ही लेवल पर आके कनेक्ट करता है ना, हु कैन रियली फील व्हाट यू आर गोइंग थ्रू एंड यू नो लेंड्स यू एन ईयर एंड हेल्प्स यू आउट इन एवरी विच वे पॉसिबल, वो टीचर आपको हमेशा याद रहता है. आपको ये नहीं याद रहता कि क्या ग्रेड्स मिले थे उस सब्जेक्ट में या क्या, लेकिन वो टीचर आपको ज़रूर याद रहता है कि यू नो यार वो टीचर में कुछ अलग ही बात थी. नहीं
1: चकरका चीचा चो चकलोरम गंडो वंडो लकरका टम अक्को टक्को इडी गिडी गिडी गो इडी पाई विडी पाई चिकी चकचो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकरका हुकु बुकुरे टुकु बुकुरे चकलका बिको चिको सिली सिली सिली गो बगड़ दुम जगड़ दुम चिकी चकचो.

दैट वॉज बम बम भोले टेकन फ्रॉम तारे जमी पर. इसमें आमिर खान टीचर थे. लेकिन अगला गाना जो मैं प्ले करने जा रही हूँ उसमें वो एक स्टूडेंट थे स्कूल के. जी हाँ, बिल्कुल मूवी समझ गए हैं. एंड दैट्स जो जीता वही सिकंदर. क्योंकि स्कूल लाइफ की बात हो रही है तो आई रिमेम्बर कि सबके पास कुछ एक वो खास मेमोरी होती है. यू नो, या तो आप को किसी पे क्रश आया होता है या आप पर किसी का क्रश होता है. एंड यू फील कि मतलब यही है, दिस इज इट, राइट? सो वेल, लेट्स हियर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, पहला नशा.

टेकन फ्रॉम द मूवी जो जीता वही सिकंदर, दैट वॉज पहला नशा। एंड मुझे याद है कि पहला स्कूल का दिन बहुत ही डर लगता था कि पता नहीं कौन सी हमारी क्लास टीचर होगी, कोई नए बच्चे होंगे या हमारे पुराने फ्रेंड्स वहाँ होंगे कि नहीं होंगे। ये तो इंडिया की बात है, और यहाँ तो हर साल स्टूडेंट्स जो हैं क्लास में बदलते हैं, सो बच्चों का एक वो एक्साइटमेंट और नर्वसनेस एक अलग ही लेवल पर होता है। लेकिन सोचिए, मतलब मैंने तो कभी वो लाइफ नहीं एक्सपीरियंस की, बट जो बोर्डिंग स्कूल्स में जाते हैं बच्चे, जो जो घर में शाम को भी वापस नहीं आते, यू नो, जो वहीं रहते हैं, उनके लिए लाइफ कैन बी सच ए चैलेंज। लेकिन इफ़ यू थिंक बिगर, कई लोग कहते हैं कि यार वो पेरेंट्स ने अच्छा ही किया, बिकॉज प्रॉब्ली वो पेरेंट्स जहाँ रहते थे वहाँ इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं थी, एंड सो दे टुक अ हार्ड डिसीजन एंड इंश्योर्ड कि उनके जिगर का टुकड़ा जो है वो कहीं और जाके रहेगा एंड पढ़ेगा। लेकिन उस बच्ची पे क्या गुजरती है, ही और शी वुड बी रियली लकी कि जल्दी से उसके कुछ दोस्त बन जाएं, नहीं तो बोर्डिंग स्कूल कैन बिकम सो टफ।

Well, that was taken from तारे जमी पर. एंड यस, अगला गाना प्ले करूं उसके पहले आपको मैं देसी मंडी के बारे में बताना चाहूंगी, बिकॉज देसी मंडी के पास आपके लिए बहुत से अमेजिंग ऑफर्स हैं. वीक डेज में अगर शाम 5 से 9 के बीच में आप जाएंगे, देन मंडे एंड वेंसडे यू कैन गेट बाय वन गेट वन फ्री ऑन बिरयानीज, नूडल्स एंड फ्राइड राइस. ट्यूजडे एंड थर्सडे जाएंगे, देन यू कैन गेट बाय वन गेट वन फ्री ऑन डोसाज एंड चाट्स. एंड येस ऑफ कोर्स मोर फ्लेवर मोर सेविंग्स ऑल वीक लॉन्ग. देसी मंडी जो है इज लोकेटेड इन लुइसविल टेक्सास. सो यहाँ पर जाकर आप अपनी ग्रोसरी भी कर सकते हैं और पेट पूजा भी.

Well, that was taken from the movie Hitchkey. And yes, आपको मैं बताऊं कि स्कूल लाइफ में जो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता था वो होता था जब कॉम्पिटिशन्स होते थे, बी इट म्यूजिकल कॉम्पिटिशन, डांस कॉम्पिटिशन या आर्ट कॉम्पिटिशन, डिबेट कॉम्पिटिशन. यू नो, बड़ा मज़ा आता था कि हर क्लास के सेक्शन से दो दो तीन तीन बच्चे चुने जाते थे एंड यू वुड फील वेरी प्राउड अगर टीचर आपका नाम ले और बोले कि नहीं नहीं पहले आप ऑडिशन करो, अगर यू नो कुछ डिबेट है या म्यूजिकल वो है कॉम्पिटिशन, या अगर एज अ आर्टिस्ट आपको चुना जाए कि आप जाएंगे एंड यू नो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते थे एंड दैट यूज टू बी सो कम्पिटिटिव येट सो मच फन एंड यू वुड फील सो प्राउड जब नेक्स्ट डे प्रिंसिपल आपका नाम अनाउंस करे या आपकी टीम का या आपके स्कूल का कहीं नाम हो, न्यूज़पेपर पर आए, मैगजीन्स में छपे, तो उसकी एक अलग ही लेवल की सेटिस्फैक्शन होती थी एंड खुशी मिलती थी. यू नो एंड पेरेंट्स वुड प्राउडली शेयर दिस विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली कि भाई हमारा बच्चा यू नो इस कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया एंड जीता व्हाटएवर. सो यस, वो कॉम्पिटिशन्स की जो एक बात है, वो जो यादें हैं वो कुछ अलग ही होती हैं. वेल, मैं हूँ माधुलिका, लेकर आई हूँ जस्ट चिल, और आज हम अपने ट्रैवल सेगमेंट में जर्नी कर रहे हैं फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज लाइफ. तो ये एक घंटा हमने स्कूल लाइफ पर बताया एंड अगला घंटा हम जो है वो बिताएंगे कॉलेज लाइफ के ऊपर.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: अभी मजा आएगा ना भिड़ो
3: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे.
4: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
5: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
4: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
6: Yaar, main thak chuki hoon. Party ke pehle safai, fir party, baad mein safai. Upar se aap to koi madad karte ho nahi. Mere se nahi hoga ye.
7: Arey yaar, bola na. Lekin tumhe sunna hi nahi. Bataya na. Jahan party hai, wahi khana hai. Jahan khana hai, wahi party hai. Simple.
6: Matlab?
7: Dekh. जगह बुक करेंगे पूरे 3 घंटे के लिए और वो भी सिर्फ $250 में. और खाना पीना जो ऑर्डर करना है वो अलग से पे करके वही ऑर्डर कर लेंगे. अब तेरे को तेरी सफाई की पड़ी है. अब खुल के पार्टीज कर, चाहे क्रिसमस हो, थैंक्सगिविंग हो या फिर तेरे भाई का बर्थडे. नाम याद रख बस, फन पिज्जा एट कॉलोनी.
0: विजिट फन पिज्जा किचन FPK एट कॉलोनी इज नाउ ओपन फॉर डाइन इन. 3 minutes, दैट्स हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू साइन अप विद बेजिट. दे चैलेंज योर प्रॉपर्टी टैक्स अप्रेजल, बिल्ड द केस, गो टू द हियरिंग. You just wait for the result. 89% of customers get a reduction. Average savings over $1,100. Call in and Denton County. May 15th is your last day this year. Bezit.co.
8: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है. पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है. और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी. पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं. प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है. साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं. आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8 2 3 4 6 4 6 1 1 और विजिट masterjoshiram.com. अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए.
9: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिसर्च में वेरी.
10: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है. और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
11: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
10: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
11: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट.
12: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना. जस्ट लाइक दैट, व्हेन इट कम्स टू टैक्सेस, ओनली वन नेम पॉप्स अप, एजी फिनटैक्स. दिस टैक्स सीजन, फॉर अ स्ट्रेस फ्री टैक्स फाइलिंग, फाइल स्मार्ट, फाइल इजी विद ग्रंथी टैक्स प्रोस, एन एसोसिएट ऑफ एजी फिनटैक्स. साथ ही साथ आपका रिफंड मैक्सिमाइज करना और आपका फाइनेंशियल फ्यूचर प्लान करना, दैट्स आवर कमिटमेंट. तो इस बार डिले क्यों? कॉल 972-618-8555 और विजिट agfintax.com. ग्रंथी टैक्स प्रोस, पावर्ड बाय एजी फिनटैक्स. प्लान टुडे, प्रॉफिट टुमारो.
13: Hi, this is Deepika Padukone and you're listening to Fun Asia Radio.
14: The Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.
15: You're listening to 104.9 FM, Fun Asia Radio, bringing the community together.

मधुलिका लेकर आई हूँ जस्ट चिल, जहाँ कर रहे हैं हम एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल। वेल, आज जस्ट चिल के हमारे ट्रैवल सेगमेंट में हम जर्नी कर रहे हैं फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज लाइफ। सो पहला एक घंटा हमने बातें की स्कूल लाइफ के ऊपर, और अब हम शिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स कॉलेज लाइफ। सो वेल, कॉलेज लाइफ के ऊपर बात जब कर ही रहे हैं तो सोचा कि आज का जो फन पिज़्ज़ा किचन का गिव अवे है वो भी उसी के ऊपर होना चाहिए। सो वेल, इफ़ यू आर क्रेविंग समथिंग चीज़ी विद अ देसी ट्विस्ट, यू नीड टू हेड टू फन पिज़्ज़ा किचन। एंड फन पिज़्ज़ा किचन जो है वो आपके लिए लेकर आए हैं $10 का गिफ्ट कार्ड एज अ गिव अवे। करना आपको बस सिंपल सा ये काम है, दैट यू हैव टू गिव मी अ कॉल, द नंबर इज 972-235-5555, एंड टेल मी एनी थ्री बॉलीवुड सॉन्ग्स which were based on college life, या कॉलेज लाइफ उसमें डिपिक्ट हो रही हो, एंड साथ ही साथ आप अपनी कुछ कॉलेज की मेमोरी शेयर करेंगे। सो द नंबर टू द स्टूडियो वंस अगेन इज 972-235-5555.

0: ये बात तो सच है कि यादें और यादें ही रह जाती हैं, एंड वो यादें बड़ी सुनहरी लगती हैं, राइट? जब उस टाइम पे वो आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हो तो यू डोंट रियलाइज कि ये इतनी प्रेशियस हो जाएंगी कुछ सालों के बाद. वेल, मैंने पूछा था आपसे एक सवाल. फन पिज्जा किचन का ये गिव अवे था $10 गिफ्ट कार्ड, जिसमें आपको मुझे कॉल करके बताने हैं 3 बॉलीवुड के गाने जिसमें कि कॉलेज लाइफ डिपिक्टेड हो, एंड साथ ही साथ अपनी कुछ मेमोरी शेयर करनी है. सो वी डू हैव अ लिसनर ऑन एयर विद अस. हाय, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: Hi, this is Swapnil.
0: Hey Swapnil, how are you?
1: I'm good, how are you?
0: I'm doing great. So bataiye, kaun se hain wo 3 gaane aur kya hain aapki wo yaadein?
1: Yeah, so the 3 songs which I could remember is first one from the movie 3 Idiots, like All Is Well.
0: Uh-huh, of course.
1: That's the first song.
0: Yeah.
1: Second from the movie Khiladi, जहाँ वो जाएगी वही हम जाएंगे,
0: खुद
1: को क्या
0: समझती
1: है इतना करती
0: है. ओके,
1: एंड थर्ड वन इज फ्रॉम द मूवी दिल, खंबे जैसी खड़ी
0: क्या
1: है
0: बात
1: लड़की
0: है,
1: या
0: वाह वाह वाह. ओके स्वप्निल, दैट्स ऑसम. एंड नाउ शेयर सम मेमोरीज ऑफ कॉलेज लाइफ.
1: कॉलेज की तो बहुत सारी मेमोरी है, मोस्टली जो हमारा
0: मोस्ट फन वन, यू नो, द कुछ नॉटी नॉटी, नथिंग वेरी वेरी नॉटी, बट समथिंग नॉटी, समथिंग फनी. सो व्हाट वाज इट?
1: सो हमारा एक इंडस्ट्रियल टूर गया था, वी वर इन इंजीनियरिंग एंड थर्ड ईयर में एक इंडस्ट्रियल टूर था, वो था वीडियोकॉन फैक्ट्री इन औरंगाबाद. वो 5 दिन का टूर था.
0: हाँ.
1: तो वो मतलब कॉलेज वालों ने इंडस्ट्रियल विजिट के लिए वो प्लान किया था, लेकिन वो 5 डेज वर द सो ऑसम डेज. जो हम सब पूरे टाइम बस में मस्ती कर रहे थे, बस
0: wow.
1: जब वो बस जब जिस दिन वीडियोकॉन फैक्ट्री जा रही थी उसी दिन सब सो गए. वही जो वीडियोकॉन फैक्ट्री का जो विजिट था वही सबसे बोरिंग था, बाकी पूरे 5 डेज इट वाज फन. लाइक हम पूरा औरंगाबाद एंड सराउंडिंग प्लेसेस घूमे.
0: आई रिमेम्बर कि बस में जब ये सारे फ्रेंड्स साथ में जाते हैं तो यू नो आप इनवेरिएबली अंताक्षरी खेलेंगे, यू विल हैव सम चैलेंजेस कि यू नो कोई भूत की स्टोरी सुनाएगा, कोई आपको कुछ चैलेंज कर देगा, एंड वो उस टाइम पे यू डोंट रियलाइज, बट अभी जब याद करो तो वो मेमोरीज लगती हैं कि वाओ यार वो भी क्या दिन थे.
1: राइट. और बस में फुल टाइम गाना, और जब भी हम बस में बैठते थे, बस चलती थी, तो सबसे पहला गाना एक आरती फॉर्म में होता था, जो था जादू तेरी नजर खुशबू तेरा बदन. तो ये वाला गाना हम आरती फॉर्म में गाते थे और उसके बाद पूरे गाने मस्ती शुरू होती थी. इट वाज फन.
0: Awesome, awesome. Swapnil, so wonderful. You've won the giveaway and I'm going to take you off air. I'm going to play All As Well. In fact, I'll play all the songs that you mentioned because they are such fun numbers. So thank you so much for participating. Have a wonderful weekend.
1: Thank you, ma'am. It's fun listening to your show.
0: Thank you so much. Thank you. You made my day. Thank you.
1: Thank you. Bye.

0: वेल, ये तो फैक्ट है कि सच में जब आप ऑल इज़ वेल बोलते हैं ना, तो आपका दिल भी थोड़ा सा चिल हो जाता है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है एंड सोचता है कि यार सच में ऑल इज़ वेल, इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। एंड कॉलेज में या ज़िंदगी में भी ऐसे आपके दोस्त होते हैं जो कुछ होते हैं जो बिल्कुल पैनिक ही करते रहते हैं हमेशा, या तो डिप्रेस रहेंगे या दुखी रहेंगे या परेशान रहेंगे। एंड कुछ होते हैं, एंड हर ग्रुप में ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा बोलते रहेंगे चिल यार, ऑल इज़ वेल, सब ठीक हो जाएगा, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ फ्रेंडशिप। अच्छा, वी डू हैव अ लिस्टनर ऑन एयर विद अस। हाय, यू आर लाइव ऑन एयर।
1: हाय, माय नेम इज सबा।
0: हे सबा, सो टेल मी, यू हैव सम फन मेमोरीज एंड ब्यूटीफुल सॉन्ग्स ऑन कॉलेज लाइफ?
1: जी, फन मेमोरी ये था कि मेरे लाइफ पार्टनर मुझे मेरे कॉलेज में ही मिले।
0: हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। ओके ओके, तो वाज ही इन द सेम लाइक क्लास या वाज ही अ सीनियर?
1: नो, सेम क्लास में थे।
0: अच्छा,
1: एंड जी, एंड उन्होंने सिर्फ कुछ टाइम के लिए ज्वाइन किया था,
0: अरे वाह।
1: एंड आई थिंक सिर्फ, हाँ आई थिंक सिर्फ मिलाना था। तो बस कुछ मंथ वो साथ थे, फिर वो
0: राइट
1: छोड़ दिया, फिर कहाँ से दोस्ती हुई, कैसे हुआ, कुछ समझ
0: यार,
1: नहीं आ
0: हाँ धुंधला है सब, राइट? ओके,
1: जी जी
0: एंड सबा, एनी 3 सॉन्ग्स ऑफ बॉलीवुड जो कॉलेज लाइफ डिपिक्ट करते हो?
1: जी डिस्को दीवाने, एंड पापा कहते हैं,
0: क्या बात है,
1: एंड जी, एंड तीसरा था ऑल इज वेल, एंड
0: यस, ऑल इज वेल, एब्सोल्युटली। सबा, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड व्हाट अ
1: थैंक यू।
0: ब्यूटीफुल मेमोरी। एक्चुअली कई बार होता है कि आपको अपना लाइफ पार्टनर भी कॉलेज में मिल जाता है, एंड सो इट्स रियली लवली दैट अ फ्रेंड बिकम्स योर लाइफ पार्टनर। सो इट्स अच्छी
1: जी
0: बात ये होती है कि फिर वो
1: बिल्कुल,
0: दोस्त भी कॉमन हो जाते हैं, बिकॉज यू नो आप दोस्त थे और उनके दोस्त, आपके दोस्त सब सेम ही है, तो इट बिकम्स सो मच मोर इजियर, नहीं?
1: जी सब सेम होता है, उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं होता,
0: हाँ
1: उनको सब पता होता है कॉलेज में क्या क्या
0: सारा कच्चा
1: कहानी,
0: चिट्ठा उनके पास होता है,
1: सब पता होता है, कुछ
0: सो
1: छुपा
0: ट्रू,
1: नहीं सकते आप उनसे।
0: राइट सबा। सो वेल, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन एंड आई एम गोना प्ले द डिस्को दीवाने सॉन्ग फॉर यू।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू,
0: थैंक यू, हैव अ लवली इवनिंग, बाय बाय।
1: थैंक यू।

Well, that was a disco दीवाने taken from student of the year. And yes, हम बातें कर रहे हैं कॉलेज लाइफ की. सो कॉलेज लाइफ में कैंटीन भी बड़ी ज़रूरी एक चीज़ होती है, क्योंकि कुछ क्लासेस के बीच में टाइम होता है तो आप जाकर क्विकली कुछ समोसे, चाय, वहीं सब गपशप होती हैं, वहीं सारे मज़े की बातें होती हैं, डिस्कशंस होते हैं. कुछ लोग तो पढ़ते भी हैं, वेल आई डोंट नो कैसे, बट इतना मज़ा आ रहा होता है वहाँ पे कि बस कैंटीन की जो एक वो लाइफ है ना, मतलब कैंटीन में वो दोस्तों के साथ टाइम बिताने वाला वो जो यादें हैं वो कुछ अलग ही हैं. एंड ऑफ कोर्स कॉलेज में झगड़े भी बड़े होते हैं, ज़बरदस्ती का टशन रहता है. एंड कुछ एक लड़की पॉपुलर हो जाती है एंड लड़के सोचते हैं कि यार ये अपने आप को समझती क्या है. सो ऐसा भी होता है. एंड बाद में वही बातें याद करके सब हंसते भी हैं कि यार याद है वो लड़की, वो जो एक आई थी.

और दैट वाज टेकन फ्रॉम द मूवी दिल, जिसमें था कि भाई ये लड़की अपने आप को समझती क्या है. वेल अभी ये तो वो लड़की ही जाने, बट आपको मैं अगला गाना प्ले करूँ उसके पहले Page 3 Eatery के बारे में बताना चाहूँगी, वेयर बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड मीट्स मॉडर्न फ्लेयर. यहाँ के कबाब्स, चाट, फ्यूजन बाइट्स एंड मॉकटेल्स आर वेरी वेरी यमी एंड डिलिशियस. तो आप फॉर वाइब्रेंट वाइब्स या ब्रंच, लंच और डिनर के लिए जाएं Page 3 Eatery, एज इट्स परफेक्ट फॉर फूडीज, डेट्स एंड फ्लेवर चेजर्स. सो डू विजिट Page 3 Eatery.com फॉर फर्दर डिटेल्स. दैट्स Page 3 Eatery.com.

0: tracks that put you on the right track.
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
1: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
2: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
1: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
3: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
0: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
8: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
9: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
8: कैसे?
9: पेज 3 ईटरी?
8: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
9: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
8: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
10: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
11: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
12: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
1: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
3: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
1: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
3: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
12: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score, fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
13: Bawarchi Biryani is in Plano, bigger, better and the best now, serving everyday lunch specials, thalis, biryani combos and refreshing Irani chai with delicious Indian snacks, freshly made sweets and bakery items. Please walk into Bawarchi Plano or visit bawarchiplano.com.
14: ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಡ್ಯಾಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ NCR ಇಂದ ಟಾಪ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಫ್ ಕೆಳಗೆ. 200+ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನಕ 9th May and 10th May. ಸ್ಥಳ ಹಯಾತ್ ರೀಜೆನ್ಸಿ, ಫ್ರಿಸ್ಕೋ, ಡ್ಯಾಲಸ್. ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಾತ್ರಿ 8 ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್. ಮೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
15: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, फोनेशिया 104.9 FM।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

वेल, कॉलेज लाइफ की बात हो और ये गाना प्ले ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है, राइट? सो वेल, दिस इज मधुलिका, लेकर आई हूँ जस्ट चिल, जहाँ कर रहे हैं हम, एज द नेम सजेस्ट, जस्ट चिल. वेल, आज हमारे ट्रैवल सेगमेंट में हम इस जर्नी पर हैं विच इज़ फ्रॉम स्कूल लाइफ टू कॉलेज लाइफ. वेल, 10 से 11 हमने स्कूल लाइफ की बातें की हैं, 11 टू 12 हम बातें कर रहे हैं कॉलेज लाइफ की. तो वेल, अगला गाना प्ले करूं उसके पहले आपको मैं ओशो यूनिवर्सल रिट्रीट के बारे में बताना चाहूंगी. यू नो, दिस मे 14th टू मे 17th यू कैन स्टेप इनटू अ 3-डे इमर्सिव जर्नी टू रिलीज स्ट्रेस, क्लियर इमोशनल ब्लॉक्स एंड रिकनेक्ट विद योर इनर सेल्फ थ्रू पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक्स गाइडेड बाय एक्सपीरियंस्ड फैसिलिटेटर्स. बिकॉज समटाइम्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ इज जस्ट टू स्लो डाउन. So register now at oshouniversal.org.

Taken from the movie Sapne, that was Avara Bhavre. And yes, college life की अगर बात करें तो जहाँ पर school life में attendance is so important, well college life में भी होती है, लेकिन attendance actually becomes like a strategy game instead of a rule, क्योंकि आप कैसे भी आड़ी टेढ़ी कोशिश करके ये सोचते हैं कि कैसे भी मेरी एक attendance लग जाए और मुझे जाना ना पड़े, right? Group study के नाम पर बहुत से gossip sessions होते हैं और बहुत सा खाना order हुआ जाता है. And of course, college teaches more life skills outside the classroom than inside, right? आपको जिंदगी जीने के तरीके समझ में आते हैं. एंड जो नाइट बिफोर एग्जाम, वो जो एक पीक प्रोडक्टिविटी का टाइम होता है ना, उसकी तो बात ही अलग होती है. लेकिन हाँ, जब आप कॉलेज स्कूल से शुरू कर रहे होते हैं तो वो एक एंजाइटी, वो नर्वसनेस, एक्साइटमेंट, जो सब कुछ एक मिक्स करके एक फीलिंग होती है ना, उसकी बात ही कुछ अलग होती है.

आई लव यू ऑल। दोस्तों, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से। शायद जिसकी तलाश है वही साथी है, वही मंजिल है।

टेकन फ्रॉम द मूवी प्यार किया तो डरना क्या। एंड यस, कॉलेज में गए तो डरना क्या। यू नो, बिंदास लोग अपने अपने दोस्तों के ग्रुप में घूमते हैं एंड मज़े करते हैं, पढ़ते भी हैं, बदमाशियां भी करते। आपके मन में कोई ऐसे गाने आ रहे हैं या कुछ यादें हैं जो करना चाहें शेयर, द स्टूडियो नंबर इज 972-235-5555।

जी हाँ, कॉलेज लाइफ, यू रियली फील दैट यू शुड लूज ऑल कंट्रोल्स. वेल, इट्स ऑलवेज ऑलवेज फन टॉकिंग टू यू ऑल एंड प्लेइंग सम मेलोडियस सॉन्ग्स अलॉन्ग द वे. इट्स टाइम फॉर मी टू से बाय, बट आप कहीं जाइएगा नहीं. डू स्टे ट्यून्ड इन टू 104.9 FM फनेशिया रेडियो, एज यहाँ हमारे शोज आपको एंटरटेन करते रहेंगे. कमिंग अप नेक्स्ट इज नीलम. मैं मिलूंगी आज बोनस शो लेकर शाम 4 बजे. जी हाँ, 4 से 6 दूंगी आपका साथ आज शाम, और फिर कल सुबह दोबारा मिलूंगी 10 बजे इन जस्ट चिल, जहां करेंगे हम एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल. वेल, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा. दिस इज मधुलिका साइनिंग ऑफ.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला।
3: ओ हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Like to dress up for parties and special occasions? Indian Attire in Frisco has a phenomenal collection of lehengas, saris, bridal wear, men's and kids wear.
6: Traditional, ethnic wear as well as fusion. At Indian Attire, you will find designer wear lehengas at 25% off during their festive sale.
5: No need to shop around. Just head to Indian Attire of Preston and Gaylord in Frisco to find your perfect attire. For details, visit indianattirefrisco.com.
7: यार बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस।
8: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं।
7: सच में एक्सपेंसेस से इनकम? कैसे?
8: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू। उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है।
7: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं वापस भी आएंगे।
8: एग्जैक्टली, अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर।
7: नंबर बोल जल्दी।
8: कॉल James at 321-888-7345 or visit connectingamericafinancials.com.
9: Connecting America, जहां smart business owners turn costs into cash.
10: Discover the magic of authentic Indian vegetarian cuisine at Sarvana Bhavan, the world's number one in South Indian delights. Their menu, overflowing with veggie surprises cooked to perfection. After serving in Irving and Plano, ping them at 469-362-7755 or visit sarvanabhavanplano.com. Sarvana Bhavan, all day flavor play.
6: All locations are open daily from 11 a.m. to 10 p.m. with extended hours on weekends from 8:30 a.m. to 10:30 p.m.
11: सब कुछ साफ रख सकते हो
12: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
13: क्योंकि ये कौन बोला?
12: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
14: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 9728772500।
15: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
6: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
16: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

सुना आपने बहुत ही खूबसूरत शो करते हुए। एंड नाउ मेरी और आपकी बातें होगी 2 बजे तक, कुछ बॉलीवुड की बातें होगी एंड 2 से 3 के बीच में हम करेंगे प्रस्तुति आपके लिए कम्युनिटी के लिए, जी हाँ, जिसे हम कहते हैं कम्युनिटी राउंड अप। हमारे ही शहर में होने वाले बहुत सारे इवेंट्स की, एक्टिविटीज की जानकारी और कुछ जुड़ते हैं हमारे साथ धार्मिक या सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि भी। सारी बातें सारे गाने रहेंगे आपके साथ टिल 3 PM ऑन 104.9 FM। और अगर आप सोच रहे हैं कि आज की क्या होगी बातें, कौन सा होगा विषय, सो वेल, आज है हमारी फिल्मी कहानी का सेगमेंट, जहां पर मैं आपको सुनवाती हूं मिले जुले गाने, नगमे तराने, लेकिन उसमें होती है फिल्मी कहानी। बीच बीच में मैं आपके लिए कुछ कहानी आपको सुनवाती हूं जिससे आपको फिल्म का नाम बताना होता है। कहानी होती है 2 या 3 लाइन की, जहां पर हम आपको बताते हैं किरदार के नाम के साथ, ऑफकोर्स नॉट विद द हीरो, एक्चुअल किरदार जो होते हैं उनके नाम के साथ, हीरो या हीरोइन का नाम हम नहीं बताते, और उससे आप पहचानते हैं पूरी फिल्म की बातें। ये सारी बातें रहेगी आपके साथ कुछ मिले जुले गानों के साथ, नगमों के साथ, टिल 2 PM ऑन 104.9 FM।

दिस इज केजीएमपी 104.9 एफएम वनीश रेडियो पे, मैं हूँ नीलम आपके साथ, और एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में नीलम का प्यार भरा नमस्कार, आदाब एंड वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जी हाँ दोस्तों, आपका हमारा ये म्यूजिकल साथ, म्यूजिकल मुलाकातें होती है सैटरडेज एंड संडेज, सैटरडेज 12 से 3 के बीच में, संडेज 12 से 2 के बीच में। मधुलिका

कमल खान की आवाज़ में ये बहुत ही खूबसूरत आपने गाना सुना। यही गीत सुनिधि चौहान की आवाज़ में भी है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, डर्टी पिक्चर से लिया गया था ये गीत, और इसमें संगीत था विशाल शेखर का। कमल खान, अगर आपने ये नाम सुना सुना लग रहा है, लेकिन ये आवाज़ें इतनी नहीं सुनी आपने इस फिल्म के अलावा किसी और गानों में, उसकी वजह ये है कि इस फिल्म में उनको बिल्कुल मौका मिला था। ही वॉज वन ऑफ द कंटेस्टेंट, अगर आप सारे गम अपा देखते होगे जी टीवी की, उसी साल के वो कंटेस्टेंट थे और बहुत बहुत पॉपुलर थे। पॉपुलर वोटिंग में भी उनकी बिल्कुल आगे रहती थी बातें, लेकिन इस फिल्म के अलावा उन्हें इतनी ज़्यादा फिल्म नहीं मिली। एंड ऑफ कोर्स एज वी ऑल नो कि ज़्यादातर हमारे जो सिंगर्स बॉलीवुड में नहीं आते, दे डू ट्राई प्राइवेट एल्बम्स में गाने गाना, एंड देन दे स्टार्ट देयर ओन बैंड, कॉन्सर्ट्स वगैरह या फिर लोकल इवेंट्स में। बस यही बात कहीं ना कहीं कमाल खान के साथ भी हुई कि उन्होंने कोशिश बिल्कुल की बॉलीवुड में, लेकिन उनके पास आई डोंट थिंक एक या दो फिल्मों से ज़्यादा गाने थे। मैं हूँ नीलम, आपके साथ रहती हूँ एवरी वीकेंड, सैटरडेज एंड संडेज, और आज कुछ मिले जुले गाने, नगमे और तराने होंगे, और उसी के साथ हम बातें करेंगे फिल्मी कहानी का। चलिए एक आपको गीत और सुनवा देती हूँ, और उसके बाद मैं आपको पूछूंगी पहली कहानी, आपको बताऊंगी पहली कहानी, और फिल्म का नाम बताएंगे मुझे आप राइट आफ्टर दिस सॉन्ग।

0: दो बातें हो सकती है सनम, तेरे इनकार कीजिए बिल्कुल, लेकिन एक ही बात हो सकती है आपका यहाँ पर ट्यून इन करना, क्योंकि आपको फनीशा रेडियो से प्यार है। जी बिल्कुल, हमें भी प्यार है और फनीशा रेडियो आपके लिए सातों दिन 24 घंटे यही एंटरटेनमेंट आपके लिए प्रस्तुत करते हैं ऑन 104.9 FM। चलिए अब मैं आपको एक कहानी बताती हूँ, ठीक है। सो आज की जो हमारी दो या तीन कहानी होगी, अलग अलग मैं आपको कहानियाँ सुनवाऊंगी, लेकिन हमारी जो पहली कहानी है, तो ये कहानी में सेगमेंट में बहुत ही आसान होती है, आपको बस कहानी सुननी है और उसके बाद मुझे बताना है कि ये कौन सी फिल्म की मैं कर रही हूँ बातें, ठीक है। तो ये एक कहानी है जहाँ पर अफगानिस्तान के एक बहुत ही बहुत ही बहुत दूर योद्धा है जिनका नाम है पाशा खान, जो अपनी प्रेमिका प्यार मोहब्बत करते हैं, उनसे बेइंतहा प्यार करते हैं, जिनका नाम है बेनज़ीर। बादशाह खान को बेनज़ीर से बेइंतहा मोहब्बत भी है और ख़ुद को साबित करने के लिए वो एक ख़तरनाक सफ़र पर निकल जाते हैं। लेकिन किस्मत हमेशा कहाँ साथ देती है प्यार करने वालों का, किस्मत ऐसा मोड़ लेती है कि साजिश होती है, दूरी होती है और वक्त इन दोनों को जुदा कर देते हैं। लेकिन उनका इश्क इतना गहरा है, उनकी प्यार की बातें, मोहब्बत की बातें इतनी गहरी है कि सालों के इंतज़ार के बाद भी वो प्यार ऐसे ही जिंदा रहता है। फिर शुरू होती है एक नई कहानी एक नए जनरेशन के साथ, लेकिन बादशाह और बेनज़ीर का जो प्यार है, बेइंतहा प्यार, जो बेइंतहा मोहब्बत और वफा, वो इतनी ही रहती है सालों के इंतज़ार के बाद भी। तो कौन सी ये कहानी जहाँ पर प्यार है, बदला भी है, मोहब्बत भी है और वफा की भी बातें हैं, आपको बतानी है ये मुझे बातें ऑन 104.9 FM। मैं लूंगी कुछ कॉल्स ऑन एयर। एंड फनीशा, यू आर लाइव ऑन एयर।
1: दिस मूवी इज खुदा गवाह।
0: खुदा गवाह, अरे वाह क्या बात है। आपका नाम क्या है?
1: तृप्ति।
0: तृप्ति, तो आपने ये बादशाह से आपको पहचानी, आपने ये बातें या बेनज़ीर से? बादशाह से।
1: नहीं, बादशाह से।
0: ऑल राइट। एंड फनीशा, यू आर लाइव ऑन एयर।
2: हेलो।
0: यस सर, बताइए।
2: मूवी नेम धर्मात्मा?
0: धर्मात्मा तो नहीं है, लेकिन हाँ अफगानिस्तान की शूटिंग के बाद की तो शायद वो आपको इनाम याद आ गया। फनीशा, यू आर लाइव ऑन एयर।
2: आप खुदा गवाह की बात कर रही
0: हैं? यस सर, आई एम टॉकिंग अबाउट खुदा गवाह। आपने देखी है ये फिल्म?
2: हाँ।
0: अच्छी लगी थी आपको श्रीदेवी या अमिताभ बच्चन की जो केमिस्ट्री थी वो? खुदा गवाह। सर आपने देखी थी ये फिल्म? और देखी होगी तो क्या बात आपको अच्छी लगी थी?
3: ऑब्वियसली ये अमिताभ बच्चन साहब की बहुत बड़ी मूवी थी,
0: बहुत बड़ी मूवी
3: उस टाइम पे, और स्टार कास्ट का भी यू नो काफी जबरदस्त थी।
0: जी जी बिल्कुल।
3: और ये मूवी जिस टाइम पे आई थी, आई थिंक इस किस्म की मूवी मतलब इस स्केल पे, आई थिंक दैट वाज प्रोबब्ली यू नो वन ऑफ इट्स फ्यू टाइम्स दैट
0: आई थिंक 92 या 92 की है ये मूवी। एंड अफगानिस्तान में उसकी शूटिंग होना अमिताभ बच्चन के साथ, एंड श्रीदेवी का डबल रोल भी था इफ यू रिमेम्बर ऑन दैट वन। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी। थैंक यू सो मच सर। एंड लास्ट कॉलर, बताइए क्या है आपका नाम फनीशा रेडियो?
4: मेरा नाम है रूही।
0: रूही जी बताइए क्या कहेगी आप इस फिल्म के बारे में?
4: ये खुदा गवाह मूवी है।
0: बिल्कुल है। और आपने देखी है ये मूवी?
4: बहुत बार।
0: बहुत बार, क्या बात है। क्यों भाई, अमिताभ जी के लिए या श्रीदेवी के लिए?
4: श्रीदेवी के लिए, और पूरी मूवी की स्टोरी लाइन भी बहुत उस टाइम के हिसाब से यूनिक और फेमस।
0: यू नो आई विल टेल यू वन स्मॉल ट्रिविया कि इस फिल्म के लिए जब श्रीदेवी को साइन किया गया था, शी केप्ट अ कंडीशन कि क्योंकि अमिताभ बच्चन सुपरस्टार है तो भाई मैं भी हूँ फीमेल सुपरस्टार, कि मेरा डबल रोल होना चाहिए जस्ट सो दैट माई स्क्रीन प्रेजेंस इज मोर देन अमिताभ बच्चन। तो वो उनकी कंडीशन थी। या एंड शी लुक सो प्रीटी।
4: उनकी बेटी भी सेम थी।
0: यस एब्सोल्युटली। और हर गाने में वो कितनी खूबसूरत दिखती थी इस फिल्म में।
4: एब्सोल्युटली
0: अमेजिंग। यस थैंक यू सो मच रूही। एंड लास्ट कॉलर में बता रही हूँ, लेकिन इतने सारे कॉल्स हैं। फनीशा बताइए।
1: हाय, आप लोग आज गाने बजा रहे हैं फरमाइश के?
0: आप बजाऊंगी, आपने कॉल किया है तो मैं ऐसे यूजुअली लेती नहीं बते, लेकिन बताइए कौन सा गीत आप सुनेंगी?
1: ये एक स्पेशल रिक्वेस्ट है। एक मेरा एक वर्क सन है, आज उसका बर्थडे है और ही इज फ्रॉम इंडिया, फार अवे फ्रॉम हिज फैमिली, सो अनलाइक हिज मॉम। एंड उसके लिए मैं अभी मैं उसको पिक करने जा रही हूँ लंच के लिए।
0: अच्छा,
1: तो
0: बिल्कुल।
1: अभी वो आधे आप मेरे को अगर 15 मिनट में उसके लिए कोई बर्थडे का सॉन्ग बजा सकती हूँ, उसका नाम है सिद्धार्थ।
0: ओके, सिद्धार्थ जी के लिए अच्छा सा गीत बजाऊंगी बर्थडे के लिए, उनके उनको कभी भी आपके अफकोर्स घर की परिवार की हम महसूस नहीं करने देंगे कमी ऑन फनेशा रेडियो। थैंक यू सो मच मैम। सो खुदा गवाह की हम कर रहे थे बातें। जी हाँ, अफगानिस्तान में शूटिंग होना वो बहुत बड़ी बात थी। एंड हमारे बॉलीवुड की फिल्म्स में आई थिंक धर्मात्मा के लिए एक कॉल आया। जी बिल्कुल, धर्मात्मा भी बॉलीवुड की वो एक ऐसी फिल्म थी जिसका शूटिंग हुआ था अफगानिस्तान में। अमिताभ बच्चन के सामने जब श्रीदेवी को सिलेक्ट किया गया था ना, अमिताभ जी 90s अर्ली 90s में उनके सितारे थोड़े से गर्दिश में थे। एज वी ऑल नो कि ABCL कंपनी में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था, पॉलिटिकली ही वॉज नॉट रियली डूइंग वेल एंड बहुत सारी फिल्म्स उनकी फ्लॉप हो रही थी उस वक्त जब ये फिल्म उन्होंने साइन की, श्रीदेवी थी सामने। नाउ श्रीदेवी की मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा थी कंपेयर टू अमिताभ जी इन अर्ली 90s, राइट? श्रीदेवी को जब ये बात पता चली कि मुझे लिया गया है टू मे बी समहाउ अमिताभ जी के करियर को थोड़ा सा ऊपर लाने के लिए, टू अपलिफ्ट दैट, शी डिड दिस फिल्म। बट एट द सेम टाइम उनकी एक बड़ी शर्त ये थी कि मेरे स्क्रीन टाइम अमिताभ की स्क्रीन टाइम से ज़्यादा होगी। इस फिल्म के लिए मुकुल आनंद जो उनके डायरेक्टर थे, उन्होंने ये शर्त मान ली क्योंकि उन्हें पता था कि अगर श्रीदेवी है फिल्म में तो फिल्म बिल्कुल चलेगी और लोग देखेंगे। और बस यही हुआ, अमिताभ जी तो थे ही लेकिन उनके सितारे जो गर्दिश में थे उन्हें ज़्यादा चमकाना था, वहाँ पे कहीं ना कहीं श्रीदेवी की बात लोगों ने मंजूर कर दी।

0: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डैलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। देसी मंडी पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डैलस।
1: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
2: Ready to turn up the heat? Introducing our Achari Paneer Pizza, where bold Indian spices meet cheesy perfection. Think tangy pickle flavors, a dash of chili, and soft paneer cubes soaking up every bit of that spicy magic, all on a hot, fresh crust straight from the oven. It's not just a pizza, it's a flavor explosion with every bite. If you dare to try something bold, come grab your Achari Paneer Pizza today, only at Fun Pizza Kitchen, where tradition meets the oven. Fun Pizza Kitchen, flavor that fires you up.
3: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
4: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
3: क्या मतलब?
4: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
3: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
4: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
3: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
5: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
6: घर की याद नहीं आई तुझे जैसे?
7: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ।
8: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट।
7: सच में बिल्कुल घर जैसा।
8: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुल्चास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर। लोकेटेड इन इरविंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट। चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम।
9: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
10: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
11: Goodness is a beautiful thing, and good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadqa and donation. Visit siutna.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 non-profit organization.
12: And welcome back. This is KZMP 104.9 FM, Fanesha Radio. I am Neelam, aapke saath. A very, very good afternoon to all of you and a very warm welcome. जी हाँ, कल थोड़ी सी ठंड थी, लेकिन आज बिल्कुल धूप निकली हुई है. और धूप हो या ठंड हो, बारिश हो ना हो, हम आपके दिल को रखते हैं म्यूजिकल बरकरार एवरी वीकेंड. शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारे प्रायोजक उमर ख्वाजा जी का. जी हाँ, ना करे खुदा ना कास्ता अगर आप किसी भी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है एंड अगर आपको किसी अटर्नी की मदद चाहिए, वेल मैं आपको नाम दे देती हूँ, विच आर वेरी वेरी गुड अटर्नी कंपनीज, एंड दैट इज अटर्नी उमर ख्वाजा, जो आपके केस को लड़ेंगे. एंड नॉट ओनली दैट, आप जो भी डिजर्व करते हैं वो बिल्कुल आपको कंपनसेशन भी मिल जाएगी. नंबर उनका दे देती हूँ ताकि आप उनको कॉल कर सके फ्री कंसल्टेशन. जी हाँ, आपने सही सुना, फ्री कंसल्टेशन है उनका 469-300-5046. वंस अगेन, दैट इज 469-300-5046 एंड दैट इज attorneyomar.com. एंड दिस सेगमेंट, जैसे कि मैंने कहा, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ उमर ख्वाजा जी का, जिनकी वजह से हम लाते हैं आपके लिए ये सेगमेंट, एंड दैट इज फनीशा रेडियो पे. मैं हूँ नीलम आपके साथ एवरी वीकेंड. आज ये फिल्मी कहानी का सेगमेंट तो बिल्कुल एक और फिल्म आपके लिए आएगी, लेकिन कुछ गाने उसके पहले ये पहले सुन लेते हैं और उसके बाद एक और कहानी.

0: फॉर मोर एंटरटेनमेंट।
1: आप दिलीप कुमार साहब को तो ऐसा कौन होगा जो नहीं जानते होगे हमारी इंडस्ट्री में, राइट? सच ऐसा चल रहा है जेंट, और कितनी इंस्पायरिंग उनकी पर्सनैलिटी। उनके भतीजे का नाम है अयूब खान। अब आपको लगेगा कि भैया क्यों दिलीप कुमार साहब को अभी याद कर रही हूँ मैं, अयूब खान को? तो ये जो गीत आपने सुना वो अयूब खान पे फिल्माया गया था। पहली फिल्म थी अयूब खान की और वो है दिलीप कुमार साहब के भतीजे जो बॉलीवुड में बिल्कुल एंट्री करना चाहते थे, और ये फिल्म उनको मिली थी जिसका नाम था सलामी। नदीम श्रवण साहब उसके कंपोजर थे। फिल्म खास नहीं थी, ठीक ठाक चली, लेकिन गाने बहुत चल पड़े थे। 90s का गीत आपने ये सुना होगा, नदीम श्रवण का बहुत ही मीठा सा गाना आशा जी, और उनके साथ कुमार सानू की बहुत ही खूबसूरत आवाज ऑन 104.9 FM। कहानी बिल्कुल आपको बताऊंगी, थोड़ा सा और इंतजार, भाई हर कोई कहानी के लिए थोड़ा सा इंतजार तो करना ही पड़ता है। नाउ बिफोर वी बिगेन एनी अदर बातें, हमारी कुछ और बातें हो, एक खास बर्थडे डेडिकेशन है, और वो बर्थडे डेडिकेशन है सिद्धार्थ के लिए। जी हाँ, सिद्धार्थ जो अपने परिवार से दूर है यहाँ डालस में, आई एम श्योर हमारी तरह हम सब एक परिवार ही है। फनीशा रेडियो आपका परिवार है, एंड देर आर सो मैनी डिफरेंट फैमिलीज जिनके परिवार, अपने मम्मी पापा की बात कर लीजिए या अपने इन लॉज, अपने भाई बहन, सिम्बलिंग्स, कहीं ना कहीं हमसे नज़दीक नहीं है, राइट? लेकिन हम सब साथ है एज अ कम्युनिटी, एज अ फनीशा रेडियो ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। तो सिद्धार्थ, वेल दिस इज योर होम फनीशा रेडियो, तो हम आपके लिए खास एक गीत डेडिकेट करना चाहते हैं। आपकी दोस्त ने कही थी ये बातें, तो आपकी दोस्त की तरफ से आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत गीत सोनू निगम जी की आवाज में, बार बार दिन ये आए ऑन 104.9 FM फनीशा रेडियो।

0: सुनो निगम जी की आवाज़ एक बार फिर से सिद्धार्थ के लिए, उन्होंने 4.9 FM फनीशा रेडियो, बहुत बहुत आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं सिद्धार्थ, और ये है फनीशा रेडियो ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। चलिए अब आती है एक फिल्म की कहानी आपके लिए, जो आपको फिल्म का नाम पहचानना है उस कहानी से, और मुझे लगता है कि आप इतने स्मार्ट है कि सिर्फ एक ही नाम से, एक ही किरदार के नाम से आप पहचान जाते हैं। सो वेल, ये कहानी आज़ादी की लड़ाई के दौर में पनपते एक बहुत ही मासूम सी लड़की और एक बहुत ही मासूम सा लड़का, दोनों में हो जाता है इश्क। और राजेश और रजनी का ये जो प्यार है वो सियासत और हालात के बीच उलझ जाता है। राजेश को रजनी बहुत ही अच्छी लगती है। राजेश के पिता का नाम है दीवान हरनाम सिंह और रजनी के पिता जो है श्यामलाल है। दोनों की सोच अलग अलग, दोनों के उसूल अलग अलग। एक तरफ देशभक्ति की आग है तो दूसरी तरफ दिल की आवाज। राजेश करे तो क्या करे, और इस सब के बीच उनका प्यार कठिन इम्तिहानों से गुजरता है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, ये जो प्यार की कहानी है, इश्क की कहानी है, वो है आज़ादी की लड़ाई के बीच की कहानी। तो ये कहानी कौन सी है जहाँ प्यार भी है, देशभक्ति भी है, राजेश को रजनी से प्यार है लेकिन सियासत भी है, और अपने पापा के उसूल भी है। रश्मि जो बहुत ही मासूम है, रजनी एक्चुअली नॉट रश्मि, जो बहुत ही मासूम है, वो भी अपने प्यार के बीच में और अपने पापा श्यामलाल के उसूल के बीच में पीस जाती है। तो कौन सी है ये कहानी, बताएंगे मुझे आप। मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी आपको कठिनाई हो रही है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये कहानी है आज़ादी के लड़ाई के दौर की, और आज़ादी के लड़ाई के दौर की हमारी इतनी बहुत सारी कहानियाँ नहीं है, कुछ ही कहानी है जिसमें ये, मैंने जैसे कहा कि बहुत ही मासूम सा प्यार है, मासूम सा इश्क है राजेश का और रजनी का। तो बताएंगे मुझे आप, मैं एक क्लू देने वाली थी, लेकिन चलिए पहले हमारे एक लिसनर से मैं करूंगी बात। मनीष, आपकी रेडियो की आवाज प्लीज कर दीजिए प्लीज।
1: मूवी का नाम है 1942 अ लव स्टोरी।
0: ओह माय गॉड, यू नो मैं अभी सोच रही थी कि मैंने सिर्फ आज़ादी कहा है, एंड देर आर सो मैनी प्रॉब्लम मूवीज एंड पीपल आर गेटिंग कंफ्यूज, तो मैं 40s के लिए बोलने वाली थी और आपने नाम बता दिया, वेरी नाइस। आपको कैसे पता चला?
1: वो आज़ादी के कारण ही पता चला जो आपने हिंट दिया।
0: हाँ वेरी नाइस, और आपका नाम एक बार फिर से प्लीज बता दीजिए।
1: अर्चना।
0: अर्चना जी वेरी स्मार्ट, आई मस्ट से दैट। आपको ये मूवी अच्छी लगी थी?
1: हाँ, बहुत अच्छी लगी थी।
0: उसके गाने बहुत अच्छे थे, राइट? इट्स लाइक ब्यूटीफुल। और आपको पता है कि आरडी बर्मन साहब की आखिरी मूवी थी एज अ कंपोजर, इसके बाद उन्होंने ऑफकोर्स कोई मूवी नहीं की क्योंकि ही वाज नॉट इन दिस वर्ल्ड एनीमोर। तो ये उनकी आखिरी मूवी थी एज अ कंपोजर। बट थैंक यू सो मच अर्चना जी, एंड फनीश यू आर लाइव ऑन एयर।
2: हाय, इज इट 1942 अ लव स्टोरी?
0: इट इज 1942 अ लव स्टोरी। आपने देखी थी ये मूवी?
2: Yes, I did, but I don't remember the name of the characters. Yes. But I remember the storyline.
0: I know, and you know, when I was, as I said, when I was talking about this movie character के नाम के साथ, and मुझे थोड़ी सी फिकर होने लगी थी, मुझे लगा था कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा कठिन सवाल दे दिया है कि लोग सोच में पड़ गए, and then I thought कि मे भी मुझे कहना चाहिए कि 40s की आज़ादी की कहानी, फिर लेकिन देखिए आप लोग इतने स्मार्ट हैं कि पता चल ही गया। आपने देखी, कितनी बार देखी थी ये मूवी?
2: I think quite a few times. Quite that was in my young age, so yeah.
0: You are still young, ma'am. Very young. It's always young at heart, so never say when
2: there
0: I was
2: you
0: young. You are always young.
2: True.
0: Right? Thank you, ma'am.
2: That's true. Thank you. Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: 1942 अ लव स्टोरी, और जैसे कि मैंने कहा, आर डी बर्मन साहब, जी हाँ, इस गानों को बनाकर, इस अमर धुनों को बनाकर इसी साल वो हम सबको अलविदा कह चुके थे। एंड दैट इज़ द रीज़न 1942 अ लव स्टोरी है उनकी आखिरी फिल्म एज ए म्यूजिक कंपोजर। मैं हूँ नीलम, आपके साथ रहती हूँ सैटरडेज़ एंड संडेज़ 12 से 3 के बीच में, और आज है फिल्मी कहानी का सेगमेंट। अभी भी कहानियों के लिए इतने सारे कॉल्स, थैंक यू सो मच।
1: अंधी है बेचारी।

0: मोहब्बत की बातें, प्यार की बातें, दिलों की बातें होती है हमारे साथ संगीत के साथ एवरी वीकेंड। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपके ढेर सारे कॉल्स के लिए एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर वीकेंड। आपका और हमारा ये जो साथ होता है हर वीकेंड में ही होता है, सैटरडे संडे, लेकिन मुझे इंतज़ार होता है वीकेंड्स का ताकि मैं यहाँ पर आकर आपके साथ बहुत सारी म्यूजिकल बातें करूँ, फिल्मी बातें करूँ, कहानियाँ कहूँ आपको। लेकिन उसी के साथ ऑफकोर्स कहानियाँ और म्यूजिकल बातें होती है, लेकिन मेरे साथ कम्युनिटी की भी बातें होती है। मैं आपके लिए कम्युनिटी आउटरीच की जो प्रस्तुति होती है कम्युनिटी राउंड अप हर शनिवार की दोपहर 2 से 3 के बीच में लाती हूँ। आई हेल्प इन मैनेजिंग एंड लीडिंग द कम्युनिटी आउटरीच डिपार्टमेंट। तो एक छोटा सा प्रयास है हमारा आपके लिए, हमारी कम्युनिटी को मदद करने के लिए, दैट इज एवरी सैटरडे। इस कार्यक्रम के लिए हम बिल्कुल शुक्रिया अदा करना चाहेंगे माई टाइम इक्विटी सीपीए सुधीर पाई का। नंबर है उनका 4697021272, दैट इज 4697021272, mytimeequity.com। आपके लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात हो, रियल एस्टेट की बात हो, या फिर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट की बात हो, एक ही नाम एंड दैट इज मिस्टर सुधीर पाई, 4697021272। अभी भी 2 कहानियां बाकी है। जी हाँ, अब तक आपने 2 कहानी सुनी, थोड़ी सी कठिन, थोड़ी सी आसान, आपने दोनों कहानी के जवाब मुझे दे दिए। अभी 2 कहानी और आएगी, तो आपको कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ बने रहना है, क्योंकि कुछ कहानियां आपको मैं बताऊंगी, कुछ गाने होंगे आपके लिए, राइट हियर 104.9 FM फन एशिया रेडियो एवरी वीकेंड विथ मी।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG FinTax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: अभी मजा आएगा ना भिड़ो,
3: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे।
4: ब्यूटीफुल होम रंग

खींचा चला जाए तेरी ओर रे जी। बिल्कुल, प्यार में मोहब्बत में वही शिद्दत होती है कि हम खींचते चले जाते हैं, और आपका जो प्यार है फनेशा रेडियो के लिए, प्यार है जो संगीत के लिए, वही आपको खींच कर लाता है। हाँ हाँ, एवरी डे सातों दिन चौबीसों घंटे। लेकिन आपकी और हमारी म्यूजिकल मुलाकात ओनली ऑन सैटरडेज एंड संडेज 12 से 3 के बीच में। मैं हूं नीलम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। वंस अगेन अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। चलिए एक और गाना सुन लेते हैं, और इस गाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कहानी। जी हाँ, एक छोटी सी कहानी। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई क्यों कहानी, तो क्योंकि आज का है हमारा सेगमेंट फिल्मी कहानी का, जहां पर मैं आपको एक कहानी बताती हूं और उससे आप पहचानते हैं फिल्म। तो चलिए ये गीत सुन लेते हैं, उसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प कहानी ऑन 104.9 FM।

0: चलिए मैं आपको अब एक कहानी बताती हूँ और वो कहानी से आप मुझे बताएंगे फिल्म का नाम। कहानी है ऐसे भी अजय सिंह राठौड़ की, जो देश में फैले आतंकवाद साजिशों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते और वो एक मिशन पर निकले हैं। लेकिन उससे पहले उनको एक प्यार, उनकी भी एक अच्छी सी जिंदगी थी जहाँ पर भाभी थे, भाई थे और एक छोटा सा भतीजा था और प्यार था सीमा से। लेकिन अपने अतीत के दर्द के साथ, जज्बे के साथ वो निकल पड़ते हैं कुछ सुराग को लेकर दुश्मन के करीब पहुंचने के लिए। इस सारे सफ़र में उनके साथ होते हैं संगीतकार गुलफाम हसन साहब, जो कुछ राजदार है, उनके पास भी कुछ बड़ा सा राज है। तो कहानी में क्या होगा? क्या एसीपी अजय सिंह राठौड़ पहुंच पाएंगे दुश्मन तक, या फिर वो जो भी गुलफाम हसन साहब का जो भी राज है वो जान पाएंगे? प्यार की कहानी, अतीत की कहानी, दर्द की कहानी, हिम्मत की कहानी और देशभक्ति की कहानी है ये। और मुझे बताएंगे आप कि ये कौन सी है कहानी ऑन 104.9 FM। फनीश, आर यू लाइव ऑन एयर?
1: सरफरोश।
0: सरफरोश, इट इज सर। एंड आपका नाम क्या है?
1: हितेश।
0: हितेश जी, आपने ये फिल्म कितनी बार देखी थी? चलिए, लेट मी आस्क दैट वे।
1: 10-12 टाइम्स from different places, you know. They're a very interesting thing, you know. So 10-12 times.
0: 10-12 times, and every time in theaters or maybe sometime at home with somebody?
1: No, at home.
0: All right, thank you so much, Hiteshi and Panisha. You're live on air.
2: Neelam ji, ye movie hai sir, Farosh.
0: It is sir. Aur aapka naam kya hai?
2: Manish.
0: Manish ji, aapko ye film ki kahani kyun zyada achhi lagi thi? What was the best part about this film?
2: In fact, Aamir Khan jisme pehli baar action role mein the.
0: अच्छा, मुझे लगा गुलाम में थे। Didn't he do something similar in गुलाम? If you remember रानी मुखर्जी के साथ, was it गुलामी और गुलाम? I think गुलाम, right? 90s की फिल्म थी।
2: गुलाम come little later than this. This was 97 or something, I believe.
0: Okay, I might have to check on that. Yeah, could be sir. So yeah, गुलाम की कहानी भी similar थी। I'm just not sure about the sequence की कौन सी पहली आई थी। So apart from that, I think music was great too. सरफरोश के गाने बहुत अच्छे थे। Yes, yes. Thank you so much, sir. And I think I lost that line. Phanish, are you live on air?
3: Hi, this is Sandeep.
0: Yes, Sandeep ji, bataiye.
3: Sarfarosh.
0: Sarfarosh it is. Aur aapko kya lagi thi achhi kahani is film mein? Kaun si baat thi jo bahut achhi lagi thi?
3: I mean, it was a patriotic thing, so thodi deshbhakti ki thi aur acting gar achhi thi Aamir Khan ki.
0: Ji ji, absolutely. Aamir Khan ki acting bahut achhi thi. And Nasiruddin Shah ko kyun hum bhul jate hain bhai? And Phanish, are you live on air?
4: Hello.
0: Yes sir, you are live on air, bataiye.
4: Sarfarosh.
0: Sarfarosh it is. Thank you so much. And Phanish, bataiye kya hai aapka jawab?
5: Yes, hi, the name of the movie is Sarfarosh.
0: It is sir. Aur aapne ye kitni baar dekhi thi?
5: मैंने बहुत बार देखी है। आई लाइक आमिर खान।
0: यू लाइक आमिर खान? आपने सोनाली का नाम नहीं कहा।
5: वेल, शी इज अ डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर। आमिर हैज टू बी लिस्टेड।
0: आमिर हैज टू बी लिस्टेड, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो बातें हो रही है आमिर खान की फिल्म सरफरोश की, एंड व्हाइल आई वाज टॉकिंग टू यू ऑल, मैंने थोड़ी सी छानबीन कर दी क्योंकि आई वाज कंफ्यूज्ड। मुझे लग रहा था कि सरफरोश बाद में आई थी, एंड एज पर मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, IMDB की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक गुलाम केम इन 1998, आमिर खान एंड रानी मुखर्जी, एंड सरफरोश केम इन 1999 विद सोनाली बेंद्रे एंड ऑफकोर्स आमिर खान एंड नसीरुद्दीन शाह। आमिर खान का एक अलग ही रोल, SCP अजय राठौड़। बहुत ही खूबसूरत गाने, बहुत ही खूबसूरत अदाकारी, एंड दैट वॉज सरफरोश ऑन 104.9 FM फनेशा रेडियो। मैं हूँ नीलम, आपके साथ एवरी वीकेंड।

जगजीत सिंह साहब की आवाज़ जब भी सुने तब लगता है कि बस फिजा छा गई। जहाँ जहाँ पर भी बैठे होगे आप, कहीं पर भी आप जा रहे होगे, आ रहे होगे कहीं से, लंबी सी लिस्ट आपकी ग्रोसरीज की, टू डू लिस्ट, लेकिन फिर भी कुछ आवाज़ें ऐसी होती है, कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर लगता है कि बस मौसम बन गया, माहौल बन गया, राइट? बस यही ऐसे माहौल बनाने की एक हमारी छोटी सी कोशिश एवरी वीकेंड ऑन 104.9 FM फनीशा रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। और मैं हूँ नीलम आपके साथ। अभी भी इतने सारे कॉल्स। जी हाँ, सरफरोश की हम कर रहे थे बातें, विच केम आफ्टर गुलाम। लेकिन इस फिल्म के लिए इंटरेस्टिंग बात यह है, शायद आप नहीं जानते होगे कि एज यूजुअल यू नो आमिर खान के साथ काम करना बहुत ही धैर्य का काम है, धीरज का काम है। क्योंकि एक बार जॉन मैथ्यू का मैं इंटरव्यू सुन रही थी कहीं पे, एंड ही इज़ द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, नॉट द प्रोड्यूसर सॉरी डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म। और उन्होंने कहा था कि इस फिल्म के लिए जब आमिर खान के पास वो पहुँचे थे इन अर्ली 90s, आई थिंक आफ्टर राइट आफ्टर इस क़यामत से क़यामत तक के बाद, एक दो साल के बाद, और उन्होंने कहा था कि भाई मेरी फिल्म में आप ही लीड हीरो बनेंगे और ये मेरी आइडिया है, ये मेरी कहानी है। आमिर खान ने कहा कि मुझे थोड़े से साल दे दीजिए, नॉट मंथ, ही डिड नॉट से कि मुझे एक दो महीने चाहिए रिसर्च के। उन्होंने कहा कि थोड़े से साल दे दीजिए, मैं अक्सर रोमांटिक हीरो के रोल करता हूँ तो इसके लिए मुझे थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, मुझे थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। एंड ही सेज द डायरेक्टर इन वन ऑफ हिज इंटरव्यूज, ही सेड कि मैं आई वॉज सो सरप्राइज कि अक्सर कोई भी हीरो के पास में जाता था, दे वुड आस्क मे बी फॉर फ्यू मंथ और फ्यू वीक्स, राइट, कि थोड़ा सा वक्त मुझे दीजिए होमवर्क के लिए, प्रिपरेशन के लिए। ही टुक 7 years, प्रॉबेबली इट वॉज नॉट जस्ट द होमवर्क, ऑफकोर्स ही हैड मैनी अदर कमिटमेंट्स एंड रोल्स एंड एवरीथिंग, बट स्टिल राइट, इतने साल तक वो बैठे रहे और सोचते रहे कि मुझे कैसे करनी है ये एक्टिंग, क्या क्या करना होगा, एंड हाउ आई विल एक्ट, एंड इसके लिए जितनी भी रिसर्च चाहिए उस रोल के लिए उन्होंने की फॉर ऑलमोस्ट 7+ years। सो दैट इज़ आमिर खान, एंड दैट इज़ द रीज़न हम उनको बार बार पर्दे पर नहीं देखते, लेकिन ऑफ कोर्स उनके गाने तो सुन सकते हैं 104.9 FM।

फिल्म जय से सुना आपने ये गीत ऑन 104.9 एफएम फनीश हरिडो। आज कुछ मिले जुले गाने नगमे लाई हूँ आपके लिए, प्यार मोहब्बत से भरे हुए। जी बिल्कुल, आप जानते ही है, थीम कोई भी हो, विषय कोई भी हो, फिल्मी कहानी का हो या एक शब्द पर आधारित गाने हो या कोई भी सेगमेंट हो, गाने होंगे बहुत ही मेलोडियस। क्योंकि मैं ये मानती हूँ, मैं संगीत से प्यार करती हूँ और मुझे यकीन है, पक्का यकीन है कि आप भी मेरी पसंद को बिल्कुल पसंद करते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, धन्यवाद कहना चाहती हूँ इस सारे कॉल्स के लिए। बस यही गाने, यही बातें, यही म्यूजिकल मेलोडीज आपके साथ रहती है एवरी वीकेंड।

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओह हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। माई फैमिली होम लोन डॉट कॉम देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट माई फैमिली होम लोन डॉट कॉम और कॉल 4697343338, 4697343338। माई फैमिली होम लोन डॉट कॉम इस Powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
4: यार मैं थक चुकी हूँ। पार्टी के पहले सफाई, फिर पार्टी, बाद में सफाई, ऊपर से आप तो कोई मदद करते हो नहीं, मेरे से नहीं होगा ये।
5: अरे यार बोला ना, लेकिन तुम्हें सुनना ही नहीं। बताया ना, जहाँ पार्टी है वहीं खाना है, जहाँ खाना है वहीं पार्टी है, सिंपल।
4: मतलब
5: देख, जगह बुक करेंगे पूरे 3 घंटे के लिए और वो भी सिर्फ $250 में, और खाना पीना जो ऑर्डर करना है वो अलग से पे करके वहीं ऑर्डर कर लेंगे। अब तेरे को तेरी सफाई की पड़ी है, अब खुल के पार्टीज कर, चाहे क्रिसमस हो, थैंक्सगिविंग हो या फिर तेरे भाई का बर्थडे। नाम याद रख बस, फन पिज्जा एट कॉलोनी।
2: विजिट फन पिज्जा किचन, FPK एट कॉलोनी इज नाउ ओपन फॉर डाइन इन।
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
6: क्या मतलब?
7: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
7: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
6: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
8: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
2: Are you looking to own a global restaurant brand? Jai Bhavani, an established brand from India, born in Gujarat, is expanding across Texas. We hold the exclusive franchise rights for Texas and are inviting motivated entrepreneurs to join us in partnership with a leading hospitality group. Call Sunil at 469-468-6021 or Lee at 214-576-6439.
9: This is Uday Chopra and you are listening to Fun Asia Radio.
10: And welcome back. This is KZMP 104.9 FM, Fun Asia Radio. पे मैं हूं नीलम आपके साथ. A very very good afternoon to all of you and a very warm welcome. Connecting America, जी हाँ, आपके लिए बिल्कुल मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारे शो के लिए, आपके प्रोजेक्ट के लिए, एंड दैट इज कनेक्टिंग अमेरिका, जहां पर इनके साथ यू कैन टर्न योर बिजनेस एक्सपेंसेस इनटू अ पावरफुल इनकम स्ट्रीम. कैसे, ये बिल्कुल आपको बता सकते हैं. आज ही आप उनको कॉल कीजिएगा 321-888-7345. वंस अगेन दैट इज 321-888-7345 और यू कैन विजिट द वेबसाइट दैट इज कनेक्टिंग अमेरिका financials.com. वंस अगेन दैट इज द वेबसाइट कनेक्टिंग अमेरिका financials.com. और यू बिल्कुल आपको बता सकते हैं कि कैसे यू कैन स्टार्ट टर्निंग योर डेली एक्सपेंसेस इनटू इनकम. देखिए इतनी अच्छी बात कौन कर सकता है, राइट? कि भाई हमारे एक्सपेंसेस को इनकम कैसे बता सकते हैं. एंड नॉट ओनली दैट, दे कैन ऑल्सो हेल्प होम ओनर्स टू पे ऑफ देयर मॉर्गेज इन जस्ट 10 ईयर्स और लेस. एर जी बिल्कुल, अगर आपकी फिक्र है कि भाई हमारे घर में बहुत बड़ा सा मॉर्गेज है, कैसे उसको पे आउट करेंगे एंड ऑल दैट, तो वेल आज ही आप उनको कॉल कीजिएगा बिकॉज दे कैन गिव यू द मल्टीपल ऑप्शंस एंड दैट इज कनेक्टिंग अमेरिका 321-888-7345. वेल इट इज ऑलमोस्ट लंच टाइम, थोड़ा सा डिलेड लंच टाइम है, लेकिन सैटरडे होता है ऐसा, राइट? हम मंडे टू फ्राइडे तो वेल कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, डिनर के लिए भी, डिनर के लिए तो वेल अच्छा अच्छी से इंतजाम करना करनी पड़ती है हमें, लेकिन लंच के लिए तो अगर काम पर है तो कुछ भी चलेगा, राइट? एनी लेफ्ट ओवर सैलड, ये वो वगैरह वगैरह. लेकिन अगर आप आज लंच के लिए सोच रहे हैं कि कहाँ जाए, तो वेल मैं आपको नाम दे देती हूँ, एंड दैट इज पेज 3 इटरी. और ये कहाँ पर? 121, बहुत बहुत नज़दीक हमारे रेडियो स्टेशन से. जी हाँ, 121 पर है पेज 3 इटरी, जहाँ पर आपको ब्रंच, लंच और डिनर भी मिल सकते हैं, कबाब से लेके, चाट से लेके, फ्यूजन बाइट से लेके, सब कुछ। एंड दैट इज एट पेज 3 इटरी। वेबसाइट इज page3eatery.com. वंस अगेन दैट इज page3eatery.com. एंड एज आई सेड, इट इज वेरी वेरी क्लोज टू फनेशा रेडियो स्टेशन। सो अगर आप फनेशा रेडियो स्टेशन आना चाहते हैं तो पहले page3eatery होकर आइए। एंड उसी नोट पे लेट्स टॉक अबाउट द FPK, दैट इज फन पिज्जा किचन फॉर ऑल द वेजी लवर्स। अगर आप वेजिटेरियन है हमारी तरह तो बिल्कुल यू कैन ट्राई आचारी पनीर पिज्जा। एंड नॉट ओनली दैट, यू कैन हैव मल्टीपल आचार पंच के साथ, कुछ सॉफ्ट पनीर की भी बातें होगी, मैजिक होगी। एंड इफ यू लाइक चिकन पिज्जा, देन दे हैव तंदूरी चिकन पिज्जा। ऑल दैट एट फन पिज्जा किचन। दो है उनके लोकेशन, दैट इज कॉलोनी एंड फ्रिस्को। अगर आपने अभी अभी रेडियो ट्यून इन किया है, वेल, आज मैं बातें कर रही हूँ कुछ मिले जुले गानों के साथ फिल्मी कहानी की, जहाँ पर मैं आपको एक कहानी सुनवाती हूँ और उस कहानी से आप पहचानते हैं फिल्म का नाम। चलिए एक और कहानी, आखिरी कहानी बाकी है, लेकिन उससे पहले कुछ गाने हो जाए यहाँ पे ऑन 104.9 FM।

0: मैंने जिंदगी तेरे नाम की योद्धा फिल्म सुना आपने, बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा गीत 104.9 FM पन एशिया रेडियो। और चलिए अब है वक्त एक कहानी का, और अगर आपने अभी भी ट्यून इन किया है तो कहानी एक ऐसी होती है जो फिल्मी कहानी होती है। मैं आपको वेरी ब्रीफली एक फिल्म की कहानी सुनवाती हूँ और उससे आपको फिल्म का नाम पता करना होता है। अब तक हमने तीन कहानियाँ आपको सुनवाई और तीनों तीन के नाम आपने फौरन पहचान लिए, तो चलिए अब आखिरी कहानी इस सेगमेंट में। ये कहानी एक छोटे से गांव चंदेरी की है, जहां हर साल चंदेरी में एक ऐसा नोशन है, एक ऐसी सुपरस्टिशन है, हर साल एक बात होती है कि त्योहार के दिन एक आत्मा आकर पुरुषों को, ओनली मेल, जितने भी गांव के मेल होते पुरुषों को ही उठा ले जाती है। विकी जो एक टेलर है वो अपने दोस्तों के साथ एक रहस्यमय लड़की के साथ इस अनसुलझे राज को सुलझाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने भी सुना है कि चंदेरी में अक्सर ये बात होती है और उसको उसकी मुलाकात होती है एक लड़की के साथ जिसके लिए वो कुछ नहीं जानता। तो ये कौन सी कहानी है जहाँ डर भी है, हंसना हंसाना भी है और इस सब के बीच में कुछ प्यार और मोहब्बत भी की कहानी है? तो बताएंगे मुझे आप कि डर की कहानी, दोस्ती की कहानी, उस रहस्य की कहानी, ये कौन है वो आत्मा जो आकर सिर्फ पुरुषों को उठा जाती है, और कौन है वो लड़की जिसे पहचानने की कोशिश विकी करता है? और ये सारी बातें, ये सारी कहानियां हैं आपके लिए चंदेरी गांव की। तो बताएंगे मुझे आप यहाँ 104.9 FM, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो,
1: हाय।
0: हाय।
1: मूवी नेम इज स्त्री।
0: स्त्री, बिल्कुल स्त्री। आपने देखी थी ये फिल्म?
1: हाँ देखी तो थी, हिम्मत करके।
0: हिम्मत, सो व्हाट वाज द रीजन? ओके, नाउ आई हैव टू रियली नो द रीजन, क्योंकि आपने हिम्मत क्यों करनी पड़ी? बिकॉज यू आर नॉट श्योर कि यार पता नहीं क्या होगा फिल्म में, चलिए देख लेते हैं।
1: नहीं, सुना था इट वाज अ मिक्स ऑफ कॉमेडी एंड हॉरर, और मुझे ये सुपरस्टिशंस इज समथिंग दैट इज नॉट माय थिंग,
0: तो वो मैं
1: हेजिटेट हो रही थी, बट इट टर्न्ड आउट गुड।
0: बिकॉज सी, इट वाज नॉट आउट एंड आउट हॉरर फिल्म, राइट? ऐसा नहीं था कि रामसे ब्रदर्स की वो भूत बंगला है जिसमें देखकर लगे कि यार ये कहाँ भूत कहाँ है यहाँ पे। मिस्ट्री ऑफ कोर्स, बट अगेन एट सम सेंस ऑफ ह्यूमर विथ अ लाइट टच ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, थैंक यू मैम। एंड फनीश, आर यू लाइव ऑन एयर?
2: हेलो। हाय, मूवी का नाम है स्त्री।
0: स्त्री है जी, बिल्कुल स्त्री है। और आपका नाम क्या है?
2: भाग्यश्री।
0: भाग्यश्री, क्या बात है। भाग्य की लक्ष्मी, भाग्यश्री का मतलब होता है।
2: थैंक यू।
0: जी बिल्कुल, भाग्यश्री का मतलब होता है लक्ष्मी, श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, और आप भाग्य की लक्ष्मी। सो भाग्यश्री, बताइए कितनी आपको भी डर लगा था इस फिल्म को देखकर कि लगा कि यार पैसे वसूल नहीं हुए?
2: नहीं, मैं हॉरर बहुत एंजॉय करती हूँ, एंड ये हॉरर कॉमेडी का वन ऑफ द फर्स्ट मूवी विच वॉज एक्सेलेंट,
0: राइट? इवन मी, सी आई लाइक हॉरर फिल्म्स, लेकिन मुझे देसी हमारी हॉरर होती है ना उसमें ज्यादा हंसी आती है। हंसी नॉट फॉर द फैक्ट कि वो कॉमेडी है, बट आई फाइंड इट वेरी रिडिक्यूलस। लगता है कि यार उसमें हॉरर कहाँ था, बट इन दिस फिल्म आई मस्ट से कि देयर वाज सम एलिमेंट ऑफ सीक्रेट, लग रहा था कि कुछ सस्पेंस है, राइट? कि क्या होगा, सो दैट वॉज डेफिनेटली देयर। एंड सचिन जिगर का संगीत भी बहुत खूबसूरत संगीत था। सो थैंक यू सो मच भाग्यश्री, थैंक यू फॉर योर कॉल। एंड आप बताइए, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो, एंड आई थिंक आई लॉस्ट दैट लाइन। आप फिर से कॉल कर सकते हैं कि आपको ये फिल्म में क्या सबसे बड़ी अच्छी बात लगी? कहानी जो मैंने सुनवाई, प्यार की, डर की, दोस्ती की, रहस्य की, सस्पेंस की, कुछ थ्रिलर की, वो थी सचिन जिगर के संगीत में सजी हुई बहुत ही खूबसूरत ये फिल्म जिसका नाम स्त्री। और इसी फिल्म में पहली बार हमने मधुबंती बागची की भी आवाज सुनी थी, इन द फिल्म्स की मैं बात कर रही हूँ। एंड एज आई सेड, सचिन जिगर का जब संगीत हो तो क्या बात है, हर एक गाना जैसे कि प्यार में लपेटा हुआ आपके लिए। 104.9 FM।

2018 में रिलीज हुई थी ये फिल्म, और एक छोटी सी कहानी, छोटे से गांव की कहानी, व्हेन आई से छोटी सी कहानी मीनिंग छोटे से बजट की एक फिल्म, जब 20 करोड़ में बनी थी ये फिल्म, लेकिन इस फिल्म ने इतना अच्छा बिजनेस किया था कि इट अर्न्ड मोर देन 100 करोड़। जी हाँ, बात कर रही हूँ मैं स्त्री की, जिसकी कहानी आपने सुनी, जिसका गाना आपने सुना। राजकुमार राव के साथ ही श्रद्धा कपूर, एंड एज अवर लिसनर सेड एंड इवन आफ्टर दैट सो मेनी कॉल्स, कि देखिए हमारी इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, जब हॉरर फिल्म की बात निकलती है हम थोड़ा सा सहज जाते हैं कि भाई हॉरर हॉरर होगी या कॉमेडी होगी, राइट? नॉट द फैक्ट कि वो कॉमेडी कॉमेडी होगी, लेकिन वी जस्ट फाइंड इट सो रिडिक्युलस। एंड आई रिमेंबर 80s में, 90s की जब भी हम कोई बात करते हैं कि रामसे ब्रदर्स की फिल्म, तो इतनी लाइक इट, देयर वॉज नथिंग हॉरर अबाउट इट ऑफकोर्स, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती कि अब लगता है कि बस आप मत बनाइए हॉरर, प्लीज़ आप हमारी इंडस्ट्री को बख्श दीजिए, हॉरर बनाइए ही मत। बट देन वी डिड हैव फ्यू गुड हॉरर फिल्म्स, एंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली भूत आई थी उर्मिला मातोंडकर की, एंड आई रियली लाइक दैट फिल्म। मुझे लगा था कि उस फिल्म में वाकई में उर्मिला ने बहुत अच्छा काम किया था, देर वॉज अ सस्पेंस एलिमेंट एंड देर वॉज ऑफकोर्स सम सीन्स वर वेरी वेरी स्कैरी। तो कुछ फिल्म्स बनी है ना। स्त्री की जब अनाउंसमेंट हुई थी कि भाई ये हॉरर फिल्म होगी, लेकिन एट द सेम टाइम इट वुड बी लाइक रोम कॉम, रोमांटिक भी है, कॉमेडी भी होगी, तब लोगों को पता नहीं था व्हाट टू एक्सपेक्ट, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में हॉरर के साथ कॉमेडी ऐसा कम होता है, राइट? लेकिन बनी थी ये फिल्म, फिर भी लोगों ने देखी, पसंद की थी और लोगों को बहुत अच्छी लगी थी। एंड एज आई सेड कि बनी थी फिल्म सिर्फ 20 करोड़ में, लेकिन फिल्म ने बिजनेस किया ऑलमोस्ट 100 करोड़। मैं हूं नीलम, आपके साथ रहती हूं एवरी वीकेंड, कुछ गानों के साथ, कुछ बातों के साथ, यहां 104.9 FM।

जी बिल्कुल, आप भी अपने फनेशा रेडियो को हमेशा ऐसे ही अपना बनाकर रखिएगा। हम आपके लिए लाते हैं सातों दिन चौबीसों घंटे बहुत सारे एंटरटेनमेंट कार्यक्रम। और अगर आप हमसे मुलाकात करना चाहे, हमसे म्यूजिकल मुलाकात ये करना चाहे, देन आई डू कम ऑन सैटरडेज 12 से 3 के बीच में एंड ऑन संडेज 12 से 2 के बीच में। 2 से 3 के बीच में करूंगी मैं आपसे बातें कम्युनिटी की, कुछ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन गानों के साथ। कम्युनिटी आउटरीच की है ये प्रस्तुति कम्युनिटी राउंड अप। एंड राइट आफ्टर दैट टुमारो एक बार फिर से मुलाकात होती है 12 से 1 के बीच में। गुजराती कार्यक्रम प्रस्तुत करती हूँ मैं नीलम आपके लिए। एंड 1 से 2 के बीच में गैर फिल्मी गानों का सेगमेंट एवरी वीकेंड ऑन 104.9 FM।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
3: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में
2: दैट मैजिक रिमूवल हो लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी
3: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से नाउ इट्स योर टर्न समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
4: Did you know Bawarchi Biryani's is the number one Indian restaurant chain in USA? It's true, with over a decade of experience.

0: ली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। नाउ इट्स योर टर्न, समस्या का पक्का समाधान। एस्ट्रोलॉजर ईश्वर, कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologereeshwar.com।
1: Did you know Bawarchi Biryanis is the number one Indian restaurant chain in USA? It's true. With over a decade of experience and 50 plus locations across the country, Bawarchi Biryanis makes the best Hyderabadi Dum Biryanis and Andhra Pulaos. They also serve the finest North and South Indian cuisine. So why dine anywhere else?
2: Visit one of their DFW locations, Plano, Frisco, Irving or Richardson.
3: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
4: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
3: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
4: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
5: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel. Get ready for the smoky, flavorful goodness of Tandoori Chicken Pizza. Perfectly marinated tandoori chicken, mildly spiced, tender and bursting with aroma. Layered over creamy cheese and a golden crust. It's the perfect balance. Not too spicy, not too mild. Just right for every flavor lover. Taste the magic of the tandoor on your favorite sliced tandoori chicken pizza. Only at Fun Pizza Kitchen. Fun Pizza Kitchen, where every slice tells a story.
6: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
7: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
8: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
9: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
8: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
9: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
10: Hi, this is Salim Merchant from Salim Suleiman, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

एंड वेलकम बैक, दिस इज KCMP 104.9 FM फनेश रेडियो पे। मैं हूँ नीलम, आपके साथ कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हूँ आप सभी के लिए, कम्युनिटी राउंड अप। ये कार्यक्रम आपके लिए, आप ही के लिए, हमसे बनती, आपसे बनती है ये हमारी बातें। जी हाँ, आपके शहर की बातें, आपकी कहानियाँ, आपके लोगों की बातें, आपके इवेंट्स की बातें, ये सारी बातें यहाँ पर एवरी सैटरडे 2 to 3 PM ऑन 104.9 FM। एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाई मी और होस्ट नीलम दवे, लेकिन ब्रॉट यू बाय अवर CEO वैशाली ठक्कर, अ फ्री प्लेटफॉर्म फॉर एंटायर कम्युनिटी। जी हाँ, आपने सही सुना, अ फ्री प्लेटफॉर्म जहाँ पर हमारी कोशिश होती है कि आपके जो भी इवेंट है, आपके जो भी एक्टिविटीज़ है, नॉन प्रॉफिट इवेंट है एक्टिविटीज़, उसकी जानकारी हम हज़ारों लाखों लिसनर्स तक पहुँचाएं एवरी सैटरडे ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ये आपका कार्यक्रम और आप ही से बनता है ये हमारा

कार्यक्रम। कुछ गाने आप ही के पसंद के, कुछ इंस्पिरेशनल गाने, कुछ स्पिरिचुअल, कुछ मोटिवेशनल, कुछ पेट्रोटिक गाने एंड कुछ पॉजिटिव वाइब्स के साथ ये बातें, ये कहानियाँ, ये गाने आप ही के लिए ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर।

0: तेरी है जमी तेरा आसमां। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत ये प्रार्थना के साथ इस सेगमेंट की हमने शुरुआत कर ली है। ये कार्यक्रम है आप ही के लिए, जिसका नाम है कम्युनिटी राउंडअप। यहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं कुछ मोटिवेशनल, पेट्रियोटिक और स्पिरिचुअल गाने, कुछ ऐसी बातें, हमारी कम्युनिटी की बातें, हमारी कम्युनिटी के इवेंट्स की बातें, आपकी आवाज़, जी हाँ, आपकी कंसर्न और आपकी हर अचीवमेंट को मिलती है एक नई पहचान ऑन दिस शो दैट इज़ कम्युनिटी राउंडअप। कुछ हमारी बातें होती रहेगी एंड ऑफ कोर्स अपकमिंग इवेंट्स की, लेकिन फिलहाल हमारे साथ जुड़ी हुई है अनुजा जी एंड शी इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वैष्णव संघ ऑफ डालस, हु विल गिव अस सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर अपकमिंग इवेंट। अनुजा जी, दिस इज फनीशा रेडियो, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू मैम।
1: गुड आफ्टरनून नीलम जी, कैसे हो आप?
0: बस ठीक हूँ, थैंक यू सो मच अनुजा जी फॉर ज्वाइनिंग अस। सो टेल अस समथिंग, व्हाट इज हैपनिंग विद वैष्णव संघ ऑफ डालस, व्हाट इज अपकमिंग इवेंट फॉर देम?
1: श्योर। तो हमारा वैष्णव संघ ऑफ डालस, वैष्णव आचार्य श्री द्वारकेश लाल जी महोदय जी, जो कड़ी अहमदाबाद से है, उनकी कृपा से वैष्णव संघ ऑफ डालस द्वारा जो हम मंथली उत्सव मनाते हैं वो संडे May 10th को होने वाला है। और उस उत्सव की जानकारी मैं सब लिसनर्स को देना चाहती हूँ। तो वो उत्सव संडे May 10th 4 to 6 PM तक मनाया जाएगा। और उस उत्सव में प्रसाद भी ऑफर किया जाएगा और उस उत्सव में खूब सारी एक्टिविटीज होने वाली है इस बार। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग फॉर एवरीवन। सो आर्ट कॉन्टेस्ट, एडल्ट परफॉर्मेंसेस, मदर्स डे स्पेशल इवेंट, क्योंकि उस दिन मदर्स डे भी है, तो हम मदर्स डे भी मनाएंगे। तो मैं सबको अनुरोध करती हूँ कि वो उत्सव में आए और सब आनंद ले। एक बार मैं लोकेशन देना चाहूंगी उसका,
0: प्लीज।
1: तो वो 121 और क्वाइट और मैकडरमट के इंटरसेक्शन पे रहने वाला है। और उस स्कूल का नाम है वायट एलिमेंट्री स्कूल, 8900 क्वाइट रोड, प्लेनो, टेक्सास, उसका एड्रेस है जहाँ पर हम ये सेलिब्रेट करने वाले हैं उत्सव।
0: वेरी नाइस। May 10th, वंस अगेन वी आर टॉकिंग टू वैष्णव संघ ऑफ डालस रिप्रेजेंटेटिव। May 10th को होने जा रहा है ये इवेंट, 4 to 6 PM, इट इज़ वायट एलिमेंट्री स्कूल इन प्लेनो, टेक्सास। इट्स अ मदर्स डे, ऑफ कोर्स वो भी आप बिल्कुल सेलिब्रेशन कर सकते हैं विथ वैष्णव संघ ऑफ डालस। अनुजा जी, एनी अदर अपकमिंग इवेंट्स, एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद?
1: नहीं, मैं सारे वैष्णव को बस यही अनुरोध करूंगी कि आप इसका लाभ ले, जरूर आइए और खूब खूब आनंद से हम ये उत्सव मनाएंगे
0: जी।
1: और कोई भी माहिती अगर आपको चाहिए तो मैं 2-3 नंबर देती हूँ, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो दीपेन भाई सोनी 2486787018, पारुलबेन शाह का नंबर है 2149387996, और जयश्रीबेन शाह का नंबर है 9723758243।
0: Wonderful. And it is Vaishnav Sangh of Dallas on Facebook as well. So you can follow them on the Facebook. That is Vaishnav Sangh of Dallas, जहाँ Dallas की गतिविधियाँ और Dallas की जानकारी आपको मिलेगी for Vaishnav Sangh of Dallas के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनुजा जी आपका जुड़ने के लिए, because this is a community outreach show every Saturday for entire community. Thank you so much अनुजा जी।
1: खूब खूब आभार नीलम बेन आपका भी।
0: थैंक यू।
1: जय श्री कृष्ण सबको।
0: जी बिल्कुल।

प्यारी है मुझे इस देश की जमी, बिल्कुल ऐसे बहुत सारे गाने आप सुनेंगे इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है कम्युनिटी राउंडअप। मैं हूं नीलम आपके साथ और हमारा प्रयास है, एक नम्र प्रयास हमारी पूरी कम्युनिटी को मदद करने के लिए, उनके जो भी सोशल या उनके जो भी नॉन प्रॉफिट इवेंट है उसकी मदद, उसकी प्रमोशनल ड्यूरिंग दिस आवर एंड दैट इज एवरी सैटरडे। बी द लाइट एंड दैट इज शंकरा आई फाउंडेशन गाला 2026 हैपनिंग ऑन सैटरडे May 9th, that is next Saturday, Hyatt Regency. Once again, that is Be the Light Shankara Eye Foundation Gala 2026, and they have A.R. Madhavan as a guest speaker. INT आपके लिए प्रस्तुत करते हैं Saturday, that is 16th of May, 2 PM till 6 PM भारतीय निवास में, and that is Senior Citizens Day. जी हाँ, that is INT प्रस्तुति, and you can go on 16th of May, 2 PM till 6 PM भारतीय निवास. And of course, CLPS clinic, a free CLPS picnic, not a clinic, CLPS picnic happening at Lake Dallas West Lake Park, and this is happening at once again Saturday, that is 16th of May. That is a CLPS picnic, and May 16th is Saturday, 3 PM onwards. MKPS, that is MKPS picnic happening tomorrow, May 3rd, and it is Sunday. You can go to Grapevine, and that is happening tomorrow, Grapevine Park, Grapevine Lake Park by MKPS picnic. Your vote counts, and bilkul ye hai aakhri din aapke voting ke liye, to zarur bhuliyega mat. Today is the last day to vote in our local counties. ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम की, इवेंट्स की, हमारे कम्युनिटी इवेंट्स की जानकारी हम आपके लिए लाते हैं यहाँ पर हर शनिवार की दोपहर ऑन 104.9 FM फनेशा रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर विद मी योर होस्ट नीलम। 9722355555

जमीन की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़-ए-बाप मरकज़ है।

0: हम जो पास बार ठहरे फिर ये अहद करते हैं तेरे मान की खातिर।
1: माई टाइम इक्वेरी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म ओन्ड बाय CPA सुधीर पाई, ऑफर्स इन्वेस्टमेंट एज अ सर्विस, फाइनेंशियल प्लानिंग, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, रियल एस्टेट, हाई यील्ड नोट्स एंड अदर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। फॉर फर्दर डिटेल्स विजिट mytimeequery.com और कॉल सुधीर पाई एट 972-330-2771 और ईमेल wealth@mytimeequery.com टू हेल्प यू अचीव योर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव टुडे। टॉक टू सुधीर पाई अबाउट 2025 डिजिटल एसेट or crypto fund.
2: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
3: यार मैं थक चुकी हूँ। पार्टी के पहले सफाई, फिर पार्टी, बाद में सफाई। ऊपर से आप तो कोई मदद करते हो नहीं, मेरे से नहीं होगा ये।
4: अरे यार बोला ना, लेकिन तुम्हें सुना ही नहीं। बताया ना, जहाँ पार्टी है वही खाना है, जहाँ खाना है वही पार्टी है। सिंपल।
3: मतलब
4: देख, जगह बुक करेंगे पूरे 3 घंटे के लिए और वो भी सिर्फ $250 में, और खाना पीना जो ऑर्डर करना है वो अलग से पे करके वहीं ऑर्डर कर लेंगे। अब तेरे को तेरी सफाई की पड़ी है, अब खुल के पार्टीज कर, चाहे क्रिसमस हो, थैंक्सगिविंग हो या फिर तेरे भाई का बर्थडे। नाम याद रख बस, फन पिज्जा एट कॉलोनी।
5: विजिट फन पिज्जा किचन FPK एट कॉलोनी इज नाउ ओपन फॉर डाइन इन।
6: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Panacea.
7: Aaja meri gaadi mein baith ja.
8: Baith jao? Pakka? Kal hi to teri gaadi ne signal pe dam tod diya tha.
9: Wo thoda overheating tha.
8: Thoda? Teri gaadi date pe kam, workshop ke mood mein zyada lag rahi hai.
10: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
11: इन प्लेनो।
10: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
5: आर यू लुकिंग टू ओन अ ग्लोबल रेस्टोरेंट ब्रांड? जय भवानी, एन एस्टैब्लिश्ड ब्रांड फ्रॉम इंडिया, बॉर्न इन गुजरात, इज एक्सपैंडिंग अक्रॉस टेक्सास। वी होल्ड द एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइज राइट्स ऑफ टेक्सास एंड आर इनवाइटिंग मोटिवेटेड entrepreneurs to join us in partnership with a leading hospitality group. Call Sunil at 469-468-6021 or Lee at 214-576-6439.
12: इंडिया में घर खरीदना या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना अब हुआ और भी आसान। गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो अब फ्रिस्को में। मिलिए मुंबई, पुणे, दिल्ली NCR, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद के टॉप डेवलपर्स से। सब एक ही छत के नीचे 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर कीजिए और अपने प्लान्स के हिसाब से सही प्रॉपर्टी चुनिए। आइए 9th एंड 10th मई को हयात रेजेंसी फ्रिस्को डलास में, सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक। एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री। माई स्क्वायर फीट प्रेजेंट्स सबसे बड़ा इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो।

वेलकम बैक. दिस इज KZMB 104.9 FM फनीश रेडियो पे. मैं हूँ नीलम आपके साथ. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी वार्म वेलकम. कुछ कम्युनिटी की जानकारी, कुछ नॉन प्रॉफिट इवेंट की जानकारी, कुछ इंस्पिरेशनल गाने, कुछ आप ही की पसंद के, कुछ हमारी पसंद के पैट्रियोटिक एंड स्पिरिचुअल गाने बातों के साथ एवरी सैटरडे टिल 3 PM ऑन 104.9 FM. May 14th to May 17th, you can step into a 3-day immersive journey. जी हाँ, आपकी जितने भी दिन भर की, आपकी जितनी भी जॉब की जद्दोजहद, जो भी आपकी स्ट्रेस है, इमोशनल ब्लॉक्स है, यू कैन रिकनेक्ट विथ इनर सेल्फ. कैसे? वेल, यू कैन हैव अ पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक्स गाइडेड बाई एक्सपीरियंस फैसिलिटेटर्स एंड इट इज हैपनिंग वंस अगेन ओशो यूनिवर्सल रिट्रीट में मे 14th टिल मे 17th. You can register at oshouniversal.org. Once again, that is Osho, O-S-H-O, oshouniversal.org. मैं हूँ नीलम, आपके लिए लाती हूँ ये कार्यक्रम जिसका नाम है कम्युनिटी आउटरीच की प्रस्तुति, कम्युनिटी राउंडअप. जी हाँ, एज द नेम सजेस्ट, फनीशा रेडियो ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. और यही है एक हमारा छोटा सा प्रयास हर शनिवार की दोपहर. एंड इट इज ब्रॉट यू बाय अवर CEO वैशाली ठक्कर, अ फ्री प्लेटफॉर्म फॉर एंटायर कम्युनिटी थ्रू दिस आवर. And that is every Saturday.

कुछ इंस्पिरेशनल गाने और बातें आपके लिए हम लाते हैं कार्यक्रम के दौरान हर शनिवार की दोपहर ऑन 104.9 FM फनी एशिया रेडियो। चलिए एक कहानी, अक्सर आप जानते हैं कि हम आपके लिए बहुत सारी कहानियां भी लाते हैं, कुछ इंस्पिरेशनल कहानी, और ये भी आप जानते हैं कि कुछ ना कुछ हम मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कितनी स्ट्रेस होती है। कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में कोई भी एरिया आप ले लीजिए, करियर, जॉब, घर, परिवार, बच्चे, हमेशा लगता है कि हम दौड़ते रहते हैं। एंड देन यू नो समटाइम्स यू डू लूज योर मोटिवेशन, लगता है कि पता नहीं यार क्यों करते हम सब ये कुछ, राइट? लेकिन जब ऐसी इंस्पिरेशनल कहानियाँ या बातें हम सुनते हैं तब हमें अच्छा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं पहुँचने के लिए कहीं ना कहीं हमारी मंजिल है नज़दीक में। वेल, आप जानती है कि तमिलनाडु के एक कहानी मैं आपको बताती हूँ और उसके बाद कहूँगी कि ये किन की कहानी थी। तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक साधारण परिवार, बहुत ही छोटा सा परिवार, उसमें जन्मे थे। एक लड़के ने बचपन से ही अखबार बांटने की शुरुआत कर दी थी। क्यों? ताकि वो घर पर मदद कर सके, पैसों की कमी थी। उन्हें पता था कि माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं है कि जितने वो अपने ख्वाब या सपने पूरे कर सके। स्कूल में भी ही वॉज एन एवरेज किड, लेकिन फिर भी उनकी जो जिज्ञासा थी, उनकी जो सीखने की लगन थी, वो सबसे अलग थी। और धीरे धीरे वही हार्ड वर्क ने, चाहे वो अखबार बांटने की बात हो या कोई भी और छोटा मोटा काम, पढ़ते रहे और काम करते रहे जिज्ञासा के साथ, एक लगन के साथ, वही लड़का देश का महान वैज्ञानिक बना, जिसने हमारे कंट्री के लिए, जिसने भारत के लिए मिसाइल प्रोग्राम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। इतना ही नहीं, वो हमारे देश के राष्ट्रपति भी बन गए। और सबसे अच्छी बात ये थी कि इतनी बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी उनकी सादगी जो थी, उनकी जो विनम्रता थी, वो कभी नहीं बदली थी। और वो मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। ये कहानी हमें अक्सर सिखाती है कि अगर इरादे सच्चे हो, अगर हमारे इरादे सच्चे हो, मेहनत ईमानदार हो, तो छोटी सी की हुई शुरुआत भी, कभी कभी हमें लगता है कि ये इससे क्या होगा, ये बहुत ही छोटी सी बात है, छोटी सी शुरुआत है, लेकिन वो छोटी सी शुरुआत भी आपको मंजिल तक ले जाती है। लगता है हमें कि इतनी छोटी सी बात में हम क्या करेंगे, हमें क्या मंजिल मिलेगी, लेकिन APJ अब्दुल कलाम ने यह साबित कर दिया कि शुरुआत हम्बल हो सकती है, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन वो शुरुआत के तक भी आसमान और बुलंदी पर हम जा सकते हैं। एंड दैट इज़ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।

कुछ आपकी पसंद के इंस्पिरेशनल गाने, कुछ हमारी पसंद के पैट्रियोटिक इंस्पिरेशनल स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशनल गाने। मैं नीलम प्रस्तुत करती हूँ हर शनिवार की दोपहर 2 से 3 के बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, क्योंकि जैसे कि हम अक्सर कहते हैं, ये आपका कार्यक्रम है, आप ही से बनता है। जिस कम्युनिटी आउटरीच की प्रस्तुति कम्युनिटी राउंडअप। अगर आप भी आपके जो भी इवेंट्स है जिसकी जानकारी हम तक पहुंचाना चाहे, देन प्लीज डू रीच आउट टू अस neelam@funasia.net। कभी कभार ये बातें होती है कि हमारे साथ जो भी ईमेल आते हैं, जितनी भी हमारी बातें होती है, दे मे नॉट बी एक्चुअली रजिस्टर्ड अंडर 501c3, कोई संस्था बड़ी ना भी हो, लेकिन इंडिविजुअली अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, किसी परिवार की मेडिकल इमरजेंसीज में, किसी स्टूडेंट की, इन एनी वे, देन प्लीज डू रीच आउट टू अस, बिकॉज दिस इज योर प्लेटफॉर्म, दिस इज अ कम्युनिटी प्लेटफॉर्म, इट इज फनेशिया अटेम्प्ट, अ फनेशिया इनिशिएटिव फॉर एवरी स्मॉल और अ बिग एफर्ट ऑफ कम्युनिटी, दैट इज कम्युनिटी आउटरीच की प्रस्तुति कम्युनिटी राउंड अप। कुछ इंस्पायरिंग कहानियां, कुछ इंस्पायरिंग बातें और कुछ इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी से भी हम आपको मिलवाते हैं थ्रू अवर कम्युनिटी आउटरीच यूट्यूब चैनल। जी हाँ, जिसमें मेरा प्रयास होता है कि चाहे कम्युनिटी लीडर्स हो, कम्युनिटी की कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ हो, या फिर ऑफ कोर्स वी हैव सेलिब्रिटीज एज वेल, जिससे हम कुछ सुन पाए, जिससे हम कुछ सीख पाए, एंड दैट इज ऑफ कोर्स यू कैन फॉलो अवर कम्युनिटी आउटरीच फेसबुक पेज एज वेल एज अवर यूट्यूब चैनल, दैट इज कम्युनिटी आउटरीच यूट्यूब चैनल विथ माई नेम नीलम दवे कम्युनिटी आउटरीच। और बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, यू डोंट हैव टू बी एक्चुअली रजिस्टर्ड अंडर 501c3, लेकिन अगर आपकी कोई भी ऐसी बात है, आपका कोई भी ऐसा कैंपेन है जहां पर आप अवेयरनेस लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, किसी को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, देन वेल दिस इज योर प्लेटफॉर्म एवरी सैटरडे ऑन 104.9 FM।

0: हेलो दोस्तों, मेरा नाम
1: प्रभु कुमार प्रीतम विश्वास।
2: माय मोबाइल नंबर
3: 9993
4: से ऋषिकेश,
5: लखनऊ से
6: बनारस,
7: नागपुर,
8: शिमला,
9: कलकत्ता से ऑडिशन देने के लिए आया हूँ।
10: टीवी शोज,
11: थिएटर्स,

0: सवाल ये नहीं कि मैं जीऊंगा या मरूंगा, बल्कि सवाल ये है कि किस दुनिया को बनाने वाला चलाने वाला कोई है या नहीं।
1: अगर नहीं तो मेरा मरना।
2: अरे कहना ठीक है
3: कि वो अपने बंदों की फरियाद क्यों नहीं सुनता।
1: मैं बन जाता हूं।
4: Oh, we'll call you back.
2: कि वो अपने बंदों की फरियाद क्यों नहीं सुनता।
0: I will do, ma'am.

सपनों से भरे रहे नैना, सपनों को लेकिन सच करने के लिए पहला कदम क्या होता है? अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारी कहानियाँ सुनते हैं, हम बहुत सारे गाने सुनते हैं, हमारे भी कुछ ख्वाब होंगे, हमारे भी कुछ सपने होंगे, एम्बिशंस होगी, एस्पिरेशंस होगी, राइट? लेकिन मैं अक्सर सोचती हूँ कि पहला कदम क्या होना चाहिए, लाइक यू नो, फॉर एवरी थिंग फर्स्ट स्टेप, राइट? एनीथिंग यू डू इन योर लाइफ, पहला कदम बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैं ये मानती हूँ और मैंने ये पढ़ा भी है कि सपनों को सच करने के लिए अगर पहला कदम है तो खुद पर विश्वास करना। देखिए, जब तक आपको आप पर विश्वास नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल यू थिंक दैट यू कैन अचीव समथिंग, आप कर पाएंगे, तब तक आप कुछ भी कर ले, आप कितनी भी मेहनत कर ले, कितने भी लोग आप पर यकीन कर ले, कितने भी आपको आपके पेरेंट्स बड़े बड़े लंबे लंबे लेक्चर दे दे मोटिवेशनल पर, आपके दोस्त आपको बता दे कि नहीं आगे बढ़ना चाहिए, ये करो वो करो, लेकिन जब तक आपको आप पर विश्वास नहीं होगा, जब तक आपको आपकी स्किल सेट पर यकीन नहीं होगा, फेथ नहीं होगा, तब तक आपके ख्वाब सच नहीं होंगे। यह है प्रस्तुति हमारी, आप ही के लिए, हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए, हर शनिवार की दोपहर, जिसका नाम है कम्युनिटी राउंडअप। इसी गाने के साथ मैं नीलम लेती हूँ आप सभी से आज्ञा, अनुमति, इजाज़त। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुति करते रहेंगे हम हर शनिवार ऑन 104.9 FM, ब्रॉट टू यू बाय अवर CEO वैशाली ठक्कर।

0: बट नो कैश लिक्विडिटी। हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी। डायग्नोसिस क्लियर है, आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी। फ्रॉम टैक्सेस टू सीएफओ एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन। कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com। प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज।
1: Ready to turn up the heat? Introducing our Achari Paneer Pizza, where bold Indian spices meet cheesy perfection. Think tangy pickle flavors, a dash of chili, and soft paneer cubes soaking up every bit of that spicy magic, all on a hot, fresh crust straight from the oven. It's not just a pizza, it's a flavor explosion with every bite. If you dare to try something bold, come grab your Achari Paneer Pizza today, only at Fun Pizza Kitchen, where tradition meets the oven. Fun Pizza Kitchen, flavor that fires you up.
2: Like to dress up for parties and special occasions? Indian Attire in Frisco has a phenomenal collection of lehengas, saris, bridal wear, men's and kids wear.
3: Traditional, ethnic wear as well as fusion. At Indian Attire, you will find designer wear lehengas at 25% off during their festive sale.
2: No need to shop around. Just head to Indian Attire of Preston and Gaylord in Frisco to find your perfect attire. For details, visit IndianAttireFrisco.com.
4: सब कुछ साफ रख सकते हो
5: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
6: क्योंकि ये कौन बोला?
5: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
7: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 9728772500।
8: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
3: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
13: Hi, this is Madhavan and you're listening to me on my official radio station, Phanesha Radio.

0: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस। ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क। ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न। या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर।
1: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा।
0: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए।
2: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है। नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं, रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में।
3: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338। The SBA लोन एक्सपर्ट्स, फैसला क्लैरिटी के साथ।
4: Discover the magic of authentic Indian vegetarian cuisine at Sarvana Bhavan, the world's number one in South Indian delights. Their menu, overflowing with veggie surprises cooked to perfection. After serving in Irving and Plano, ping them at 469-362-7755 or visit sarvanabhavanplano.com. Sarvana Bhavan, all day flavor play.
3: All locations are open daily from 11 a.m. to 10 p.m. with extended hours on weekends from 8:30 a.m. to 10:30 p.m.
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
6: कुछ भी नहीं, Oura Debt Relief will do it for us.
5: क्या मतलब?
6: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
6: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
5: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
7: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
8: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डालस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। देसी मंडी, पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डालस।
9: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
10: चिकन बनाना
11: ब्रो, बनाना नहीं, बनाना मतलब मेक द चिकन राइट।
2: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
12: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है। पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है। और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8683464611 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए।
13: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिसर्च में वेरी।
14: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
15: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, बट तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
14: कैसे?
15: पेज 3 ईटरी?
14: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
15: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
14: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
16: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट। My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
9: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.

0: playing the best tunes in all of Dallas. Fun Asia Radio, 104.9 FM.
1: डैड को लगता है मैं गाने के साथ लिप्स मैच नहीं कर सकता. He's wrong. Watch me.

0: समझे हैं?
1: बढ़िया।
2: The Heartbeat of Dallas, Fun Issue Radio, 104.9 FM.

और जब तुम उसकी बारात में क्रैश लैंड हुई, टल्ली हो गए। उस दिन कॉलेज वाले प्यार से फॉरएवर वाला प्यार हो गया तुमसे, बाय गॉड।

वेलकम, नमस्कार, खुशामदीद, फनेशिया रेडियो 104.9 एफएम पर मैं मधुलिका आप सभी का जस्ट चिल में करती हूँ हार्दिक स्वागत। वेल, जस्ट चिल में वैसे तो आपसे मिलती हूँ मैं एवरी सैटरडे एंड संडे 10 AM to noon होता है मेरा और आपका साथ, पर आज है ये हमारा बोनस शो, तो आपको दूंगी मैं अपना साथ शाम 6 बजे तक। स्टूडियो का नंबर रखें याद 9722355555। सुनेंगे कुछ मेरी और कुछ आपकी पसंद के गाने एंड साथ ही साथ करूंगी आपके साथ कुछ बातें शेयर। सो वेल, लेट्स स्टार्ट विद दिस वन ऑफ माय फेवरेट। आई डू होप यू विल एंजॉय दिस वन।

मैं थोड़ी सी लिफ्ट तो नहीं करा सकती, बट यादें आपको जो हैं कुछ चीज़ें याद करा सकती हूँ। जैसे कि वीकेंड है तो ग्रोसरी कर लें, और अगर वीकेंड पर बिजी हैं तो वीकडे में कर लें, एंड अगर वीकडे में ग्रोसरी कर रहे हैं तो ग्रोसरी के साथ साथ पेट पूजा भी कर सकते हैं अगर आप जाएंगे देसी मंडी, बिकॉज वहाँ मंडे और वेंसडे होता है बाय वन गेट वन फ्री ऑन बिरयानी नूडल्स एंड फ्राइड राइस। ट्यूजडे एंड थर्सडे जाएंगे तो यू कैन बाय वन गेट वन फ्री ऑन डोसाज एंड चाट्स। सो बेसिकली एवरी वीकडे 5 PM टू 9 PM देसी मंडी के पास हैं आपके लिए ये ऑफर्स। नो मिक्स एंड मैच इज पॉसिबल, टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई। मोर फ्लेवर्स मोर सेविंग्स ऑल वीक लॉन्ग, दैट्स देसी मंडी फॉर यू ऑल, लोकेटेड इन लुइसविल टेक्सास।

Well, you're listening to 104.9 FM, Fun Asia Radio, bringing the community together. This is Madhulika, lekar aayi hoon Just Chill, jahan karte hain hum, as the name suggests, Just Chill. You know, kabhi kisi anjaan ko smile karke dekho, smile dekar dekho, aapka din bhi ban jayega aur unka bhi. Hai na maze ki baat? Aaj ka goal, I would say, kisi ek insaan ko bina wajah khush kar do. Aap manenge कि कल मुझे फ़ोन करके बताएंगे कि सच में ये करने में कितना मज़ा आया. अच्छा, लाइफ का एक सिंपल रूल रखना चाहिए कि कम कंप्लेंट करो और ज़्यादा अप्रिशिएट करो. हाउ अबाउट दैट, राइट?

That was Hulle Hulare sung by Rajeshwari. And yes, अगला गाना प्ले करूँ उसके पहले आपको बताना चाहूंगी कि आपको रखना है एक नाम याद, एंड वो नाम है उमर ख्वाजा. जी हाँ, अगर आप इन्वॉल्व हो जाते हैं कोई कार या ट्रक एक्सीडेंट में या कहीं गलती से कोई स्लिप या फॉल इंसिडेंट में, तो ना आप अटर्नी उमर ख्वाजा को कॉल करें, एज ये आपका केस भी लड़ेंगे, इंश्योरेंस कंपनी से डील भी करेंगे, एंड यू डू नॉट हैव टू पे देम अंटिल यू विन. सो एक फ्री कंसल्टेशन के लिए आप उन्हें कॉल करें. द नंबर इज 4693005046, और यू कैन विजिट अटर्नी ओमार.com. That's attorneyomar.com.

That was Leslie Lewis and Hariharan singing Kai Zala. And yes, अगला गाना प्ले करूं उसके पहले बताऊं आपको कि कई बार होता है कि यहाँ बैठे बैठे मन होता है कि यार इंडिया में कोई प्रॉपर्टी खरीद ली जाए. अब कैसे खरीदें, यू नो, ठीक से देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे. मे बी फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़, या यू वॉन्ट समथिंग लाइक रेडी टू मूव इन, मे बी फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर सिबलिंग्स, फॉर एनी वन. एंड यहाँ बैठे बैठे कैसे हो ये काम. तो ये काम हो गया है आसान गृह प्रवेश के साथ. जी हाँ, गृह प्रवेश .com brings you the India Property Expo happening May 9th and 10th, यानी कि अगले वीकेंड होगा ये, at the beautiful Hyatt Regency Frisco, Dallas. You know, you can meet top builders from cities जैसे कि हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई, पुणे एंड दिल्ली NCR. And they will be showcasing over 200 premium projects from luxury apartments and villas to plots and farmland. तो भाई हो गई ना बात आपकी सॉल्व. सो वेदर यू लुकिंग फॉर रेडी टू मूव होम्स और एक्साइटिंग न्यू लॉन्चेस, इन्जॉय एक्सक्लूसिव एक्सपो, ओनली डील्स डिजाइंड जस्ट फॉर यू. जी हाँ, डोंट जस्ट ड्रीम इट, यू कैन ओन इट नाउ. रजिस्टर नाउ एट grahpravesh.com एंड टेक द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स योर ड्रीम होम इन इंडिया, राइट?

0: Attention business owners, what if your everyday expenses could actually make you money? That's right, with Connecting America, you can turn your business expenses into a powerful stream of income via a unique insurance product. If you are looking to boost your bottom line, they got the strategy that works for you. Plus, they help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less.
1: Don't wait. Call James at 321-888-7345 today or visit ConnectingAmericaFinancials.com and discover how to turn your daily expenses into income. Connecting America, where smart business owners turn costs into cash.
2: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट कभी तीखा सा किक कभी मीठा सा सुकून
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स द फ्लेवर लाउंज हर बाई सुपर हिट
4: तुमने फिर कार्ड यूज किया
5: करना पड़ा फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में
4: पर मैंने अभी चेक किया हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया कैसे मैनेज होगा सब
5: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं
1: हर घर की यही कहानी पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
6: Babaji Biryani is in Plano, bigger, better and the best now serving everyday lunch specials. Thalis, biryani combos and refreshing Irani chai with delicious Indian snacks. Freshly made sweets and bakery items. Please walk into Babaji Plano or visit babajiplano.com.
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
7: Kya matlab?
8: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
8: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: Ab to karna hi padega, madam.
9: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: Oh, haseena zulfon wale jaane jahan.
11: सिर्फ हवा में नहीं स्टाइल में भी उड़नी चाहिए बॉलीवुड स्टाइल लेयर्स हो सॉफ्ट कर्ल्स हो या कंप्लीट हेयर मेकओवर अमरीन सैलून गिव्स यू दैट परफेक्ट हेयर स्टाइल जो आपकी पर्सनालिटी को करे हाईलाइट बिकॉज ग्रेट हेयर डजंट जस्ट चेंज योर लुक इट चेंजेस योर कॉन्फिडेंस मेंशन फन एशिया एंड गेट 10% ऑफ ऑन योर हेयर स्टाइल सर्विस Call Amreen at 214-909-6601.
1: Or visit their Instagram, Amreen Salon, located at Allen and Frisco.
11: Amreen Salon, style that moves with you.
12: Hi, this is Akshay Kumar, and you're listening to Funasia Radio.
13: The Dill of Dallas. Heart to heart.

Well, that was a Gehra Hua taken from the movie Dhurandhar. This is Madhulika, lekar aayi hu Just Chill, jahan karte hain hum, as the name suggests, Just Chill. Well, अगला गाना प्ले करूँ उसके पहले आपको बताती हूँ कि यू नो जब आप सपने देखते हैं, जब आप ड्रीम्स करते हैं, सो आपको अपनी ड्रीम्स में सिर्फ उन लोगों को देख पाते हैं जिन्हें आप पहले से रियल लाइफ में मिले हुए हैं. या आपका ब्रेन कभी भी नथिंग इमेजिन नहीं कर सकता है. मतलब आप ट्राई करके देखिए, ask your brain to imagine nothing. कुछ ना कुछ आपको दिखेगा, कुछ ना कुछ you will imagine. You can never imagine nothing. And एक और मज़े की बात, जब आप किसी को पसंद करते हो ना, उनका नाम सुनते ही heart rate जो है change हो जाता है. कभी try करके देखिएगा.

Well, that was the title track, Zalima. Actually, it's title track नहीं है, रईस मूवी से गाना है ये, and that was Zalima. Well, you know, अब एक आ रहा है आपके लिए giveaway. Giveaway आ रहा है from the Flavor Lounge because this is your chance to win a दाल मखनी ढाबा स्टाइल चिकन करी. दोनों में से कोई भी एक चीज आप जीत सकते हैं at the Flavor Lounge restaurant जो कि located है Preston Road, Frisco में. Well, this giveaway is valid for dine-in only. तो आपको वहाँ जाकर खाना खाना पड़ेगा and आपको यह दाल मखनी या ढाबा स्टाइल चिकन करी मुफ्त मुफ्त मुफ्त. सो यस, एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा दैट मेक श्योर यू हैव नॉट वन दिस गिव अवे ऑन एनी अदर शो एट फनेशिया इन द लास्ट वन मंथ. यू कैन ओनली बी अ विनर वंस अ मंथ हियर. सो द स्टूडियो नंबर इज 972-235-5555. अच्छा, अब मैं एक गाने का ट्रांसलेशन दे रही हूँ आपको एंड आपको मुझे फोन करके बताना है कि मैं कौन से गाने की बात कर रही हूँ. छोटा सा ट्रांसलेशन दूंगी कि वैसे बहुत ही आसान है, सो यू शुड बी एबल टू गेस इट. गाना भी काफ़ी कुछ हिट हुआ था. सो द ट्रांसलेशन इज माई हार्ट हैज सेड दिस टू माई ओन हार्ट. माई हार्ट हैज सेड दिस टू माई ओन हार्ट. तो बताइए कि मैं कौन से गाने की बात कर रही हूँ और अगर आपने सही जवाब दिया तो आप जीत जाएंगे गिव अवे कमिंग फ्रॉम द फ्लेवर लाउंज.

0: Well, that was the title track. तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया, एंड मैंने भी शायद उलझा दिया आप लोगों को. मैंने सोचा था बड़ा आसान सा सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन काफी लोग ट्रिक हो गए हैं. लेकिन अभी हमारे पास एक लिस्नर है जो हमें जवाब देंगे. लेकिन उसके पहले मैं आपको सवाल जो है दोहरा देती हूँ. मैंने पूछा था आपसे कि मैं एक बॉलीवुड गाने की ट्रांसलेशन दे रही हूँ इंग्लिश में, एंड यू हैव टू गेस विच सॉन्ग आई एम टॉकिंग अबाउट. और मैंने कहा था My heart has said this to me or to my own heart. So, which song am I talking about? Hi, you're live on air.
1: Yeah, hi, it's Anushka. And the song is Dil Ne Ye Kaha Hai Dil Se.
0: And the movie name?
1: Dhadkan.
0: Awesome, Anushka. Well done. Very well played. And yes, bilkul sahi jawab. Have you seen this movie?
1: Thank you.
0: Have you seen this movie?
1: Yes, as I have many times.
0: All right. So, tabhi aapko aa gaya ye sahi jawab, ha? So, I'm going to play this song for our listeners. Anushka, I'm going to take you off air. I'll take some details from you. And thank you so much for participating. Aap jana nahi, aap hold karna, please.
1: Haan ji, okay, thank you.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: अभी मजा आएगा ना भिड़ो
3: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे
4: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
5: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
6: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
7: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender and MLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Laptop, charger, coffee, phone, oof. ऑफिस का चेकलिस्ट यार खत्म ही नहीं होता
9: एग्जैक्टली exactly. और ऊपर से व्हाट टू वेयर का स्ट्रेस अलग
8: ओ गॉड पहले आउटफिट फिर उसके बाद उसके साथ क्या पहनना है
9: आहा आई कीप दैट पाथ सिंपल
8: कैसे
9: ज्वेलरीज जो ऑफिस डिनर वीकेंड हर दिन हर ओकेजन को सूट करे
8: ओ दैट काइंड ऑफ ज्वेलरी
9: या कैरेट लेन काइंड
10: Lightweight, real diamonds, your everyday fine jewelry. Made to be worn, not stored. Carat Lane, a Tata product. Now open in Frisco.
11: घर की याद नहीं आई तुझे जब से?
12: आती है यार, बहुत आती है. इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ.
9: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं. विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट.
12: सच में? बिल्कुल घर जैसा
9: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुल्चास विद ग्रेवी बटर चिकन एंड मेनी मोर लोकेटेड इन अर्विंग देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट चंडीगढ़ वाले टेस्ट दैट फील्स लाइक होम
13: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं
8: अरे सुन ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वाले

0: सच में बिल्कुल घर जैसा।
1: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुल्चास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर। लोकेटेड इन इरविंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट। चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम।
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
1: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
8: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
1: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
9: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
10: इन प्लेनो।
9: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
11: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस। ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क। ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न। या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर।
12: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा।
11: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए।
1: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है। नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं। रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में।
13: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338। The SBA Loan Experts, फैसला क्लैरिटी के साथ।
14: Get ready for the smoky, flavorful goodness of Tandoori Chicken Pizza. Perfectly marinated Tandoori Chicken, mildly spiced, tender and bursting with aroma. Layered over creamy cheese and a golden crust. It's the perfect balance. Not too spicy, not too mild. Just right for every flavor lover. Taste the magic of the tandoor on your favorite sliced Tandoori Chicken Pizza. Only at Fun Pizza Kitchen. Fun Pizza Kitchen, where every slice tells a story.
15: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट। व्हेन इट कम्स टू टैक्सेस, ओनली वन नेम पॉप्स अप, एजी फिनटैक्स। दिस टैक्स सीजन, फॉर अ स्ट्रेस फ्री टैक्स फाइलिंग, फाइल स्मार्ट, फाइल इजी विद ग्रंथी टैक्स प्रोस, एन एसोसिएट ऑफ एजी फिनटैक्स। साथ ही साथ आपका रिफंड मैक्सिमाइज करना और आपका फाइनेंशियल फ्यूचर प्लान करना, दैट्स आवर कमिटमेंट। तो इस बार डिले क्यों? कॉल 972-618-8555 और विजिट agfintax.com। ग्रंथी टैक्स प्रोस, पावर्ड बाय एजी फिनटैक्स। प्लान टुडे, प्रॉफिट टुमारो।
16: Hi, this is Saif Ali Khan. You are listening to Fun Asia Radio.
17: The Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.

0: ऑलराइट, वेल आई वाज टेकन फ्रॉम टू स्टेट्स एंड मैंने पूछा था आपसे एक सवाल. मैंने आपको एक ट्रांसलेशन दी थी कि आपको मुझे बताना है कि द वर्ल्ड हैज नेवर सीन कलर्स दिस बोल्ड एंड फियरलेस. एंड मैं कौन से गाने की बात कर रही हूँ. सो वी डू हैव अ लिसनर ऑन एयर विद अस. हाय, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: हाय हाय मधुलिका,
0: हाय, हाउ आर यू?
1: गुड, हाउ आर यू?
0: आई एम डूइंग ग्रेट. सो व्हाट्स योर नेम?
1: सुलोचना.
0: ऑलराइट सुलोचना, तो बताइए कौन से गाने की बात हो रही है.
1: ये बेशर्म रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने, फ्रॉम पठान.
0: बहुत जल्दी पकड़ लिया. एंड यस, बिल्कुल सही जवाब आपने जीत लिया चंडीगढ़ बाइट्स का ये गिव अवे. वैसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोई कलर बेशर्म कैसे हो सकता है.
1: मुझे भी नहीं पता पर गाने में.
0: हाँ, कई बार जब आप गाने सुनते हो ना, यार रंग ने क्या बिगाड़ा है, रंग तो बेचारा रंग है. नहीं.
1: सही बात है.
0: All right, Sulochna, I'm gonna take you off air.
1: राइटर को पकड़ना पड़ेगा.
0: जी बिल्कुल. Right, so I'm gonna take you off air, take some details from you while I'm gonna play this Besharam song for all our listeners over there. All right, hold on.
1: Thank you.

Yes, that was Hame To Loot Liya, and that was taken from the movie Pathaan. And yes, the next song is again one of my favorite, and it's a song request coming from Shweta. Shweta, thank you so much for tuning in and for calling in. The studio number once again is 972-235-5555. And Shweta का ये कहना था कि इस गाने पर उन्होंने दबा के डांस किया था अपनी फ्रेंड की शादी में, एंड वहीं पर उनको अपने जो ये अब जो हस्बैंड है वो मिले थे. सो मज़े की बात है ना. सो वेल, ऐसे ही कुछ और अगर आपको बातें शेयर करनी है, कोई गाने सुनने हैं, कोई डेडिकेशन है, कोई सेलिब्रेशन है, देन द स्टूडियो नंबर इज़ 972-235-5555.

was taken from बरेली की बर्फी एंड द नेक्स्ट सॉन्ग वेल ये भी बड़ा ही प्यारा सा फन नंबर है एंड आई एम श्योर यू विल ऑल एंजॉय सैटरडे इवनिंग विद दिस फन फन सॉन्ग.

0: Hi, I'm Vijay Karthik. I've served as a global C-suite executive, led thousands of employees, advised boards, and earned industry recognition for innovation and leadership. My career spans decades of responsible governance, strategic planning, and delivering results at scale. That level of experience is rare in local government. Fisco deserves its most qualified leader, someone prepared from day one. Vote Vijay Karthik for Fisco City Council Place 5. For more information, you can check out my website at www.vjforfisco.com. This is Vijay Karthik, and I approve this ad.
1: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
2: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
3: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
4: Discover the magic of authentic Indian vegetarian cuisine at Sarvana Bhavan, the world's number one in South Indian delights. Their menu, overflowing with veggie surprises cooked to perfection. After serving in Irving and Plano, ping them at 469-362-7755 or visit sarvanabhavanplano.com. Sarvana Bhavan, all day flavor play.
5: All locations are open daily from 11 a.m. to 10 p.m. with extended hours on weekends from 8:30 a.m. to 10:30 p.m.
6: सब कुछ साफ रख सकते हो,
7: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
8: क्योंकि ये कौन बोला?
7: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
9: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 9728772500।
10: यार मैं थक चुकी हूँ, पार्टी के पहले सफाई, फिर पार्टी, बाद में सफाई, ऊपर से आप तो कोई मदद करते हो नहीं, मेरे से नहीं होगा ये।
11: अरे यार बोला ना, लेकिन तुम्हें सुनना ही नहीं। बताया ना, जहाँ पार्टी है वहीं खाना है, जहाँ खाना है वहीं पार्टी है, सिंपल।
10: मतलब
11: देख, जगह बुक करेंगे पूरे 3 घंटे के लिए, और वो भी सिर्फ $250 में, और खाना पीना जो ऑर्डर करना है वो अलग से पे करके वहीं ऑर्डर कर लेंगे। अब तेरे को तेरी सफाई की पड़ी है, अब खुल के पार्टीज कर, चाहे क्रिसमस हो, थैंक्सगिविंग हो, या फिर तेरे भाई का बर्थडे। नाम याद रख बस, Fun Pizza at Colony.
5: Visit Fun Pizza Kitchen. FPK at Colony is now open for dine-in.
12: Goodness is a beautiful thing, and good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadqa and donation. Visit siutna.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 non-profit organization.
13: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, Phonasia 104.9 FM.

इस गाने से ना मुझे ये बात याद जरूर आती है कि कई बार हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, वो ऑटो पायलट में चला जाता है। या तो आप हाँ हाँ हाँ हाँ बोल रहे होते हैं कोई बात को, या कोई बात को ना ना ना ना बोल रहे होते हैं, एंड जब हाँ भी बोलना होता है तो ना बोल देते हैं, राइट? सो ब्रेन कभी कभी डेफिनेटली ऑटो पायलट पर चला जाता है, एंड स्पेशली जब कोई कंटिन्यूसली बोल रहा हो ना, तो आपको लगता है यार ख़त्म करो बात। एंड इसीलिए लोग अक्सर येस बोल देते हैं, क्योंकि वो पोलाइट भी लगना चाहते हैं, एंड हाँ ठीक है, दुनिया का सेफेस्ट रिप्लाई है, कॉन्टेक्स्ट चाहे कुछ भी हो। सो कई बार ऑटो पायलट में आप हाँ या ना बोल देते हैं विदाउट रियली थिंकिंग टू मच इनटू इट।

That was a twist taken from the movie Love Aajkal. अच्छा आपको पता है कि वेट करना बड़ा भारी लगता है, स्पेशली अगर आप एलिवेटर का वेट कर रहे हो तो यू फील कि यार ये आ ही नहीं रहा है. शायद इसीलिए यू नो बिल्डिंग्स में एलिवेटर्स के पास मिरर्स लगाए जाते हैं ताकि आप डिस्ट्रैक्ट रहें, आप खुद ही को यू नो चेकिंग आउट कि हाँ भाई ठीक तो लग रहे हैं, कैसा दिख रही हूँ, यू नो. सो इसीलिए मिरर्स कई बार लगाए जाते हैं नियर द एलिवेटर्स कि आपको जो वो वेट है वो बहुत लंबा ना लगे. या फिर अगर आप बिज़ी रहते हैं, जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप कोई रेस्टोरेंट में गए हैं एंड थोड़ा सा वेट है तो दे गिव यू द मेन्यू टू लुक एट सो दैट यू गेट बिज़ी यू नो लुकिंग एट द मेन्यू टू डिसाइड भाई ऑर्डर क्या करना है. या वो एक बच्चों को कार्ड दे देते हैं ना कलर करने के लिए सो दैट वो भी इंगेज रहें और आपको परेशान ना करें. सो भाई अनसर्टेन वेट जो है ना वो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है. इसीलिए आपको ये टाइम भी दिया जाता है कि इट विल टेक यू यू नो 10 मिनट्स, इट विल टेक यू 20 मिनट्स, सो दैट यू नो दैट हाउ मच टू एक्सपेक्ट बिफोर यू गेट अ सीट. सो अनसर्टेन वेट इज़ ऑलवेज, इट ऑलवेज फील्स लॉन्ग.

0: बेकरार।
1: Well, that was अनामिका singing कहीं करता होगा वो मेरा इंतजार। Well, मैं इंतजार कर रही हूँ इस अगले गाने को प्ले करने का, बिकॉज ये वन ऑफ माई फेवरेट्स हुआ करता था, अभी भी है। दिस वॉज यू नो अर्ली 2000 में आया था। इट वॉज अ अल्टीमेट पार्टी एंथम, यू नो डी जे इस गाने को ज़रूर प्ले अभी भी करते हैं। एंड दिस एनर्जेटिक ट्रैक, यू नो इसको कंपोज किया था जतिन ललित ने, एंड आवाज़ है सोनू निगम एंड अलका याग्निक की। सो वेल, without making you wait any further, let's hear it.
2: Yeah, yeah. She's the girl I want, she's the one I love, she's sent to me from the heaven

0: Economics Hangry.
1: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
2: इंडिया में घर खरीदना या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना अब हुआ और भी आसान। गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो अब फ्रिस्को में। मिलिए मुंबई, पुणे, दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद के टॉप डेवलपर्स से। सब एक ही छत के नीचे 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर कीजिए और अपने प्लान्स के हिसाब से सही प्रॉपर्टी चुनिए। आइए 9th एंड 10th मई को हयात रेजेंसी फ्रिस्को डलास में सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक। एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री। माई स्क्वायर फीट प्रेजेंट्स सबसे बड़ा इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो।

गुड इवनिंग एवरीबडी, दिस इज योर आरजे एजे इन द स्टूडियो और आज मैं हूं आपके साथ शाम 6 से 9 बजे तक। तो अगर आपको अपने फेवरेट गाने सुनने हैं या मुझसे कोई बातें करनी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं स्टूडियो के नंबर पर विच इज 972 255 and 5555। अगेन आज का छोटा सा एक कॉन्टेस्ट हम खेलेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा आपके फेवरेट क्रश के बारे में। अगर आपने मुझे बताया कि आपके फेवरेट क्रश की अच्छी सी क्या स्टोरी है सो मे बी यू कैन विन अ फ्री लंच विद द आरजे ओवर हियर। और जब तक के लिए मैं आपके चलाऊंगा फेवरेट गाने। सो अगर आपको कुछ रिक्वेस्ट करनी है सो प्लीज कॉल मी ऑन 972 235 5555। जब तक के लिए बूम बूम फ्रॉम नाजिया हसन।

आई लव द एनर्जी आई रिसीव फ्रॉम माई लिसनर्स. अभी नेहा ने कॉल किया एंड हर फेवरेट सॉन्ग इज रंग दे फ्रॉम दुरिंदर. सो दिस वन गोज आउट ओनली फॉर यू नेहा.

अच्छा लेडीज एंड जेंटलमैन, द नेक्स्ट सॉन्ग विच इज कमिंग अप इज फॉर समबडी हु आर वेरी स्पेशल फॉर अस, जो हमें हर दफा सुनती हैं और हर दफा गाना रिक्वेस्ट करती हैं। आई लव हर एनर्जी, आई लव हर वॉइस, एंड दिस वन फ्रॉम गोलमाल इज गोइंग आउट ओनली फॉर मरियम।

मेरे स्टूडियो की लाइन बिल्कुल खाली है और मुझे कोई कॉल नहीं कर रहा है। सो अगर आप अपने फेवरेट गाना सुनना चाहते हैं अगेन तो कॉल कीजिए 972-235-5555 पर। और बात करते हैं ड्रीम होम मॉर्गेज की, हु आर लाइसेंस्ड ओवर ऑल 50 स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। दे ऑफर्ड यू टेलर मॉर्गेज सॉल्यूशन। अगर आपको कोई मॉर्गेज सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज कॉल कीजिए उनको 972-245-5625। आई रिपीट 972-245-5626। और मैं वेट कर रहा हूँ आपकी कॉल का स्टूडियो में, अगर आप अपने फेवरेट गाना सुनना चाहते हैं और अपनी शाम को और ज़्यादा स्पेशल बनाना चाहते हैं तो।

इंटरेस्टिंगली जो अगला सॉन्ग आपके सामने आ रहा है वो 16 साल पहले का जावेद जाफरीज क्लासिक है जो राहुल ने रिक्वेस्ट किया है. द नेम इज द सॉन्ग ऑफ द नेम द क्या बोल रहा हूँ द नेम ऑफ द सॉन्ग इज मुंबई एंड दिस वन गोज आउट फॉर यू राहुल.

0: तनु का लेख संग पेपरों का रेख संग
1: एवरीथिंग परफेक्ट संग अभी लेवे भाई एक संग
2: कोर्ट में अगर जाएगा तो 20 साल तक थम्बा लॉ एंड ऑर्डर से तो पांडू भाई का हाथ है लंबा
0: नेता
2: अभिनेता या हो कोई बिल्डर भाई को लेकर सुपारी करवाता है मर्डर
0: हाथ में उसका पावर है सब उसका आगे झुकता उसका खोपड़ी सनक गया तो पूरा मुंबई रुकता।
3: अच्छा जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल पे जख्म फ्रॉम धुरेंद्र जो कि रिक्वेस्ट किया है काशिफ साहब ने। सो काशिफ साहब अगर आप हमें सुन रहे हैं दिस वन इज गोइंग आउट स्पेशली फॉर यू।

अच्छा जी, ये तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, ये जो अगला गाना मैं प्ले करने वाला हूँ, दिस इज़ फ्रॉम द मूवी रॉक स्टार। मेरी पर्सनल लिस्ट का टॉप गाना है जो कि रिक्वेस्ट किया है सैम साहब ने। सो सैम की रिक्वेस्ट पे वी गो टू रॉक स्टार, कंपोज बाय ए आर रहमान एंड मोहित चौहान। दिस वन गोज आउट फॉर यू मिस्टर सैम।

0: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम. वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डैलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे. नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह. प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी. देसी मंडी पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डैलस.
3: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
4: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में.
3: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
4: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं.
5: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता. Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
6: Ready to turn up the heat? Introducing our Achari Paneer Pizza, where bold Indian spices meet cheesy perfection. Think tangy pickle flavors, a dash of chili and soft paneer cubes soaking up every bit of that spicy magic, all on a hot, fresh crust straight from the oven. It's not just a pizza, it's a flavor explosion with every bite. If you dare to try something bold, come grab your Achari Paneer Pizza today, only at Fun Pizza Kitchen, where tradition meets the oven. Fun Pizza Kitchen, flavor that fires you up.
7: Like to dress up for parties and special occasions? Indian Attire in Frisco has a phenomenal collection of lehengas, saris, bridal wear, men's and kids wear.
8: Traditional, ethnic wear as well as fusion. At Indian Attire, you will find designer wear lehengas at 25% off during their festive sale.
7: No need to shop around. Just head to Indian Attire of Preston and Gaylord in Frisco to find your perfect attire. For details, visit indianattirefrisco.com.
9: मुझे कोई ट्रैक करे, मुझे बहुत अच्छा लगता है. मुझे अपनी प्राइवेसी का कोई चिंता नहीं बाबा.
10: अगर आप इनमें से नहीं है तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिसे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं. Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ privacy और protection का भी बड़ा ध्यान रखता है. कॉमन एक, सॉफ्टवेयर एक. Zoho One, get your free trial at zoho.com/one.
11: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
12: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
11: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
12: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट. Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
13: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.

हाँ जी, तो ब्रेक पे जाने से पहले हमें एक रिक्वेस्ट आई थी सुमित जी की, जिन्होंने अपनी पसंद का गाना जिसका नाम था बड़ी बी, पहले तो मैंने इसको गूगल किया कि ये है किधर, और गाना मुझे बहुत पसंद आया, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को सुनाऊँ, शायद आपको भी बहुत पसंद आए। सुमित जी, दिस वन गोज आउट फॉर यू ओनली।

अच्छा जी, तो आगे चलते हैं और बात करते हैं मोरानो कंस्ट्रक्शंस की, जो कि कहते हैं कि वो आपके घर का हर काम बहुत ही कम कीमत पे कर सकते हैं, चाहे वो कारपेट चेंज करना हो या अस्सर नौ घर बनाना हो, मीन्स ग्राउंड अप कंस्ट्रक्शन। यू कैन कॉल देम ऑन 4699701547, आई रिपीट 4699701547। और उसी के साथ बात करते हैं सुहेल साहब की। तो सुहेल एंड मरियम इज अ कपल जो हमें बहुत ही शौक से सुनते हैं और जब भी कॉल करते हैं बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो सुहेल एंड मरियम, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस एंड शावरिंग अस विथ लव। दिस वन इज गोइंग आउट फॉर योर रिक्वेस्ट ओनली।

हाँ जी, सो दिस वन वाज फॉर सोहेल एंड मरियम, जो कि हमारे एक्टिव लिसनर्स हैं और जब भी फोन करते हैं बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत ही ज्यादा अपना लव शावर करते हैं। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हसन जी की, जिन्होंने अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट धमस्कंदर बाय द लेजेंडरी नुसरत फतेह अली खान साहब रिक्वेस्ट किया है। सो दिस वन गोज आउट फॉर यू मिस्टर हसन।

हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं शाम के साथ और बात करते हैं तंदूरी फ्लेम्स की। तंदूरी फ्लेम्स इज लोकेटेड इन गार्डलैंड विद द डेस्टिनेशन ऑफ स्पाइस लवर्स। अगर आप तंदूरी फ्लेवर्स ट्राई करना चाहते हैं तो गूगल कीजिए उनकी गार्डलैंड लोकेशन को एंड स्टॉप बाय फॉर सम अमेजिंग बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स इन योर माउथ। दे हैव फ्रेश नान, वेलवेट करीज एंड अमेजिंग फूड आउट देयर। और जाते ही रेफर जरूर कीजिएगा फनीशिया रेडियो को। और इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली रिक्वेस्ट पे जिसका नाम है लाल परी। रिक्वेस्ट किया है सलमान साहब ने और वो भी माशाल्लाह से गार्लैंड से।

हाँ जी, आखिरी 10 मिनट बिफोर वी गो फॉर द ब्रेक, सो अगर आप अपना फेवरेट गाना रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज कॉल कीजिए 972-235-5555, और ये नंबर डायरेक्ट रीच करेगा मेरी लैंडलाइन पे और मैं आपका गाना प्ले करूंगा यहाँ स्टूडियो में टू मेक योर इवनिंग मोर स्पेशल। चलते हैं दोबारा से मुरानो डेवलपर्स के बारे में। मुरानो प्रॉपर्टीज वाले कहते हैं कि दे कैन फिक्स योर हाउस, अपग्रेड योर हाउस और दे कैन बिल्ड अ हाउस फॉर यू। देयर नंबर इज 4699701547। तो अगर आपको अपना कारपेट चेंज करना है, किचन बुरा लग रहा है, बाथरूम रिमॉडल करवाना है, सो रीच आउट टू देम एंड सी वॉट दे कैन डू फॉर यू। जबकि मैं अपनी प्ले लिस्ट से एक खूबसूरत सा गाना आपकी पेशे खिदमत करता हूँ।

हाँ जी, लेट्स गो क्रेजी गाइस। टुडे टुडे सैटरडे और शाम का वक्त है, टाइम निकलता जा रहा है। अगर आपको फेवरेट सॉन्ग्स प्ले करने हैं तो प्लीज मुझे कॉल कीजिए मेरे नंबर पे 972-235-5555 एंड लेट मी प्ले द बेस्ट कलेक्शन विच यू डिजर्व। तब तक के लिए

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: अभी मजा आएगा ना भिड़ो
3: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे
4: लैपटॉप चार्जर कॉफी फोन उफ ऑफिस का चेकलिस्ट यार खत्म ही नहीं होता
5: एग्जैक्टली और ऊपर से व्हाट टू वेयर का स्ट्रेस अलग
4: ओ गॉड पहले आउटफिट फिर उसके बाद उसके साथ क्या पहनना है
5: आहा आई कीप दैट पाथ सिंपल
4: कैसे
5: ज्वेलरीज जो ऑफिस डिनर वीकेंड हर दिन हर ओकेजन को सूट करे
4: ओ दैट काइंड ऑफ ज्वेलरी
5: या कैरेट लेन काइंड
6: Lightweight, real diamonds, your everyday fine jewelry. Made to be worn, not stored. Carat Lane, a Tata product, now open in Frisco.
7: Yun sunte hi brand click kar gaya na? Just like that. When it comes to taxes, only one name pops up. AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
8: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
9: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में
8: दैट मैजिक रिमूवल हो लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी
9: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से नाउ इट्स योर टर्न समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com
10: कंप्यूटर जी का सवाल ये है बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है ऑप्शन ए स्लो प्रोसेस ऑप्शन बी ज्यादा पेपर वर्क ऑप्शन सी क्रेडिट स्कोर का कंसर्न या ऑप्शन डी लोन डिक्लाइन होने का डर
11: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा
10: कंप्यूटर जी SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए
5: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में
8: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338 817-786-3338 The SBA Loan Experts फैसला क्लैरिटी के साथ
12: यार मैं थक चुकी हूँ पार्टी के पहले सफाई फिर पार्टी बाद में सफाई ऊपर से आप तो कोई मदद करते हो नहीं मेरे से नहीं होगा
13: अरे यार बोला ना लेकिन तुम्हें सुनना ही नहीं बताया ना जहाँ पार्टी है वही खाना है जहाँ खाना है वही पार्टी है सिंपल
12: मतलब
13: देख जगह बुक करेंगे पूरे 3 घंटे के लिए और वो भी सिर्फ $250 में और खाना पीना जो ऑर्डर करना है वो अलग से पे करके वहीं ऑर्डर कर लेंगे अब तेरे को तेरी सफाई की पड़ी है अब खुल के पार्टीज कर चाहे क्रिसमस हो थैंक्सगिविंग हो या फिर तेरे भाई का बर्थडे नाम याद रख बस वन पिज्जा